0: Let's get you the latest as far as that hit and run case that took place in Gurugram. A biker girl who was bumped off the road by this man. She has now released a new video speaking out against the accused, slamming the accused in this video, saying, "Why didn't you stop? Could you have..." she's talking about how she could have lost her life. She's alleging aggressive driving. He didn't stop even for a second. Women feel unsafe on the roads here in the NCR region. The biker girl has released this fresh video directly questioning the accused Kalyan over the alleged hit and run, asking why he did not stop after ramming into her vehicle, saying that she could have lost her life. Listen in.
1: See her side and... सुबह से ही मेरा रोड एक्सीडेंट वाला वीडियो बहुत न्यूज़ एंड इंस्टाग्राम पे चल रहा है एंड आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू जो अभी रिसेंटली मैंने देखा है. इसमें मेंशन कर रहे हैं कि हम बार बार बाइक तेज़ कर रहे थे, स्लो कर रहे थे और हम इनको पिंच कर रहे थे. वो तो आई थिंक सो मेरी पूरी वीडियो में शो हो रहा है कौन किसको पिंच कर रहा था. एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बाइक तेज़ कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब बनता है कि पूरे रास्ते आप मुझे चेस करें? और जैसा ये बोल रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़की चला रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता. आपने ऑब्वियसली मेरे बाल पीछे बहुत लंबे बाल हैं, मेरी चोटी बनी हुई थी, आपने वो देखा, आप आए, आपने एक्शन करा, आपने मुझे बाइक रोकने के लिए बोला एंड उसके बाद कह रहे हैं कि 22-23 लोग थे और वो दो वीडियो ही क्यों आई, बाकी क्यों नहीं आए. मुझे ये समझ नहीं आता कि आपका हिट एंड रन वाले केस के लिए क्या दो वीडियो इनफ नहीं है. एक वीडियो जिसमें दिख रहा है कि आप फ्रंट लेन से सीधा डायरेक्टली थर्ड लेन में आके मार के भाग जाते हैं एंड एक फ्रंट वीडियो जो मेरे कैमरे से आया हुआ है कि आप फर्स्ट लेन से थर्ड लेन में आप मुझे हिट करके बकायदा मैं पूरी घिसी हूँ आपकी गाड़ी पे और उसके बाद मैं पूरे रोड पे गिरी हूँ. क्या वो दो वीडियो आपके लिए इनफ नहीं है? और अगर आपको मेरे लिए इतना ही दुख हो रहा था तो उस टाइम पे आप रुके क्यों नहीं? आपकी जिम्मेदारी थी कि अगर आपने मुझे ठोका है तो आप रुको, आप मुझे देखो अगर मेरे को चोट लगी है. वॉट इफ कि अगर वो 2-3 सेकेंड का फर्क हो जाता, मेरे को बहुत ज़्यादा गहरी चोट आ सकती थी, मेरी हड्डियाँ टूट सकती थी, मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी. तो ये जो सिंपथी वाला जो ये कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन पे सूट हो रहा है. और वो सारी वीडियोस में शो हुआ है कैसे वो भागे हैं, वो एक सेकंड भी नहीं रुके देखने के लिए कि जिन्होंने जिसको ठोका है कि वो इंसान जिंदा है या मर गया है. तो मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो बोलते हैं मेरी फैमिली पे बात आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे इंसान एक बार भी सोचते हैं कि उनके घर में भी बहनें हैं, उनके घर में भी महिलाएं होंगी और कुछ ऐसी महिलाओं को इतना अनसेफ फील होता है गुड़गांव और दिल्ली के रोड पे. तो जैसे ही आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आई होप कि हम ऐसे इंसानों को सिखाएं कि गाड़ी कैसे चलती है सड़कों पर.
0: Joining us in order to get us details, Ishika, we just heard the account of Sia. You know, she's really raising very important questions here as to, you know, you bumped into me, you've not bothered to check if I'm alive. Forget, you know, providing with her some assistance, taking her perhaps to the hospital and so on and so forth.
2: Well, Divya, as you rightly mentioned, you know, it was certainly a very unfortunate incident where the biker, in fact, she

0: रिटर्न जो कंप्लेन आप लोग दर्ज करवाने वाले हैं, क्या शिवानी से आपने रिटर्न कंप्लेन रजिस्टर करवा ली है, लिखवा ली है?
1: लिखवा ली है।
0: क्या आरोप है और क्या मांग करेंगे आप लोग?
1: मैम, इसमें यही है कि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, जो कि जो पूरी कहानी थी, जो पूरा कल का इंसिडेंट था, वो उसमें पूरा ब्रीफ फैक्ट्स हैं। कंप्लेंट इस तरीके से है कि कल सुबह 7:30 बजे लगभग गोल्फ कोर्स के रोड पे ये लोग अपने बाइक राइड कर रहे थे, और जो एक गाड़ी थी सियास, जिसमें 4 लोग थे, ड्रंक कंडीशन में थे, जो कि पहले इनको टीज करने की भी कोशिश करी, तो इन्होंने बोला कि पीछे रहो आप। जब जैसी शिवानी ने क्रॉस किया उनको, तो उन्होंने साइड से हिट करके और वहाँ से भागे। उनके जो साथी थे उन्होंने रोकने की कोशिश करी, बट वो वहाँ से भागे। वो वीडियोस सोशल मीडिया पे पड़ी, आप एक बार देखेंगे तो उसमें सब समझ में आ जाएगा।
0: लेकिन जो अक्यूज्ड है, मतलब जो जिन्होंने एक्सीडेंट किया है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि गलती उनकी नहीं थी, शिवानी की गलती थी, ये उनका एक बड़ा क्लेम है इस चीज़ को लेकर।
1: मैम, पहली बात तो क्या वो सामने आ चुके हैं? अगर सामने आ गए हैं तो फिर मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूँगा कि जाके एक्शन लें, क्योंकि उनका जो क्लेम है वो हो सकता है मे बी अलग हो सकता है, बट जो कि रियल फैक्ट्स हैं वो तो मुझे शिवानी ने बताया है कि जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है वो गलत तो नहीं बोलेगी।
0: और जिस से मुलाकात हुई
1: जी,
0: क्या बताया उन्होंने इस पूरे मामले को?
1: यही पूरे फैक्ट्स बताए थे। इस तरीके से कल ये सब इंसिडेंट हुआ था जो मैंने भी आपको डिस्क्राइब किया।
0: कितनी देर पहले आपकी मुलाकात हुई शिवानी?
1: मेरी कल बात हुई थी, मेरी कल दोपहर को बात हुई थी।
0: शिकायत आपने कब लिखी है इस मामले में?
1: ये मैंने अभी लिखवाई है।
0: अभी आपने लिखवाई है, रिटर्न कंप्लेंट लिखवाई है?
1: सोशल मीडिया पे सारा, कल मैंने सोशल मीडिया पे सारा कुछ लिखवा दिया था।
0: हाँ।
1: और मैंने अपने भी सोशल मीडिया पे एक्स पे मैंने ये सब डाला है।
2: आज तक इन खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं थाने के अंदर, बहुत सीधा परिवार है।
3: पर इस केस को आप कैसे देखते हैं? आई एम श्योर कि आपने वो वीडियोस देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, किस तरीके से गाड़ी को ओवरटेक करने जाते हैं कल्याण, और उसके बाद लड़की को लग जाती है, वो रुकते भी नहीं है वहाँ पर, ये भी नहीं देखने आते कि लड़की सही है कि नहीं है। उनको जब उनके दोस्त रोकने की भी कोशिश करते हैं, तब भी वो सिर्फ ये बोल के जाते हैं कि मेरी गलती नहीं है, और गाड़ी भगा के चले जाते हैं वहाँ पर। इसको कैसे देखते हैं आप?
2: मैडम, ऐसा है, गांव के लोग जो ज़्यादातर सीधे साधे रहते हैं, और जब आदमी से एक्सीडेंट हो जाता तो ज़्यादातर आदमी भागने की सोचता कि वहाँ पर कितना भीड़ इकट्ठा हो जाए, जान साथ तेरे क्या हो जाए, तो जब साथ मारपीट हो, इसलिए वहाँ पर रुका नहीं, मेरे विचार।
3: पर सर, क्या आप इसको गलत नहीं मानते, क्योंकि आपने किसी लड़की को नुकसान पहुंचा दिया और आपको फिर अपनी चिंता हो रही है कि लोग आके आपको इस तरीके से मारेंगे?
2: देखो जी, ये मानवता के खिलाफ भी है, ये तो चलो जानकार थी अनजान थी, तो आदमी कोई अगर एक्सीडेंट दूसरे का हो जाता तो उसमें उसकी मदद करनी चाहिए, और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी मैं परमात्मा से यही दुआ करता हूँ और उसके माँ बाप से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूँ, हम इस गलती की माफ़ी दी जाए। हम अपने पूरे समाज को, पूरी बैसला क्षेत्र लगता है, हमारे 26 गाँव हैं हमारे, अगर हमारे बच्चे से कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और परमात्मा से।
3: सर, आप क्षमा।
4: Well, we will keep tracking that story and coming back to you for more on that. That was the lawyer of Sia, and they are going to be presenting their case. The demand really is to make a case of hit and run and attempted to murder charges. Moving on, Vijay's UK trip has now, in fact, been in the limelight, including his high-profile Silverstone visit with Ajit has drawn major attention. Vijay has shared glimpses of his visit, including his meeting with Ajit at Silverstone. The video has triggered a major social media buzz with, the opposition parties questioning that very trip. Now, while Vijay's UK visit has produced major investment commitments, and that is to the tune of, many crore, 11,000 crore worth of deals that have been signed. We have a 1,000 crore rupee deal with GCC, a Sigma technology agreement with an 11,000 crore mother-son investment plan. And the DMK, however, continues their attack. In fact, questioning that visit, they're questioning the planning behind the trip and accusing him of travelling abroad to meet and flatter his co-actor. TVK has defended the UK visit, in fact, highlighting the investment push and suggesting that his camaraderie with Ajit could also create greater synergy between their fan bases.
5: We'll see coming days what he will do, because I don't think so he is going to meet any investors or investment meeting. But he went for the, he inaugurated the car race. So the car race for the sports minister was there, and the sports secretaries was there. So we see the Tamil Nadu government has to be clarified to the people of Tamil Nadu whether he went to the inaugurate only for the car race, or he is going to meet the investors. That clarify the Tamil Nadu government is not given. So that's why we are all confused state.
6: MOUs can always be made. Any government will make MOUs. But where is the investment? Whether it will succeed or not depends huge on the government's capacity, government's vision. But this government has got no vision. The project which they are mentioning should have, the basic infrastructure. But we have been saying that whether it is electronics or designing, engineering, everything you need, a big airport, particularly a cargo one. But the government has recently withdrawn the Parandur airport issue. And Mr. Vijay, who has claimed through 110 statement that they will come out with the F1 track, and they say that he has gone there to make this project a success one. But unfortunately, where is the land? How much is going to be the cost? And how much government is going to bear the cost, because they say it is in PPP mode. Who is going to invest? All these details are not there. Even the basic details are not there.
7: The meeting between two actors, that is erstwhile actor Vijay, now the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Talapathy Vijay, and Mr. Ajit, is going to ultimately benefit TVK. The reason being, the fans of Mr. Ajit is looking forward for the governance system, that new governance system, the fresh governance system that Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Talapathy Vijay, is bringing in Tamil Nadu. Both of them meeting in London, in Silverstone, is going to give us a lot of benefit for the party. With respect to the investment talks that is between Tamil Nadu and United Kingdom, that is based at London, there is no requirement to showcase every detail, because we know well, in our country, we have a competitive federalism. Other states are looking at. Only at the MOU stage, we'll get to know which are the investment that is coming to India.
8: There was no program released by the government on Vijay's visit. They said that he had gone on 10th, that's all. Earlier he said that he is going on 10th. But what is his program? Which countries which companies he is going to make? Nothing has come. But what we see in the media, social media, their own area, that an actress was there and Vijay had gone to flag off a car race, motor car race. And he says that he is, his people say that he is very much interested in sports. That is why he is doing that. Okay, that you should have added it to your program list.
4: Switching tracks now, the alleged assault on KTR's aides has triggered a political confrontation in Telangana, with the BRS accusing the Congress government of allowing an attack inside a police station. KTR alleges that his PR manager and PA were attacked by MOS men in the presence of police. In fact, he has questioned whether the Congress workers were behind the assault and even raised the possibility of the police personnel in plain clothes being involved. The BRS has now demanded a probe by a sitting judge and also the preservation, as far as the CCTV footage is concerned, from the Saifabad police station. The party is also seeking security for the two aides. And with that, we're slipping into a very short break. Back with a whole lot more on the other side. Stay with us.
9: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
10: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
11: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: Headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
1: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
2: I want you to reach out to the Maharashtra Chief Minister today through our channel and tell them what you've been through as a father.
3: Marne se bada kya hoga?
2: As a journalist, I can say you're not alone.
0: So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood. Weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV, when it really matters.
4: We are crossing a heavy ridge line now. We are going to be descending into the valley where the damage has taken place. This is the Bhotekoshi River now. It used to be Trishuli downstream. It's now the Bhotekoshi. This is the first look that we saw by helicopter of the exact spot where the floods broke through. To my left over here, they were all homes. Ashwini, you see the bank of the river over here. They were all homes. None of them exist. They've been completely washed away. There is 100% destruction over here. 100%. There are no homes, no structures at all. As we go back towards Kathmandu.
5: Welcome back. Now, the BRICS summit is over, but the political fallout remains. After Beijing hailed Prime Minister Modi's message saying that he assured that India won't allow anti-China activities, the Congress has targeted the government, asking what kind of assurances did India get in return. Congress MP Pawan Khera has in fact asked whether Xi Jinping assured the Prime Minister of India that China would not engage in anti-India activity or also not be supportive of Pakistan. Another Congress MP, Karthi Chidambaram, meanwhile says one bilateral meeting cannot resolve all outstanding issues with China, calling for sustained negotiations. Now, we also have, AIMIM Chief Owaisi, who has also entered that bandwagon, targeting the BJP government over that old veg menu at the BRICS and pointing out the only 20% minority that eats only vegetarian.
6: Mere ko nahi maloom ki ye kyun karte aisa ye log. नहीं एक सुनिए, माइनॉरिटी इस देश में 20% वेजिटेरियन है. जहां पर यूसीसी का आपने सवाल किया, आप मेजॉरिटी का कानून माइनॉरिटी पे लागू करेंगे, मगर जब खाने की बात आएंगी तो आप फिर अपना ला लेते हैं. ये अजीब बात है. ये इस देश का जो डाइवर्सिटी है उसमें हर तरह का खाना है. अब ठीक है, नहीं खिलाए तो अब नहीं मालूम कितनों को पसंद आया नहीं आया. अब क्या बोलेंगे डिप्लोमेट भाई. आप भारत का जो डाइवर्सिटी है वो कल्चरल भी है, रिलीजन भी है, जबानें भी हैं. अब ये भी दिखाते, देखो हमारे पास ये खाना है.
7: ये मेन्यू के पीछे की मानसिकता देश की आंतरिक राजनीति में भी दिखती थी और अब देश की विदेश नीति में भी दिखने लग गई. मानसिकता क्या है? इम्पोज करने की, थोपने की. अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं. भारत बहुत समृद्ध है अपनी क्यूजीन में. देश के कोने कोने में वेज नॉन वेज में बहुत ऑप्शंस हैं. भाई जिसको खाना है वो खाएगा, आप ऑप्शन तो रखिए.
8: यू सी द बीजेपी, आई हैव सेड मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट, इज एन अपर कास्ट हिंदू वेजिटेरियन पॉलिटिकल पार्टी. इट्स अ सांस्कृटाइज्ड नॉर्थ इंडियन अपर कास्ट वेजिटेरियन पॉलिटिकल पार्टी. This is the BJP's cultural thrust. So they thrust their cultural view, be it in clothing, be it in religious practice, or in culinary hospitality, to their social view.
9: This is called food fundamentalism. Fundamentalists say believe that in Hindi we say aap ruchi khana par ruchi pehna, but the fundamentalist thinks mere ruchi mein aap bhi khao.
10: Bharat ki इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता के बाद भी कांग्रेस द्वारा केवल डिनर और भोजन की विषय वस्तु पर टिप्पणी करना न सिर्फ हास्यास्पद है, लज्जाजनक है, बल्कि उन्होंने साबित कर दिया कि वो वाकई के अर्थों में नाराज फूफा है.
11: अब राहुल गांधी का दिमाग सनक जाए तो पूरे देश का दिमाग सनक जाए. ये भारत के परंपरा के अनुसार हुआ और हमारे गांव घर

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: 8 a.m. You are watching The Breakfast Show on the NDTV network. I am Parmeshwar Bava. We've got an action-packed bulletin lined up for you this morning. Let's begin with the top headlines you need to know currently. After the accident, the biker from Gurugram, Sia, has hit back at the accused driver, Kalyan Besla, questioning why he fled after the alleged hit and run. She challenges his version of events, questions his claim of feeling sympathy for her, saying she could have lost her life, and flags safety fears for women on the Delhi-Gurugram roads. While denying deliberately hitting Sia's motorcycle, Kalyan Besla, the accused in the Gurugram hit-and-run case, remains hiding. 2 days after the incident, he claims he didn't know a woman was riding the bike after a video from the September 13th incident showing Kalyan ramming his vehicle into a biker is now viral. Meanwhile, a shocking hit-and-run in Navi Mumbai's Vashi. A speeding Mahindra Thar allegedly rams into three people near PKC Hospital, leaving all of three seriously injured. Chief Minister Vijay's UK trip sparks a political storm. The DMK questions his investment claims while Vijay cites 11,000 crore rupees in deals. His party, the TVK, defends him as the BJP questions these MOUs. KT Rama Rao's aides were allegedly attacked inside a police station. KTR accuses the Revanth Reddy government of allowing a rule of rowdies and goons to prevail in Telangana while seeking a sitting judge probe with a demand for the CCTV footage to be preserved. Amid a call for an AI slowdown, Google DeepMind AGI researcher resigns and warns that AI could kill us all and says that humanity may be running out of time. All right, our big focus currently, the hunt for Kalyan Besla continues and Gurugram police is now stepping up the search. Police teams have been formed to track down the accused, with the raids being conducted at his possible hideouts. Even after 48 hours, Kalyan Besla remains absconding after ramming a woman biker, and that video emerged and went viral. At the same time, investigators are widening the evidence trail. Police are now examining CCTV footage from Golf Course Road where this incident took place, looking to reconstruct what happened before, what happened during as well, and after the collision, and to corroborate the accounts already available. That's the latest we're tracking at the moment. Gurugram police have formed 5 teams in order to apprehend the accused, Kalyan Besla, as raids are conducted at the accused's possible hideouts. As I mentioned earlier, the accused is still absconding even after 48 hours of this incident. The video on your screens at the moment, that's from the 13th of September. Cops are now analysing the nearby CCTV footage on Golf Course Road to corroborate other details as well. Ishika joins us with further details at the moment. Ishika, tell us, what are these 5 teams? What have they been deployed to do now?
1: Well, certainly, Parmeshwar, now, in fact, we are, seeing that the Gurugram police, in fact, has formed 5 teams. And, in fact, the work of these 5 teams will be to investigate, deep into this particular case. Now, in fact, remember that Kalyan Besla, who has been accused of ramming his car into the women biker's motorbike, he has been absconding till now. It has been 48 hours. The police is saying that the efforts are being to apprehend him, and for that purpose these 5 teams have been formed by the Gurugram police. Remember that the FIR had already been registered by the Gurugram police, and now what they are going to do is that they are going to look at all the CCTV footage where this entire incident happened, and that is the Golf Course Road. And apart from that, also today the statements are going to be recorded. The police is also also now going on to recreate the scene, because remember that when this incident took place, you know, there were two videos that so far have come out in the public domain. The first video establishing that how in fact the woman by car was chased, and then in fact this particular car intentionally tried to ram into her motorbike, after which she lost control of her vehicle. Now the second video that has come yesterday in the public domain, that shows how that car left the first lane and then came to the third lane. So here certainly there also, you know, the statement that has come from Sia over the second video, she has gone on to say that this shows that the women's safety continues to be in question on the roads of Delhi and Gurugram,
0: right.
1: And she has also gone on to question the so-called concern of Kalyan here, going on to say that if he was so concerned, he would have in fact seen whether or not she was alive after his car rammed into her bike. But that yes. certainly was not done, and thus family is now demanding that stringent action needs to be taken in this particular case. Over to you,
0: Ishika. Do stay on with us. Thanks so much for sharing the finer aspects of this probe. We will of course continue to nitpick what exactly investigators are looking at as Kalyan Besla remains on the run, as this September 13th Gurugram crash video and the incident continues to trigger outrage. The video of this collision has gone viral, and now another angle of the incident has surfaced, as Ishika was just talking about. The video allegedly shows Kalyan's car swerving into the bike before Sia is dragged onto the road. Kalyan's lawyer now claims that he was provoked before this collision. That claim will of course have to be tested against the video evidence, witness accounts as well, and the wider investigation. An FIR meanwhile has been registered, and Sia is expected to record her statement with the police today. This as the family is seeking more serious charges. And the big question this morning remains, where is Kalyan Besla? The police have identified him. They have the registration number of the car as well. They have video footage. They have witnesses. So what is holding up the arrest then?
2: Naveen ji, aapka client kahan hai? Kalyan Besla kahan?
3: Sir. Client nahi, mera dost bhi hai, mera bhai bhi hai sir.
2: Ha, to kahan chhipa hua hai?
3: Hum ek hi gaon se belong karte hain sir.
2: Kyon itna bhag rahe hain?
3: Sir, bhag. Ye bhag koi nahi raha sir. Actually, pata kya hota hai? Ye jo hum belong karte hain, wo gaon dehat se belong karte hain. Actually, wo to samajhte nahi, main samajhta hu us baat ko. वो नादानी कर रहा है कछुला, उससे गलती हुई है, ठीक है जी सर, ठीक है, उसकी जो गलती छोटी गलती है ना, वो बहुत बड़ी करके दिखा दी गई है।
2: नहीं, कोई छोटी गलती नहीं है, वो लड़की जो है
3: अस्पताल सर सर सर सर सर सर देखो सर, मैं एक चीज बताता हूँ सर,
2: घटना में मर सकती थी वो, आपको भी
3: नहीं सर सर देखो सर सर सर उसके लिए ये सर बहुत गलत,
2: आपका जो नादान दोस्त है, आपका जो बेकसूर दोस्त है, आपका क्लाइंट जो है, वो एक कायर की तरह भागा हुआ है, और वो हाइड
3: सर
2: के सामने नहीं आ रहा है, एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है, पुलिस का
3: सर एक्चुअली सर
2: आंसर नहीं भी कर रहे हैं
3: सर सर, मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर,
2: इतना जो जाते हैं, इतना जो बनाते हैं और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते,
3: नहीं सर बिल्कुल आ जाएंगे सर बिल्कुल आ जाएंगे, जैसे ही संपर्क होता वो आएगा, 100% आएगा सर,
2: और संपर्क
3: एक सीधी सी नहीं, अब नहीं है, कोई संपर्क नहीं है सर, मेरा एक सीधी सी बात और बता दूं सर, कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, लोगों हमसे ज्यादा नहीं जानता कोई भी सर, हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, ना कायर ना कोई मर्द हो, इसमें
2: आपकी बात हुई है, आपकी कल्याण
3: मेरी मेरी मेरी बात, मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में, सुनो तो सही सर, सर मेरी सुन दो एक सर, मेरा क्या उसका दस, मेरे पास 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गांव कोर्ट चल रहे हैं, और क्या नाम है, पुलिस थाने में चल रहे हैं, वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है, एक्चुअली मेरा आज मंडे था, काम ज्यादा था, मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे, 2:30 बजे फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया, उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया, उसके बाद ये गांव में था, मैं इसके गांव में गया हूँ,
2: नवीन जी एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं
3: उसके गांव में गया हूँ, गांव में जाने के बाद आज तक वाले न्यूज वाले आए हैं, न्यूज वालों को उसने पूरी प्रॉपर अपना साइड रखा है, अपना पक्ष रखा है,
2: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप सर की एक छोटी बात है, छोटी सी गलती है, ये नादान।
3: नहीं नहीं सर सर सर एक्चुअली सर सर ये राइडर ठीक है सर, ये सर सर सर आपने जो ये वीडियो वायरल हो रही है सर, या एक एक सही बताओ, ये रोडों पे राइडर निकलने ये ठीक निकल रहे हैं?
2: नहीं नहीं जो भी होता है
3: नहीं सर जो भी नहीं होता ये वो एक चीज बताओ सर, एक चीज बताओ, वो तो सुनो सर, वो तो सर 140 सर आप थोड़ी सी ना सर, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ सुनी हुई बात कर रहा हूँ, और मैं कुछ आपकी जो वीडियो जो लड़की ने वीडियो डाली है उसकी बात कर रहा हूँ सर, दो बात करूंगा सर, कोई बात नहीं कर रहा। जो लड़की ने वीडियो डाली मैंने वो वीडियो प्रॉपर चार बार देखी, बिल्कुल जूम करके देखी है, उसमें जो एक्सीडेंट वाला पॉइंट है ये बताता हूँ आपको, एक्सीडेंट वाला पॉइंट आप देखो वहां पे यू टर्न है, वहां पे देखो यू टर्न है, एक गाड़ी आगे जा रही है कोई सी, उसको साइड में लिया, वो एकदम हिट हो गई है, ठीक है, उसने फुटपाथ से बचाने के लिए करी है एक ये, आप देखोगे सर, मैं तो वीडियो को चेंज नहीं कर सकता ना, आप कर सकते,
2: पूरा देश ने वो वीडियो देखा है।
0: Ishika continues to be with us to take us through the latest developments. Ishika, we are now past that 48-hour mark. Has the police established whether Kalyan Besla remains in the Gurugram Palwal area? Is there any indication that he's left the region? What's really happening? We are given to understand that 5 teams are now looking for him.
1: Well, Parmeshwar, as you very rightly mentioned, you know, the 48 hours mark that has already passed, and the police is here currently saying that they are already stepping up the efforts, and for that the 5 teams have been made by the Gurugram police, who are now going to establish the sequence of the events. They are also going to go forward and take the statements, and then in fact they are going to investigate this matter by looking at the CCTV footage. Apart from that, if we talk about Mr. Kalyan, he certainly is being absconding till now, and for this purpose the Palwal CIA is also now trying to arrest him, and for that their teams are already on a search for him. Remains to be seen as to when he will be arrested, but as you mentioned, and we have seen also that the kind of statements that have so far come from him, and in fact his counsel remains to be very bizarre, going on to say that it was choti si galti, it was nadani, certainly shows the kind of mindset rather that he is putting forth here, because remember that Sia and in fact the two videos that surfaced, it was clearly shown in those two videos how she was being chased, and right, then how intentionally that particular car rammed into her motorbike, after which she lost control. So she has also now come out, and she has in fact issued a statement over the new video also that has surfaced, going on to say that now Mr. Kalyan is playing the victim card, he's trying to gather sympathy, which was not the case, going on to say that if he was so concerned, he would have checked whether or not she was alive after his vehicle rammed into her car. So remains to be seen that how investigation goes on in fact further, and when will Mr. Kalyan be finally taken into custody by the Gurugram police. Over to you.
0: Well, the hunt for Kalyan Besla continues, as Ishka's highlighting. And a new version of the Gurugram crash is now being put forward by Kalyan Besla's lawyer, as you've just heard, and it directly challenges the account given by the woman biker. Well, the lawyer Naveen Besla has rejected the allegation that the collision was deliberate, arguing that the viral videos show only part of what happened. He claims a large group of bikers had been riding together, that some riders cut in front of the car, and that Kalyan became agitated after what he describes as provocation. The lawyers also allege that the woman biker was riding at a high speed between 140 to 170 kilometers per hour, and has accused her of seeking followers and views. Those are the lawyers' claims, not findings established by the police. The police, meanwhile, have formed 5 teams to find Kalyan Besla, as that 48-hour mark has now passed. Let's go across to Akhil for the latest on where this probe stands currently. Akhil, what is the police position on this new version that Kalyan Besla's lawyer is trying to push?
4: Well, Parmeshwar, if you see at this stage, as far as the investigation is concerned, what we have seen that 5 different teams have been formed by the Gurugram police. And if you see, more than 48 hours have passed, but so far Gurugram police is unable to apprehend that very individual who has committed this kind of heinous crime, in which what we have seen that there are two different versions that are propping up, in which what we have seen that one of the versions, the accused has been constantly saying that it was an accidental incident that has taken place. On the other side, what we have seen that Sia's version, in which she has been constantly claiming that this was a deliberate attempt. When that incident has taken place, at that point in time, the accused was in the overtaking lane, and then he came to the normal lane, and then from second lane he moved on to the heavy vehicle lane, which is the third lane, and then the collision has taken place, and it was a deliberate attempt. So this was the claim made by Sia and her parents as well. So at this stage, the Gurugram police has already filed an FIR. They are looking for further investigation in this case, and they have also come to Gurugram to further join the investigation. And what we have got to know from the Gurugram police that today only, if you see, Gurugram police is going to record the statement of Sia as well in connection with the case, that how this entire mishap has unfolded. Right now, if you see, I am at the very residence of Kalyan Besla. Behind me, you can see the visual. This is the very residence of Kalyan Besla. I tried to speak to the family members. Right now, they are not ready to come on television. They are avoiding the camera. But we have been constantly asking that if your son was so clean, as he claimed earlier that he has got nothing to do with this, was an accidental incident that has taken place, then why he fled from the various spot? One, he fled from the spot. Second point, if you see, he not only fled from the spot, he has also fled from his very residence. So this is his residence, and he is not available at his residence right now. So currently the investigation is on. Right now the Gurugram police has scanned all those CCTV cameras installed near the golf road at that point in time. So they are basically corroborating all those details from those from that point, that how this entire incident has unfolded and who all were there. Because at that point in time, there were 15 to 20 bikers who were moving from the Gurugram side towards Delhi side when that incident has taken place. So the entire sequence of event is being established by the Gurugram police with the help of those CCTV footages.
0: We'll of course continue to track how this probe progresses with you, Akhil. Thanks so much for joining us. A woman riding on a motorcycle on Gurugram's golf course road was injured after a man allegedly rammed his car into her following a road rage incident. 2 days on, the suspected driver is at large and police have launched a manhunt for him. 5 teams are actually looking for him as we speak. Sia, meanwhile, has now released another video putting the focus on the driver's conduct, accused Kalyan Besla, after the collision. Her question is basically, if this was an accident, why did the driver not stop and check on her? She alleges that the driver of a white Maruti Ciaz began chasing her and repeatedly signaled her to stop after driving dangerously close to her. Sia says that she could have lost her life and questions why the accused did not stop even for a moment to check on her briefly. She also asks whether the videos that captured this incident are not enough to establish a hit and run. On the other hand, her family has now formally approached the Gurugram police. Her father alleges that she was deliberately rammed and is seeking tougher charges, including hit and run and attempt to murder. Her brother has also made a similar allegation. And the police have identified the suspect, as you know, as driver Kalyan Besla, who remains absconding after this frightening incident, even now.
5: I'm Sia this side, and subah se mera road accident wala video bahut news and Instagram pe chal raha hai. And I want to share something with you, jo abhi recently maine dekha hai. Isme mention kar rahe hain ki hum baar baar bike tez kar rahe the, slow kar rahe the, aur hum inko pinch kar rahe the. वो तो आई थिंक सो मेरी पूरी वीडियो में शो हो रहा है कौन किसको पिंच कर रहा था. एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बाइक तेज़ कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब बनता है कि पूरे रास्ते आप मुझे चेस करें. और जैसा ये बोल रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़की चला रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता. आपने ऑब्वियसली मेरे बाल पीछे बहुत लंबे बाल हैं, मेरी चोटी बनी हुई थी, आपने वो देखा, आप आए, आपने एक्शन करा, आपने मुझे बाइक रोकने के लिए बोला. एंड उसके बाद कह रहे हैं कि 22 23 लोग थे और वो दो वीडियो ही क्यों आई, बाकी क्यों नहीं आए. मुझे ये समझ नहीं आता कि आपका हिट एंड रन वाले केस के लिए कि दो वीडियो इनफ नहीं है. एक वीडियो जिसमें दिख रहा है कि आप फ्रंट लेन से सीधा डायरेक्टली थर्ड लेन में आके मार के भाग जाते हैं, एंड एक फ्रंट वीडियो जो मेरे कैमरे से आया हुआ है कि आप फर्स्ट लेन से थर्ड लेन में आप मुझे हिट करके बकायदा मैं पूरी घिसी हूँ आपकी गाड़ी पे और उसके बाद मैं पूरे रोड पे गिरी हूँ। क्या वो दो वीडियो आपके लिए इनफ नहीं है? और अगर आपको मेरे लिए इतना ही दुख हो रहा था तो उस टाइम पे आप रुके क्यों नहीं? आपकी जिम्मेदारी थी कि अगर आपने मुझे ठोका है तो आप रुको, आप मुझे देखो अगर मेरे को चोट लगी है। व्हाट इफ कि अगर वो 2-3 सेकंड का फर्क हो जाता, मेरे को बहुत ज्यादा गहरी चोट आ सकती थी, मेरी हड्डियां टूट सकती थी, मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी। तो ये जो सिंपथी वाला जो ये कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन पे सूट हो रहा है। और वो सारी वीडियोस में शो हुआ है कैसे वो भागे हैं, वो एक सेकंड भी नहीं रुके देखने के लिए कि जिन्होंने जिसको ठोका है कि वो इंसान जिंदा है या मर गया है। तो मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो बोलते हैं मेरी फैमिली पे बात आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे इंसान एक बार भी सोचते हैं कि उनके घर में भी बहनें हैं, उनके घर में भी महिलाएं होंगी, और कुछ ऐसी महिलाओं को इतना अनसेफ फील होता है गुड़गांव और दिल्ली के रोड पे। तो जैसे ही आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आई होप कि हम ऐसे इंसानों को सिखाएं कि गाड़ी कैसे चलती है सड़कों पे।
6: इस गाड़ी वाले ने सिया को हिट किया था, कल्याण बैसला, वो लगातार अब ये बोल रहा है कि मैं तो सिया को अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि उस बाइक पे लड़की बैठी हुई है। इस तरह की जो बातें वो लगातार कह रहा है, उसको क्या जवाब देना चाहेंगे आप?
7: उसको एक ही जवाब देना चाहूँगा कि भाई आप सबको पता रहता है कौन लड़की है, कौन महिला है, कौन जेंट्स है, और आप जिस प्रकार से गाड़ी के अंदर बैठ के जबकि वो आपको बोल रही है कि अंकल थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, और आप ज़बरदस्ती वो आगे आने के बाद भी, मैं उसकी एक रील देख रहा था अपने आप को, पता नहीं कुछ दिमाग के अंदर अगर उनके गंद भरा हुआ है तो उसको निकाल लें, उसको महिला ना समझें, ठीक है ना? तो जो उनकी मानसिकता है उसको बदल लें, और जिस प्रकार से बेटी तो आगे गाड़ी लेके बिल्कुल किनारे पे चली गई थी, उसको हिट करके जा रहा है और वहाँ पे रील के अंदर ये कह रहा जी मैं तो यूं मुड़ रहा था और यू टर्न ले रहा था। यू टर्न लेने की भी कोई प्रक्रिया होती है और गाड़ी नहीं चलानी आती तो गाड़ी कहाँ से चलाएंगे, खुद ही किसी की गाड़ी मांग कर लेकर आके गाड़ी चला रहे हैं, तो जिसकी गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे थे उनके ऊपर भी एफ आई आर दर्ज कराएंगे।
6: गुड़गांव पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है लेकिन वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर?
7: देखिए भाग के कहाँ जाएंगे, कानून के हाथ बहुत बड़े हैं, भाग के कहाँ जाएंगे? जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि जी मेरे से गलती हो गई, उसको वहाँ थाने में आके पेश होना चाहिए था, चोरों की तरह मुंह काहे को छुपाते डोल रहे हैं। और अपनी रील के अंदर ये कह रहे हैं कि मैं तो आया नगर से आ रहा था, आया नगर से ये बात चल रही थी और आया नगर से आगे पीछे हो रहा था। भाई आया नगर से आने जाने में 50 रास्ते बीच में आते हैं, आपकी मानसिकता ही थी उसको हिट करने की। अगर रोड के ऊपर चल रहा हूँ, कोई व्यक्ति जिसको मैं नहीं जानता उससे हो सकता है मेरी 1-2 मिनट के लिए कोई बात हो, पर अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं अपनी गाड़ी लेके अपने रास्ते चला जाऊँगा। और वो कह रहा है कि मेरे साथ मेरी कोई रिश्तेदार भी थी। अगर आप फैमिली के साथ ऐसे हिट करके जा रहे हो तो आप तो अकेले में पता नहीं क्या हिट करके जाओगे, और आप ये कह रहे कि वो मुझे नहीं पता था लड़की है। आपको हो सकता है कि आपने ज़्यादा नशा कर रखा हो, आपको दिख नहीं रहा हो लड़का है कि लड़की है, और फिर आपने टक्कर मारने के बाद जब वो रोड के ऊपर गिर गई, घसीटरी है, आपको इतनी भी आपके अंदर सभ्यता नहीं है कि आपने वहाँ गाड़ी रोक कर उसको देखना भी चाहा कि भाई इतनी चोट लग गई बच्चे के। पुलिस ने जो वहाँ पर FIR करी है उस पर बड़ी नॉर्मल धाराएं उन्होंने लगाई थी, तो हमारी तो उनसे रिक्वेस्ट है, हमने एप्लीकेशन राइटिंग के अंदर दी है उनको, इसका अटैम्प्ट टू मर्डर और हिट एंड रन वाली धारा इसके ऊपर लगाई जाए, और ये जानबूझ के किया हुआ है ये।
6: चलिए, सिया के ब्रदर इस वक्त मेरे साथ हैं, आप भाई हैं सिया के, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से हिट एंड रन किया गया सिया को, हालांकि उनको इतनी चोट नहीं लगी, बहुत मेजर इंजरी नहीं हुई, लेकिन इस पूरे मामले में एज अ ब्रदर के तौर पे आप क्या डिमांड करते हैं?
8: देखिए जब उसको एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे पहले कॉल उसने मुझे ही करा था।
6: हाँ
8: जी, उसने
6: क्या बताया? उन्होंने आपको कॉल कर,
8: उन्होंने कहा कि पहले एक्सीडेंट हुआ, मेरे को लगा कि स्लिप वगैरह हो गई होगी बाइक, फिर उसने बोला कि किसी ने हिट एंड रन करा है उनके साथ, और उन्होंने फिर वीडियो भेजी, वो GoPro में वीडियो बना रही थी, और उन्होंने पहले ये दिखाया कि पहले चेज हो रहे थे ही, और उन्होंने उनको बोला भी था कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, फिर वही है, और फिर कहे थे कि वो 4 लोग थे उस गाड़ी में, और वो ड्रंक थे सारे के सारे, और वो थोड़े अब्यूजिव सिग्नल्स भी दे रहे थे उसे। और
6: एक सवाल ये है, जिन्होंने हिट किया है, कल्याण बैसला नाम है उनका, उनका ये कहना है कि गलती मेरी नहीं थी, लड़की की गलती थी। इस तरह का एलिगेशन जो है वो कल्याण बैसला जो है वो आपकी बहन पे लगा रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ा एलिगेशन जो है वो उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन जो विजुअल निकल के आया था उसमें हम सब ने देखा कि किस तरह से वो लगातार चेज़ कर रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे?
8: उस पर ये कहना चाहूँगा कि उन्हें लग रहा है कि उनकी गलती है, और उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि उनकी वीडियो भी बन रही थी। वो तो उन्हें लगा कि वो ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हर टाइम वो रिकॉर्ड हो रहे थे।

0: और उनके जो स्टार्टिंग से वो चेजिंग हो रहा था, एक होता है एक्सीडेंट अगर आपका गलती से टच हो जाए, अगर चलो एक्सीडेंट भी होता और वो रुकते तो हम उनका सुनते बात पूरी। अब वही है, वो रुके भी नहीं, फिर हमारे और भी बाइकर वो फ्रेंड्स थे, उन्होंने रोकने की कोशिश करी, उनको भी वो थोड़ा वो डिच करके भाग गए थे।
1: रिटर्न जो कंप्लेन आप लोग दर्ज करवाने वाले हैं, क्या शिवानी से आपने रिटर्न कंप्लेन रजिस्टर करवा ली है, लिखवा ली है?
2: लिखवा ली
1: है। क्या आरोप है और क्या मांग करेंगे आप लोग?
2: मैम इसमें यही है कि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, जो कि जो पूरी कहानी थी, जो पूरा कल का इंसिडेंट था, वो उसमें पूरा ब्रीफ फैक्ट्स हैं। कंप्लेंट इस तरीके से है कि कल सुबह 7:30 बजे लगभग गोल्फ कोर्स के रोड पे ये लोग अपने बाइक राइड कर रहे थे और जो एक गाड़ी थी सियास, जिसमें 4 लोग थे, ड्रंक कंडीशन में थे, जो कि पहले इनको टीज करने की भी कोशिश करी तो इन्होंने बोला कि पीछे रहो आप। जब जैसी शिवानी ने क्रॉस किया उनको, तो उन्होंने साइड से हिट करके और वहाँ से भागे। उनके जो साथी थे उन्होंने रोकने की कोशिश करी बट वो वहाँ से भागे। वो वीडियोस सोशल मीडिया पे पड़ी हैं, आप एक बार देखेंगे तो उसमें सब समझ में आ जाएगा।
1: लेकिन जो अक्यूज्ड है, मतलब जो जिन्होंने एक्सीडेंट किया है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि गलती उनकी नहीं थी, शिवानी की गलती थी, ये उनका एक बड़ा क्लेम है इस चीज़ को लेकर।
2: मैम पहली बात तो क्या वो सामने आ चुके हैं? अगर सामने आ गए हैं तो फिर मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूँगा कि जाके एक्शन लें, क्योंकि उनका जो क्लेम है वो हो सकता है मे बी अलग हो सकता है, बट जो कि रियल फैक्ट्स हैं वो तो मुझे शिवानी ने बताया है कि जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है वो गलत तो नहीं बोलेगी।
1: और जिस से मुलाकात हुई
2: जी,
1: क्या बताया उन्होंने इस पूरे मामले को?
2: यही पूरे फैक्ट्स बताए थे। इस तरीके से कल ये सब इंसिडेंट हुआ था जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया।
1: कितनी देर पहले आपकी मुलाकात हुई शिवानी?
2: मेरी कल बात हुई थी, मेरी कल दोपहर को बात हुई थी।
1: शिकायत आपने कब लिखी है इस मामले में?
2: ये मैंने अभी लिखवाई है।
1: अभी आपने लिखवाई है, रिटर्न कंप्लेंट लिखवाई है?
2: सोशल मीडिया पे सारा, कल मैंने सोशल मीडिया पे सारा कुछ लिखवा दिया था। हाँ। और मैंने अपने भी सोशल मीडिया पे एक्स पे मैंने ये सब डाला है।
3: Well, also listen in to this conversation with Sia's fellow rider who was present at the spot when this incident took place on Golf Course Road in Gurugram. Listen in to what we've been told.
4: I was on the road उस time पे और सिया ने जस्ट मेरे को क्रॉस करा और मैंने देखा कि एक कार उसको बहुत बुरी तरह चेस कर रही है रोड के ऊपर और मेरे को मतलब थोड़ा मतलब वो अजीब लगा और रोड लगा कि वो कार ऐसे मतलब उसको चेस कर रही है, उसका पीछा कर रही है, क्योंकि उसने वो जो कार वाला था ना उसने बहुत ज्यादा क्लोजनेस मतलब बहुत ज्यादा क्लोज में था, वो बहुत ज्यादा एकदम टेल गेटिंग कर रहा था बाइक की और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला, सिया को कुछ इशारा करा, देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो कुछ हो सकता है और फिर वो गाड़ी वाले के पास, मैं जब उसके विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा, मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे, क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन।
1: अच्छा, वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था मतलब सिया को?
4: हाँ, मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में। देयर वर 3 गाइस इन द कार, 3 लोग थे वो कार के अंदर और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेड ब्लैक थे उस टाइम पे।
1: ओके,
4: बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे कार के और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है, जो हमारा 4-वे है, जो चौक है, वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई, मेरे सामने एक कार आ गई, उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी, सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे, उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा। मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया, हड़बड़ा के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का, क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे।
3: Ishika is tracking this probe very closely. She continues to be with us to offer further clarity currently. Ishika, there's video footage. There's the vehicle's registration number. There are eyewitnesses who were riding with Sia. There's also the allegation that the driver chased her, later drove away after the collision. Why has Kalyan Besla still not been traced then?
5: Well, Parmeshwar, that is the question that continues to be even in the mind of the family here. And they continue to say that we have filed a complaint. We are waiting for the police to actually arrest Mr. Kalyan. So that is something even the family is concerned about and they are raising their doubts about. Meanwhile, if you look at Gurugram police, they have said that they have already stepped up their measures. And for that, they have formed a five teams also. So to investigate this matter. So certainly now what they are saying is that they are also looking at all the CCTV footage.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: All right, our big focus at 9 a.m. A woman riding a motorcycle on Gurugram's golf course road was injured after a man allegedly rammed his car into her following a road rage incident. Over 50 hours on, the suspected driver is at large and police have launched a manhunt for him, deputing 5 teams. Sia has now released another video putting the focus on the driver's conduct, which is about accused Kalyan Besla after the collision. And her question is basically, if this was an accident, why did the driver not stop and check on her? She alleges that the driver of a white Maruti Ciaz began chasing her, repeatedly signaled her to stop after driving dangerously close to her. Sia says she could have lost her life and questions why the accused did not stop even for a moment to check on her. She also asks whether the videos that captured the incident are not enough to establish a hit-and-run incident. Her family, meanwhile, has now formally approached the Gurugram police. Her father has alleged that she was deliberately rammed and is seeking tougher charges, including hit and run and attempt to murder. Her brother has also made a similar allegation. As the police have identified the suspected driver as Kalyan Besla, who remains absconding 50 hours on, even though 5 teams have been deployed by the Gurugram police to look for him.
1: I'm Sia this side, and सुबह से मेरा रोड एक्सीडेंट वाला वीडियो बहुत न्यूज़ एंड इंस्टाग्राम पे चल रहा है एंड आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू जो अभी रिसेंटली मैंने देखा है. इसमें मेंशन कर रहे हैं कि हम बार बार बाइक तेज़ कर रहे थे, स्लो कर रहे थे और हम इनको पिंच कर रहे थे. वो तो आई थिंक सो मेरी पूरी वीडियो में शो हो रहा है कौन किसको पिंच कर रहा था. एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बाइक तेज़ कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब बनता है कि पूरे रास्ते आप मुझे चेस करें. और जैसा ये बोल रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़की चला रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता. आपने ऑब्वियसली मेरे बाल पीछे, बहुत लंबे बाल हैं, मेरी चोटी बनी हुई थी, आपने वो देखा, आप आए, आपने एक्शन करा, आपने मुझे बाइक रोकने के लिए बोला एंड उसके बाद कह रहे हैं कि 22-23 लोग थे और वो दो वीडियो ही क्यों आई, बाकी क्यों नहीं आए. मुझे ये समझ नहीं आता कि आपका हिट एंड रन वाले केस के लिए क्या दो वीडियो इनफ नहीं है. एक वीडियो जिसमें दिख रहा है कि आप फ्रंट लेन से सीधा डायरेक्टली थर्ड लेन में आके मार के भाग जाते हैं एंड एक फ्रंट वीडियो जो मेरे कैमरे से आया हुआ है कि आप फर्स्ट लेन से थर्ड लेन में आप मुझे हिट करके बकायदा मैं पूरी घिसी हूँ आपकी गाड़ी पे और उसके बाद मैं पूरे रोड पे गिरी हूँ. क्या वो दो वीडियो आपके लिए इनफ नहीं है? और अगर आपको मेरे लिए इतना ही दुख हो रहा था तो उस टाइम पे आप रुके क्यों नहीं? आपकी जिम्मेदारी थी कि अगर आपने मुझे ठोका है तो आप रुको, आप मुझे देखो अगर मेरे को चोट लगी है. व्हाट इफ कि अगर वो 2-3 सेकंड का फर्क हो जाता, मेरे को बहुत ज़्यादा गहरी चोट आ सकती थी, मेरी हड्डियाँ टूट सकती थी, मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी. तो ये जो सिंपथी वाला जो ये कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन पे सूट हो रहा है. और वो सारी वीडियोज़ में शो हुआ है कैसे वो भागे हैं, वो एक सेकंड भी नहीं रुके देखने के लिए कि जिन्होंने जिसको ठोका है कि वो इंसान जिंदा है या मर गया है. तो मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो बोलते हैं मेरी फैमिली पे बात आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे इंसान एक बार भी सोचते हैं कि उनके घर में भी बहनें हैं, उनके घर में भी महिलाएं होंगी और कुछ ऐसी महिलाओं को इतना अनसेफ फील होता है गुड़गांव और दिल्ली के रोड पे. तो जैसे ही आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आई होप कि हम ऐसे इंसानों को सिखाएं कि गाड़ी कैसे चलती है सड़कों पर.
2: गाड़ी वाले ने सिया को हिट किया था, कल्याण बैसला, वो लगातार अब ये बोल रहा है कि मैं तो सिया को अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि उस बाइक पे लड़की बैठी हुई है. इस तरह की जो बातें वो लगातार कह रहा है, उसको क्या जवाब देना चाहेंगे आप?
3: उसको एक ही जवाब देना चाहूँगा कि भाई आप सबको पता रहता है कौन लड़की है, कौन महिला है, कौन जेंट्स है. और आप जिस प्रकार से गाड़ी के अंदर बैठ के, जबकि वो आपको बोल रही है कि अंकल थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, और आप जबरदस्ती वो आगे आने के बाद भी, मैं उसकी एक रील देख रहा था अपने आप को, पता नहीं कुछ दिमाग के अंदर अगर उनके गंद भरा हुआ है तो उसको निकाल लें, उसको महिला ना समझें, ठीक है ना. तो जो उनसी मानसिकता है उसको बदल लें, और जिस प्रकार से बेटी तो आगे गाड़ी लेके बिल्कुल किनारे पे चली गई थी, उसको हिट करके जा रहा है और वहाँ पे रील के अंदर ये कह रहा जी मैं तो यू मोड़ रहा था और यू मोड़ रहा था और यू टर्न ले रहा था। यू टर्न लेने की भी कोई प्रक्रिया होती है और गाड़ी नहीं चलानी आती तो गाड़ी कहाँ से चलाएंगे, खुद ही किसी की गाड़ी मांग कर लेकर आके गाड़ी चला रहे हैं। तो जिसकी गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे थे उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराएंगे।
2: गुड़गांव पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है लेकिन वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर?
3: देखिए भाग के कहाँ जाएंगे, कानून के हाथ बहुत बड़े हैं, भाग के कहाँ जाएंगे। जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि जी मेरे से गलती हो गई, उसको वहाँ थाने में आके पेश होना चाहिए था। चोरों की तरह मुंह काहे को छुपाते डोल रहे हैं और अपनी रील के अंदर ये कह रहे हैं कि मैं तो आया नगर से आ रहा था, आया नगर से ये बात चल रही थी और आया नगर से आगे पीछे हो रहा था। भाई आया नगर से आने जाने में 50 रास्ते बीच में आते हैं, आपकी मानसिकता ही थी उसको हिट करने की। अगर मैं रोड के ऊपर चल रहा हूँ, कोई व्यक्ति जिसको मैं नहीं जानता उससे हो सकता है मेरी एक आध मिनट के लिए कोई बात हो, पर अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं अपनी गाड़ी लेके अपने रास्ते चला जाऊँगा। और वो कह रहा है कि मेरे साथ मेरी कोई रिश्तेदार भी थी। अगर आप फैमिली के साथ ऐसे हिट करके जा रहे हो तो आप तो अकेले में पता नहीं क्या हिट करके जाओगे। और आप ये कह रहे कि वो मुझे नहीं पता था लड़की है, आपको हो सकता है कि आपने ज्यादा नशा कर रखा हो, आपको दिख नहीं रहा हो लड़का है कि लड़की है। और फिर आपने टक्कर मारने के बाद जब वो रोड के ऊपर गिर गई, घसीटरी है, आपको इतनी भी आपके अंदर सभ्यता नहीं है कि आपने वहाँ गाड़ी रोक कर उसको देखना भी चाहा कि भाई इतनी चोट लग गई बच्चे के। पुलिस ने जो वहाँ पर FIR करी है उस पर बड़ी नॉर्मल धाराएं उन्होंने लगाई थी, तो हमारी तो उनसे रिक्वेस्ट है, हमने एप्लीकेशन राइटिंग के अंदर दी है उनको, इसका अटैम्प्ट टू मर्डर और हिट एंड रन वाली धारा इसके ऊपर लगाई जाए और ये जानबूझ के किया हुआ है ये।
2: ये सिया के ब्रदर इस वक्त मेरे साथ हैं, आज आप भाई हैं सिया के, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से हिट एंड रन किया गया सिया को, हालांकि उनको इतनी चोट नहीं लगी, बहुत मेजर इंजरी नहीं हुई, लेकिन इस पूरे मामले में एज अ ब्रदर के तौर पे आप क्या डिमांड करते हैं?
4: देखिए जब उसको एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे पहले कॉल उसने मुझे ही करा था।
2: ये हाँ जी उसने क्या बताया, उन्होंने आपको कॉल कर,
4: उन्होंने कहा कि पहले एक्सीडेंट हुआ, मेरे को लगा कि स्लिप वगैरह हो गई होगी बाइक। फिर उसने बोला कि किसी ने हिट एंड रन करा है उनके साथ और उन्होंने फिर वीडियो भेजी, वो GoPro में वीडियो बना रही थी और उन्होंने पहले ये दिखाया कि पहले चेज हो रहे थे और उन्होंने उनको बोला भी था कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। फिर वही है, और फिर कहे थे कि वो चार लोग थे उस गाड़ी में और वो ड्रंक थे सारे के सारे और वो थोड़े अब्यूजिव सिग्नल्स भी दे रहे थे उसे। और
2: एक सवाल ये है, जिन्होंने हिट किया है, कल्याण बैसला नाम है उनका, उनका ये कहना है कि गलती मेरी नहीं थी, लड़की की गलती थी, इस तरह का एलिगेशन जो है वो कल्याण बैसला जो है वो आपकी बहन पे लगा रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ा एलिगेशन जो है वो उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन जो विजुअल निकल के आया था उसमें हम सब ने देखा कि किस तरह से वो लगातार चेस कर रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे?
4: उस पर ये कहना चाहूँगा कि उन्हें लग रहा है कि उनकी गलती है और उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि उनकी वीडियो भी बन रही थी, वो तो उन्हें लगा कि वो ऑफ कैमरा बात कर रहे थे पर उन्हें ये नहीं पता कि हर टाइम वो रिकॉर्ड हो रहे थे। और उनके जो स्टार्टिंग से वो चेजिंग हो रहा था, एक होता है एक्सीडेंट अगर आपका गलती से टच हो जाए, अगर चलो एक्सीडेंट भी होता और वो रुकते तो हम उनका सुनते बात पूरी, अब वही है वो रुके भी नहीं, फिर हमारे और भी बाइकर वो फ्रेंड्स थे उन्होंने रोकने की कोशिश करी, उनको भी वो थोड़ा वो डिच करके भाग गए थे।
2: रिटर्न जो कंप्लेन आप लोग दर्ज करवाने वाले हैं, क्या शिवानी से आपने रिटर्न कंप्लेन रजिस्टर करवा ली है,
5: लिखवा ली है?
2: क्या आरोप है और क्या मांग करेंगे आप लोग?
5: मैम इसमें यही है कि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, जो कि जो पूरी कहानी थी, जो पूरा कल का इंसिडेंट था वो उसमें पूरा ब्रीफ फैक्ट्स हैं। कंप्लेंट इस तरीके से है कि कल सुबह 7:30 बजे लगभग गोल्फ कोर्स के रोड पे ये लोग अपने बाइक राइड कर रहे थे और जो एक गाड़ी थी सियास जिसमें चार लोग थे, ड्रंक कंडीशन में थे, जो कि पहले इनको टीज करने की भी कोशिश करी तो इन्होंने बोला कि पीछे रहो आप, जब जैसी शिवानी ने क्रॉस किया उनको तो उन्होंने साइड से हिट करके और वहाँ से भाग गए। उनके जो साथी थे उन्होंने रोकने की कोशिश करी बट वो वहाँ से भागे, वो वीडियोस सोशल मीडिया पे पड़ी हैं, आप एक बार देखेंगे तो उसमें सब समझ में आ जाएगा।
0: Let's also listen into this conversation with Sia's fellow rider who was present at the spot when this incident took place on the 13th of September. Here's what they told NDTV.
6: I was on the रोड उस टाइम पे और सिया ने जस्ट मेरे को क्रॉस करा और मैंने देखा कि एक कार उसको बहुत बुरी तरह चेस कर रही है रोड के ऊपर और मेरे को मतलब थोड़ा मतलब वो अजीब लगा और रोड लगा कि वो कार ऐसे मतलब उसको चेस कर रही है, उसका पीछा कर रही है, क्योंकि उसने वो जो कार वाला था ना उसने बहुत ज्यादा क्लोजनेस मतलब बहुत ज्यादा क्लोज में था, वो बहुत ज्यादा एकदम टेल गेटिंग कर रहा था बाइक की और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला, सिया को कुछ इशारा करा, देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो कुछ हो सकता है और फिर वो गाड़ी वाले के पास मैं जब उसके विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा, मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे, क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन।
2: अच्छा, वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था मतलब सिया को?
6: हाँ, मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में। देयर वर थ्री गाइस इन द कार, तीन लोग थे वो कार के अंदर और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेड ब्लैक थे उस टाइम पे।
2: ओके,
6: बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे कार के और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है जो हमारा फोर वे है जो चौक है वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई, मेरे सामने एक कार आ गई, उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी, सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे, उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा। मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया, हड़बड़ा के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का, क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे।
0: Ishika Verma is tracking how this probe is progressing. She joins us with the clarity we need at this point. Ishika, as we were discussing, there's video footage, there's the vehicle's registration number, there are eyewitnesses who were riding with Sia. There are five teams deployed who are raiding hideouts. The allegation that the driver chased her, there were three people in the car. Why has Kalyan Besla still not been traced then?
7: Well, Parmeshwar, that continues to remain the big question, that why has Mr. Kalyan not been arrested and when will he be finally arrested? We here at NDTV have already brought in, you know, the voices of the eyewitnesses, the voices of the family, and yet, in fact, you know, we are seeing that the investigation is certainly taking time to progress. Well, we are currently reporting from the Gurugram Police Station of Sector 56, where the FIR has been registered in this particular case. And after that, certainly, the police has formed five teams to look into this entire investigation. There are raids that are happening at the different locations of the accused in this particular case. After that, certainly, the police is saying that all the CCTV footage near the golf course area are being looked into to establish the sequence of events as to what happened, when happened, and in fact, was it intentional or not. Remember that Sia here has alleged that there were in fact obscene gestures also that were made at her, and in fact she has gone on to claim that in fact the man Kalyan Besla, he came intentionally, he chased her and then he rammed his car into her motorbike, after which she lost control. She has gone on to say that it is in fact intentional hit and run case, and the two videos that have come out are the proofs of this. So certainly the police is looking into all of that. Meanwhile, let me tell you that the Palwal CIA is already on a hunt for Kalyan Besla. His counsel so far has gone on to say that the entire matter, the entire video is not out, and he has gone on to give some bizarre comments over this, calling it nadani and in fact choti si galti. So remains to be seen how the case will progress, but the family here is demanding stringent action. They want that in fact attempt to murder sections also needs to be put in the FIR so that stringent action is taken on Kalyan Besla. Over to you.
0: We'll of course continue to track all the updates with you, Ishika. Thanks so much for joining us with the latest coming in. Kalyan Besla remains on the run as the September 13th Gurugram crash video continues to trigger outrage. The video of this collision is now viral, and now another angle of the incident has surfaced. That video allegedly shows Kalyan's car swerving into the bike before Sia's dragged onto the road. Kalyan's lawyer, meanwhile, now claims that he was provoked before the collision. That claim will, of course, have to be tested against the video evidence, the witness accounts and the investigation largely. An FIR, though, has been registered. CI is expected to record her statement with the police today. This is the family seeking more serious charges. But the big question for us at this point remains, where is Kalyan Besla? The police have identified him. They have the registration number of the car as well. They have video footage. They've heard from witnesses. So then what is holding up the arrest? That's the big question. My colleague Shiv spoke to the lawyer, and Kalyan Besla's lawyer, Naveen Besla, rejected allegations that the collision with the woman biker was deliberate. He has argued in a conversation with NDTV that that viral video shows only part of the incident and claimed that the case is being portrayed differently from what actually happened. This as there are allegations that there were three people in the car and that they were under the influence.
8: Naveen ji, aapka client kahan hai? Kalyan Besla kahan?
9: Sir. Client nahi, mera dost bhi hai, mera bhai bhi hai sir.
8: Haan, toh kahan chhipa hua hai?
9: Hum ek hi gaon se belong karte hain sir.
8: Kyon itna bhaag rahe hain?
9: Sir, ye bhaag koi nahi raha sir. Actually, pata kya hota hai? Ye jo hum belong karte hain, wo gaon dehat se belong karte hain. Actually, wo toh samajhte nahi, main samajhta hoon us baat ko. Wo nadaani kar raha hai, kuch bhi. Usse ek galti hui hai. Theek hai ji sir? ठीक है उसकी जो गलती छोटी गलती है ना वो बहुत बड़ी करके दिखा दी गई है
8: नहीं कोई छोटी गलती नहीं है वो लड़की जो है
9: सर सर सर सर सर सर सर देखो सर मैं एक चीज बताता हूँ सर
8: घटना में मर सकती थी वो आपको भी
9: नहीं सर सर देखो सर सर सर उसके लिए ये सर बहुत गलत
8: आपका जो नादान दोस्त है आपका जो बेकसूर दोस्त है आपका क्लाइंट जो है वो एक कायर की तरह भागा हुआ है और वो हाई
9: सर
8: कैमरे के सामने नहीं आ रहा है एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है पुलिस का
9: सर एक्चुअली सर
8: आंसर नहीं भी कर रहे
9: सर सर मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर
8: इतना जो इतना जो बनाते हैं और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते ये
9: नहीं सर बिल्कुल आ जाएंगे सर सर बिल्कुल आ जाएंगे जैसे ही संपर्क होता है वो आएगा 100% आएगा सर
8: और
9: संपर्क एक सीधी सी नहीं अब नहीं है कोई संपर्क नहीं है सर मेरा एक सीधी सी बात और बता दूं सर कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता लोगों हमसे जानता नहीं जानता कोई भी सर हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता ना कायर ना कोई मर्द हूं इसमें
8: आपकी कल्याण
9: मेरी बात मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में सुनो तो सही सर मैं सर मेरी सुन दो एक सर मेरा क्या उसका दस मेरे पास 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गांवा कोर्ट चल रहे हैं और क्या नाम है पुलिस थाने में चल रहे हैं वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है एक्चुअली मेरा आज मंडे था काम ज्यादा था मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे 2:30 बजे फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया उसके बाद ये गांव में था मैं इसके गांव में गया हूँ
8: नहीं अरे ठीक है नवीन जी एक बात बताइए आप बोल रहे हैं
9: उसके गांव में गया हूँ गांव में जाने के बाद आज तक वाले न्यूज वाले आए हैं न्यूज वालों को उसने पूरी प्रॉपर अपना साइड रखा है अपना पक्ष रखा है
8: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है मैं बताता हूँ आपको क्योंकि आप सर, सर। की एक छोटी बात है छोटी सी गलती है ये नादान
9: नहीं नहीं सर सर सर एक्चुअली सर सर ये राइडर ठीक है सर ये सर सर सर आपने जो ये वीडियो वायरल हो रही है सर या एक एक सही बताओ ये रोडों पे राइडर निकल रहे ठीक निकल रहे हैं
8: नहीं नहीं जो भी होता है
9: नहीं सर जो भी नहीं होता ये वो एक चीज बताओ सर एक चीज बताओ वो तो सुनो सर वो तो सर 140 सर आप थोड़ी सी ना सर मैं बता रहा हूँ मैं कुछ सुनी हुई बात कर रहा हूँ और मैं कुछ आपकी जो वीडियो जो लड़की ने वीडियो डाली है उसकी बात कर रहा हूँ सर दो बात करूंगा सर कोई बात नहीं कर रहा जो लड़की ने वीडियो डाली मैंने वो वीडियो प्रॉपर 4 बार देखी है बिल्कुल जूम करके देखी है उसमें जो एक्सीडेंट वाला पॉइंट है ये बताता हूँ आपको एक्सीडेंट वाला पॉइंट आप देखो वहां पे देखो यू टर्न है एक गाड़ी आगे जा रही है कोई सी उसको साइड में लिया वो एकदम हिट हो गई है ठीक है उसने फुटपाथ से बचाने के लिए करी है एक ये आप देखोगे सर मैं तो वीडियो को चेंज नहीं कर सकता ना आप कर सकते
8: पूरा देश ने वो वीडियो देखा है
0: Well, you've heard from Kalyan Besla's lawyer. Kalyan Besla, though, accused of driving the Maruti Ciaz that allegedly hit the biker, describes himself online as an international kabaddi player and a member of the Indian rugby team. He also claims to have won the Amateur Olympia India Bodybuilding Tournament. His Instagram, though, has now been deactivated. But before it disappeared, it offered a glimpse into the image that Kalyan Besla projected online. One that seems to be dominated by bodybuilding, by fitness and muscle flexing photographs.
10: Kalyan Besla, a fitness enthusiast, bodybuilder, and according to his now deactivated Instagram profile, an international kabaddi player and member of the Indian rugby team. His profile also claimed he was a winner of the Amateur Olympia India Bodybuilding Tournament. His social media presence was clear. Post after post showed Besla working out, posing and flexing his muscles. He also had a substantial following on Instagram. And then there's the other side, devotional, local music videos. One of them titled Uttarakhand Ka Maharaja. And now, his name is at the center of a road rage case in Gurugram. A woman biker is riding with a group when a confrontation allegedly begins with the occupants of a Maruti Sias. Her action camera records what happens next. She appears to be trying to get away, but the car follows. Then suddenly, the car veers right and it hits a motorcycle from the side and speeds away. The impact throws the biker onto the road. Cops identified Kalyan Besla as a man allegedly involved in the incident. But what makes the case particularly striking is the contrast between the image Besla projected online and the allegations now being investigated. Bureau Report, NDTV.
0: All right, on that note, let's turn our attention to breaking news we're tracking currently. At least 200 DMK functionaries and members, including party Deputy General Secretary A. Raja, former ministers like P.K. Sekhar Babu, former MP R.S. Bharti and Mayor R. Priya, as well as other senior party functionaries, were booked for allegedly protesting at Saidapet without obtaining permission. They were protesting against the recent speech of Chief Minister Joseph Vijay in the Assembly, we're told. 200 DMK members, though, have been booked for a protest without seeking permission. Vijay Gopal Mulidharan joins us with the details we need currently. Vijay, we're given to understand that 200 DMK members have been booked for protest without a nod. This includes Party Deputy General Secretary A. Raja, P.K. Sekhar Babu as well, former MPs like R.S. Bharti and also Mayor R. Priya.
11: That's right. It's a two separate protests which happened in Chennai city. One was headed by DMK District Secretary A. Sekhar Babu, and also another protest headed by District Secretary M. Subramanian in Saidapet location, where there were controversial remarks passed by both the leaders, A. Raja and Sekhar Babu, during the protest. It was highly condemned by the TVK leaders for past few days, especially Sekhar Babu, who criticized Chief Minister C. Joseph Vijay, where TVK alleges used defamatory terms to abuse Chief Minister C. Joseph Vijay. On the other hand, TVK also condemned A. Raja for using abusive words against Minister, allegedly using abusive words against Minister CTR Nirmal Kumar. It was highly condemned by many political parties, like especially VCK and left parties. Even Kanimuli has posted a cryptic Tirukural post in X platform opposing such remarks made by DMK leaders during the protest. It was criticized by TVK ministers also. Now police have taken action on this based on a complaint registered by TVK member. Especially police had booked Sekhar Babu, former minister and DMK leader Sekhar Babu, for his alleged defamatory remarks against Chief Minister C. Joseph Vijay. And also many other were booked who were part of this protest also, Parameshwar.
0: Vijay, as always, thanks so much for taking us through the details. Do stay on with us for the next crucial update as well. All right, a television reality show as in Big Boss has now spilled into Tamil Nadu's political arena. Remarks made by Big Boss Tamil host Vijay Sethupathi about leadership have triggered a backlash from some supporters of Tamil Nadu Chief Minister Vijay. Mr. Sethupathi was speaking about leadership during an episode criticizing the idea of making promises without thought and then avoiding responsibility or blaming the rival team when problems arise. Now, some Vijay supporters interpreted those remarks as a dig at the Chief Minister and criticized Sethupathi on social media. Meanwhile, Big Boss Tamil has issued a clarification urging viewers not to interpret the remarks beyond the context of the show. But now the DMK has hit back at Vijay's supporters. TKS Elangovan, on behalf of the DMK, is describing them as brutals and barbarians and making wider allegations about law and order and the police too. Listen in to his full remarks.
12: That is what they do. See, they are all brutals. They are barbarians. Whoever supports Vijay are barbarians. They don't care for law and order. Even because the Chief Minister himself does not care for law and order. Why should we care is their mindset. They will do anything. And the police will support them. Police will kill people who would identify those people who had got who are selling drugs. But they will not take action against the drug peddlers. That is Vijay's police. It is because of Vijay. I think Vijay is getting something out of it.
0: All right, let's decode all that's unfolding behind the scenes with my colleague Vijay Gopal Mulidharan, who continues to be with us. Vijay, Mr. Sethupathi did not name Tamil Nadu Chief Minister Vijay. He didn't name any political party. So then what triggered the interpretation that this was aimed at the Chief Minister, even though he wasn't named?
11: Parameshwar, that's right. Vijay Sethupathi doesn't name any party or any leader's name. But however, the terms or remarks used by Vijay Sethupathi in the Big Boss show was used by TVK rival parties, especially by DMK, to criticize Chief Minister C. Joseph Vijay, saying that Vijay lacks leadership quality. And whenever issue arose, Vijay ran away from taking responsibility. So these are all the remarks made by DMK and other parties to criticize Chief Minister C. Joseph Vijay in political landscape. But on the other hand, Vijay Sethupathi also used similar remarks, but it's completely out of context from political, because Big Boss is a completely entertainment show, like we have been mentioning. And also now only the controversy started, where Vijay fans or Vijay supporters, Chief Minister Vijay supporters on social media criticized Vijay Sethupathi, saying that he is a DMK supporter. That's why he using an entertainment show to criticize Chief Minister C. Joseph Vijay. But it was now we have a clarification from the television network itself. Last night they have come up with a clarification saying that Big Boss is a completely entertainment show. One should not interrupt or taken those context out of outside the entertainment show. It's a completely entertainment and game show. We are not endorsing any comments or any specific leaders or any specific organization. Though that's a clarification given by the television network also, Parameshwar.
0: As always, Vijay, thanks so much for joining us with the latest details this morning. All right, now let's get you the latest as far as the Tamil Nadu Chief Minister's UK visit is concerned. You see, on one side, there are the images from Silverstone where Vijay met actor Ajit Kumar, watched the Michelin Le Mans Cup and flagged off the race. Those images have gone viral, particularly because the two stars have long been seen as rivals by their respective fan bases. On the other side, there is a stated purpose of this trip, which is investment. And you know, on that front, the numbers are significant. The Tamil Nadu government, spearheaded by Vijay, says that agreements announced during the visit involve more than 12,300 crore rupees in investment commitments. With the biggest being an approximately 11,000 crore rupee investment from Samvardhana Motherson, alongside a 1,000 crore rupee GCC commitment and an expansion by Sigma Technology. The government says these investments could generate more than 9,400 jobs. Yet the opposition is questioning the trip, particularly the Silverstone visit, and asking whether the Chief Minister's overseas tour was properly planned and whether the investments justify the exercise. The DMK has gone further, you must note, mocking this visit and questioning its purpose, accusing him of travelling abroad to meet and flatter his co-actor Ajit. The TVK is defending Vijay's UK visit, highlighting the investment push and suggesting that this camaraderie with Ajit could also create greater synergy between their fan bases.

0: clear clarify to the people of Tamil Nadu whether he went to the inaugurate only for the car race or he is going to meet the investors. That clarify the Tamil Nadu government is not yet given. So that's why we are all confused state.
1: MOUs can always be made. Any government will make MOUs, but where is the investment? Whether it will succeed or not depends huge on the government's capacity, government's vision. But this government has got no vision. The project which they are mentioning should have the basic infrastructure. But we have been saying that whether it is electronics or designing, engineering, everything, you need a big airport, particularly a cargo one. But the government has recently has withdrawn the Parandur airport issue. And Mr. Vijay, who has claimed through 110 statement that they will come out with the F1 track, and they say that he has gone there to make this project a success one. But unfortunately, where is the land? How much is going to be the cost? And how much government is going to bear the cost, because they say it is in PPP mode? Who is going to invest? All these details are not there. Even the basic details are not there.
2: All right, let's revert to the Gurugram crash that we are tracking. A woman riding a motorcycle on Gurugram's golf course road was injured.
3: जैसे कल हम मेरी वीडियो में जो मैंने डाला उसमें देखा कि वो एक गाड़ी वाला जो मुझे चेस कर रहा था, और मैं यूजुअली बाइक राइड करती हूँ संडे को, एंड मैं गोल्फ कोर्स रोड से जा रही थी. मैंने उस टाइम पे नोटिस नहीं करा कि ये गाड़ी उस रोड पे चल रही है, मेरे आगे पीछे चल रही है. पहली चीज़ जो उसने करी कि मैं बाइक चला रही हूँ एंड वो बहुत फास्ट मेरे साइड से निकलता है. देन आई वाज लाइक कि मैं ऐसे हो जाती हूँ कि भाई ये गाड़ी इतने पास से क्यों निकली है मेरे. फिर मैंने इग्नोर करा कि चलो छोड़ो. देन उसके बाद वो गाड़ी धीरे होके फिर वो पीछे जाती है. देन उसके बाद जो सेकेंड इंसिडेंट होता है, जो मेरी वीडियो में शो हो रहा है कि वो मेरे साइड में आके कुछ एक्शन करता है, फिर उसके बाद वो बोलता है कुछ कि मैं ये वो, और ऐसे रुकने के लिए उस तब मैं डर जाती हूँ. सी, उनके फेस से साफ झलक रहा था कि उन लोगों ने पी रखी है. उसके साइड में एक और लड़का था, वो भी कुछ एक्शन कर रहा था, और आई थिंक वो पीछे भी दो लड़के थे, पर गाड़ी के काले शीशे थे तो मुझे एग्जैक्टली नहीं दिख रहा था कि पीछे कौन लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं. और वो एक्शन करते हुए मेरे एकदम पास में आ रहे थे. एंड सी, मैं टू व्हीलर पे हूँ एंड गाड़ी कोई भी टक्कर मारेगी तो नुकसान मेरा है, उन लोगों का नहीं है. तो मेरा वही दूसरा एक्शन था कि भाई आप थोड़ा साइड चलाओ, आप पास मत आओ, ठीक है, कि आपकी गाड़ी भी तेज़ चल रही है. और फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि उसकी गाड़ी शायद से मेरी बाइक के पास आ रही है या आगे आ रही है, तो थोड़ा सा मैं तेज़ चली कि मुझे डर लग रहा था कि भाई वो कुछ कर ना दे. एंड जो एक फेलो राइडर था जो पीछे चल रहा था, ही ट्राइड कि वो मेरे पास आए, कवर करे, और उसमें वीडियो में भी दिख रहा है कि वो मेरे पास चल रहा है, उसकी जस्ट साइड में गाड़ी चल रही है. एंड इसी हफड़ा तफड़ी में कि वो लड़का उसको आगे नहीं आने दे रहा, एंड जब एक गाड़ी बीच में आई, मेरी बाइक स्लो हुई, एंड वो फर्स्ट लेन से, जो मेरे फ्रंट कैमरा व्यू से आया है कि वो फ्रंट लेन से आके कट मार के सीधा थर्ड लेन में आके मुझे टक्कर मार के जाता है. एंड इट वाज लिटरली वेरी शॉकिंग कि मैं एकदम अपने थर्ड लेन में आराम से चल रही हूँ क्योंकि गाड़ी आ गई है एंड मैं स्लो हुई हूँ, एंड वो टक्कर मार के जाता है, मैं गिरती हूँ, मुझे कोई होश नहीं रहता कि क्या हुआ है मेरे साथ. एंड जैसे मेरे एक फेलो राइडर ने उसको रोकने की कोशिश करी कि भाई रुक जाओ, आप रुक जाओ, आपकी गलती है, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, उस लड़की की गलती है. एंड वो रुकता नहीं है, वो रेड लाइट भी तोड़ के उसको लेफ्ट का रास्ता मिलता है एंड वो भाग जाता है.
4: राइडर थे आप, कितने बजे कहां से निकली थी और कहां तक आपकी,
5: और गाड़ी में कौन कौन मौजूद था? क्या केवल मर्द थे या औरतें भी थी उस गाड़ी में?
3: उसमें

0: उसमें सारे लड़के ही थे, कोई औरत नहीं थी जितना मैंने देखा। और मैंने जो राइड थी कि मैं अपने घर से निकल के गुड़गांव में एक बाइकर वन कैफ़े है जो मेजरली बाइकर्स के लिए काफ़ी फेमस है, मैं वहीं जा रही थी। मेरा कोई आज सच ग्रुप नहीं है जिसके साथ मैं चलती हूँ, मैं कभी अपने ब्रदर के साथ भी राइड करती हूँ। सी मेरे पास जो बाइक है वो और भी लोगों के पास है, तो बाइकर कम्युनिटी में सब एक दूसरे को जानते हैं किसके पास क्या बाइक है, तो वो लोग मुझे जानते हैं। हाँ, मेरी हेलो हाय होती है और उन्होंने देखा कि मैं आगे चल रही हूँ, तभी मेरे एक काइंड ऑफ मेरा फ्रेंड है, हम एक दो बार में हमने ग्रुप राइड करा है अप्रीलिया वालों के साथ, तो उन्होंने देखा कि जब ऐसा हो रहा है उसने पहचाना कि वो मैं हूँ। तो अच्छा है उसका कैमरा चल रहा था और उसने सब चीज़ें रिकॉर्ड करी।
1: आपके फेलो राइडर ने भी जानकारी एनडीटीवी को दी थी कि किस तरह से वो लगातार आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे, क्या इंटेंशनली आपको लगता है कि आपको हिट करने की कोशिश या परेशान करने की कोशिश की जा रही थी?
2: एक्सीडेंट
0: जब हुआ तो जितने भी जिन लोगों ने देखा, मेरी बाइक का पीछे का ब्रेक टूट गया था, आगे का ब्रेक टूट गया था, और वो बाइक मतलब प्रॉपरली चलाने लायक नहीं थी। जो भी दूसरे वहाँ पे राइडर्स ने मुझे देखा, एक किसी ने मुझे पीछे बिठाया और हम पहले बाइकर बन लेके गए, मैंने वहाँ पे हीट पैच वगैरह जो भी चीज़ें थी मैंने वहाँ ऑर्डर करी, वहाँ पे मैंने लगाई। फिर उसके बाद एक घंटे, क्योंकि मैं लिटरली टेरिफाई हो गई थी, आई वॉज लिटरली शेकिंग, मेरे से बिल्कुल भी बाइक नहीं चल रही थी। एंड फिर एक दो राइडर्स ने मतलब मेरी एक ने बाइक चलाई एंड मैंने किसी और की बाइक राइड करके मैं यहाँ तक आई। देन फिर मैंने अपनी बाइक स्विच करी, फिर मैं अपने घर पे उस बाइक को लाके मैं पहुँची। सी जो वो लोग कह रहे हैं कि मैं पिंच कर रही थी, देखो मुझे कोई शौक नहीं है किसी गाड़ी वाले को पिंच करने का, ठीक है। मैं बाइक आज से नहीं, मैं एक साल से चला रही हूँ। आई नो कि मैं राइड कर रही हूँ तो मुझे अपनी सेफ्टी देखनी है, तो मैं किसी से फालतू में रोड पे क्यों पंगे लूँगी। एंड जैसे वो बोल रहे हैं पिंच कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, वो देखिए वीडियो में शो हो रहा है। एंड मुझे नहीं लगता कि अब उनकी कोई भी सफाई काम आएगी कि जैसे उनका लॉयर या वो बयान देने की कोशिश कर रहे कि मेरी गलती नहीं है। आज से सारे देश के पास वो वीडियो है कि किसने क्या इंसिडेंट करा, एंड ऑब्वियसली वो गुनाहगार है, हिट एंड रन का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का, इंटेंशनली वो हिट करके गए हैं जैसे वीडियो में शो हुआ है।
2: गुड़गांव पुलिस ने आपसे संपर्क किया?
0: गुड़गांव पुलिस ने मेरे से अभी इंस्टाग्राम के थ्रू किया था जब मेरा वीडियो ज़्यादा हुआ। एंड मेरा मेन पर्पस वीडियो डालने का यही था कि लोग सोचते हैं कि हम मार के चले जाएंगे किसी लड़की को या किसी बाइकर को, वो क्या एक्शन लेंगे, उनका तो आए दिन गिरने का होगा। और इसलिए मेरा मेन पर्पस था वीडियो डालने का कि लोगों में डर नहीं है कि अगर आप रोड पे किसी को भी मार के चले जाएंगे, कोई मर रहा है कोई जिंदा है, किसी में वो डर नहीं है, तो वो डर पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है।
3: साइबर सिटी में इस तरह की घटना होना, इससे पहले भी बाइकर्स की कई बार जान गई है, पिछले दो साल में तकरीबन 3-4 इस तरह के हादसे हो चुके हैं, और ये तो गनीमत है कि आप सही सलामत हमारे सामने खड़े हैं। क्या कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, खासतौर पर गुड़गांव जैसे?
0: सी लॉ एंड ऑर्डर को लेके वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। पुलिस का ये काम होता है, ट्रैफिक पुलिस वालों का ये काम होता है बाइकर्स को लेके कि भाई वो बाइक चला रहे हैं, एग्जॉस्ट है, आपने क्या कर रखा, आप बहुत जल्दी उनका चालान कर देते हैं। पर किसी बाइकर वाले को कोई मार जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, तो उन लोगों का क्या, उनकी जान आपके लिए कीमती नहीं है? जब तक कोई बाइकर वाला ठुक के मर ना जाए तब तक क्या लॉ एंड ऑर्डर उठ के आएगा? नहीं। अगर आप बाइकर पे इतनी पाबंदी लगाते हैं गुड़गांव में, तो आप ये भी तो देखिए जो फोर व्हीकल चला रहे हैं, जो लोग इतनी रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं?
2: कितनी देर पहले उसने आपको पहली बार इशारा किया, पहली बार क्या आप लोगों को, उसने आपको कब देखा और किस तरीके से, वो पूरा सीक्वेंस बताइए क्या हुआ?
0: मुझे नहीं पता कि उसने मुझे कब देखा, क्योंकि देखिए मैं अपनी लेन में अपने आप को देख के मैं चलाऊंगी, कौन सी गाड़ी मेरे आसपास चल रही है, ठीक है, मैं इतना ध्यान नहीं दूंगी कि उसमें कौन है क्या है। जो पहली चीज़ थी वो मेरे बाइक के साइड से बहुत तेज़ अपनी गाड़ी लेके गया, तब मैंने उसको

0: नोटिस करा, मुझे लगा कि भाई ठीक है, हुआ होगा, नहीं देखा होगा, वो इंसान जल्दी में होगा। अगर आप इतनी तेज लेके गए हो तो आप सीधा निकलो ना, आपका क्या तुक बनता है? आप आगे रुक रहे हो, मुझे एक्शन कर रहे हो, फिर उसके बाद आप पीछे से आगे ठोक के भाग जाते हो।
1: गाड़ी में कितने लोग थे, आपने कुछ देखा?
2: महिला भी थी क्या? महिला
0: गाड़ी में, जो जब उसने शीशे डाउन करे उसमें दो लोग मुझे आगे दिख रहे थे, ठीक है, और जितना मुझे लग रहा है पीछे भी दो लोग थे, काले शीशे थे पूरे गाड़ी के, तो मुझे एग्जैक्टली इतना नहीं दिख रहा था एंड मैं इतना फोकस से भी नहीं देख पा रही थी क्योंकि मैं बाइक राइड कर रही थी और सारे लड़के
1: क्या थे। आपको चोट भी लगी थी? आपको हाथ में चोट भी लगी, एक बार दिखाएं।
0: मेरे यहाँ पे चोट लगी है, मेरा मतलब पूरा ये नील वगैरह हो रखा है, मेरे को नीज पे चोट लगी है। मैं लिटरली मैं भगवान का शुक्र गुजार हूँ कि मैं मेरे पास मेरे राइडिंग शूज थे, मेरी ग्लव्स थे राइडिंग, जिसमें एक वो होता है कि आप अगर गिरते हो तो वो आपको स्लाइड करते जाता है। अगर इन केस मेरे पास मेरे राइडिंग शूज़ ग्लव्स नहीं होते तो जो मेरा पहला हाथ पड़ा तो उससे मेरी शोल्डर भी ब्रेक हो सकता था, मेरे लेग भी ब्रेक हो सकते थे। वो हम थोड़ी सेफ्टी लेके चलते हैं, इस वजह से
3: गिरफ्तारी।
0: देखो इतना इंसिडेंट कल से चल रहा है, लोग इतना मतलब बोल रहे हैं कि साफ दिख रहा है उस बंदे ने क्या किया है। वो किसी एक इंसान को मार के रोड पे मरने के लिए छोड़ के चला गया एंड अभी भी वो इंसान फ्रीली घूम रहा है, वो न्यूज़ रिपोर्टर को बाइट दे रहा है, वो अपनी सफाई पेश कर रहा है। उसको इतना टाइम कैसे मिल रहा है? पुलिस उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? अब तो सारी डिटेल्स उसके पास है, बकायदा मैंने गाड़ी का नंबर वगैरह उसमें डाला अपने कैप्शन में एंड उसके बाद भी पुलिस उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो यही एक मतलब निग्लिजेंस है डिपार्टमेंट की, तभी तो लोग इतना फ्रीली सब रोड पे कर पा रहे हैं।
2: रफ्तार क्या रही होगी उस वक्त आपकी और कार
0: की? मेरी आई थिंक सो मैं उस टाइम पे 50-60 हो गई थी, मेरी स्लो हो गई थी क्योंकि गाड़ी बीच में आ गई थी एंड जो गाड़ी की रफ्तार है वो तो मुझे लग रहा है कि वो 100 या उसके अवर भी थी क्योंकि जिस तरीके से वो तेज़ी से लेके आया। और अगर मेरी बाइक स्लो नहीं होती तो मैं वहाँ पे डिवाइड।
2: अच्छा, आप लोग अक्सर जाते हैं, वो बाइक है कहाँ? कहाँ है बाइक?
0: मेरी बाइक
2: यहाँ
0: पे आई है, यहाँ पे।
1: चलिए चलिए,
0: मैं ज्यादा देर खड़ी
3: दीपांशु।
4: Well, you've just heard from Sia herself. She has categorically said that the culprit made a deliberate move. She's detailed her entire experience from before the collision. Let's go across to Ishika to decode all the finer developments as Kalyan Besla remains on the run even after 50 hours of this incident taking place. Ishika, take us through the key takeaways from what Sia has detailed about her experience on the 13th of September.
5: Well, Parmeshwar, as you rightly mentioned, today, in fact, Sia has given a detailed explanation and especially regarding the sequence of events, in front of the media. But first of all, the important points here are, number one, that she has denied those claims where, in fact, Kalyan Benswa, in fact, had said that, there was provocation that was done by her. She has dismissed those claims here in this press briefing. Apart from that, if we talk about, she has gone on to say that while she was driving, she was not able to see that for how much time he had been chasing her. But she has made this claim once again that there were objectionable gestures that he had done towards her. And only when he pulled down the windows was she able to see that there were two men, in fact, that were sitting in the front seats of that particular car. She has also gone on to raise question over the law and order situation, something that we have been discussing, Parmeshwar, since early morning today, that when she has already given the vehicle registration number to the police, the eyewitnesses are already there, then what is taking time for the police to in fact arrest him? Why is he still not

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: All right, our big focus remains the hit and run case in Gurugram. Over 50 hours on, the driver, Kalyan Besla, he's still on the run. My colleagues are tracking Kalyan Besla's trail. In fact, Akhil Jameel has been outside his residence. Ishika has been tracking all other aspects as well. The big question at this point is someone protecting Kalyan Besla? He was in that car with two other men as well. Three of them currently are absconding. Meanwhile, Kalyan Besla's lawyer says that he wasn't deliberately attacking Sia while she was riding her bike. Over 50 hours on, Kalyan Besla, the man on your screens at the moment, remains absconding. This as five teams have been deployed by the Gurugram police. They are searching hideouts, looking for this man who was part of that incident and that viral video on the 13th of September. Kalyan Besla had claimed that he had fled out of fear of a mob attack after the collision. Five teams are looking for him as we speak. He's been absconding for 50 hours now. Let's go across to my colleague Ishika, who's been tracking the latest details at the moment. Ishika, 50 hours on, have police narrowed down where Kalyan Besla and the two other people may be who were in the car? Do they have any sort of confirmed location? Any possible hideouts? What have they recovered so far?
1: Well, Parmeshwar, so far, if we talk about, the strategy of the police, in the hunt for Kalyan Besla, they have said that the five teams that have been deployed for them from their side is, in fact, raiding all the possible hideouts of Kalyan Besla. So they are expecting that today...
0: I sincerely apologize, I'm interrupting you. We actually have Sia joining us on The Breakfast Show, the broadcast with my colleague Vedika Sood Sachdeva. Let's go across to them.
2: It takes a lot for a woman to come out and speak after the trauma she has undergone. I have Sia on the phone line with me. Sia, thank you so much for speaking with us. Please feel free to speak in English or Hindi while I speak to you. Firstly, I want to start by thanking you for standing up for justice in this case. I want to understand from you how you are at this moment. You've been through an extremely traumatic phase. Sia.
3: Obviously, जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ एंड आई वाज लिटरली ट्रॉमाटाइज कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ एंड पूरे दिन में आई डिडंट पोस्ट एनीथिंग अबाउट दैट इंसिडेंट बिकॉज आई वाज इन अ शॉक कि एक गाड़ी मुझे हिट करके एंड वो भाग जाती है एंड जो पूरा इंसिडेंट मैंने अपनी वीडियो में शो करा है कि कैसे वो गाड़ी जिसमें ये सारे लड़के थे वो चेस कर रहे थे एंड दे वर ट्राइंग टू हरास मी एंड कि वो कोशिश कर रहे थे कि लड़की बाइकर है तो उसको कुछ बोलते हैं एंड वो पूरे टाइम मुझे गोल्फ कोर्स रोड पे चेस करते रहे एंड एट द एंड उन लोगों ने मुझे टक्कर मार के गाड़ी से मुझे गिरा दिया एंड ऑब्वियसली वो फिर वो वहाँ से भाग भी गए वो सारे लड़के
2: सिया It's been over 50 hours. You had even put out the number plate of this car. Are you frustrated today that you have been fighting for justice? You were the one who came out on social media with the video, thanks to the dash cam that you had. You are the one who shared the number of the car. You are the one who's provided all the details. And today's day three since the incident. And the police, despite having five teams on the ground, have not been able to nab the man.
3: Obviously, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है मेरे पास मेरी बाइक पे मेरा कैमरा था एंड थैंक गॉड वो इंसिडेंट रिकॉर्ड हो गया अगर वो कैमरा नहीं होता मेरे पास तो मैं अपना इंसिडेंट को कैसे जस्टिफाई करती एंड सेकंड जब मैंने वीडियो मैंने पोस्ट करा उसमें मैंने खुद गाड़ी का नंबर और जो भी उनकी डिटेल्स थी किसके पास मतलब नाम पे ये गाड़ी है वो मैंने खुद पोस्ट करा एंड मैंने वीडियो रात में पोस्ट करी एंड गुरुग्राम पुलिस का आई थिंक सो दोपहर में आफ्टरनून में मुझे मैसेज आया जब ये वीडियो हर एक न्यूज़ चैनल पे चल चुकी थी एंड व्हेन एवरीवन वाज आस्किंग कि पुलिस ने क्या एक्शन लिया तो पुलिस का ध्यान बहुत देर में गया उस इंसिडेंट पे जो संडे सुबह हो चुका था ऑलरेडी एंड उसके बाद सारी डिटेल्स होने के बावजूद भी वो लड़का अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है एंड वो इतना फ्रीली दूसरे चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा है, अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मेरे से छोटी गलती हो गई. उसको इतना सब चीज़ों के लिए कैसे टाइम मिल रहा है? मतलब पुलिस क्यों नहीं उसको पकड़ पा रही है, क्यों नहीं उसको अरेस्ट कर पा रही है? जो क्लियरली हिट एंड रन का केस है, वो क्लियरली अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है एंड वो आज फ्रीली सड़कों पे अपने घरों में मतलब आराम से बैठे हुए हैं, कोई डर नहीं है उनको. तो पुलिस क्या कर रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा. एंड ऑब्वियसली वो गुस्सा है, वो फ्रस्ट्रेशन है मुझ में कि आज भी इंडिया में लोग किसी को मार के चले जाते हैं एंड जो विक्टिम होता है दे आर सफरिंग, विक्टिम की फैमिली सफर कर रही होती है एंड वो आराम से घूम रहे हैं.
2: You know, see, I again want to commend you because you've come out, you've revealed your identity at a time when the accused and the other men have not been caught till now. You say you're frustrated. What was your reaction when you heard the lawyer of Kalyan Besla also speak to NDTV, where he says that his client is the victim? Do you think this is very convenient? Because given that they were the ones to hit you, Kalyan Besla was driving the car, he hit your bike and then he ran away from the spot. For a moment, just suspension of disbelief in this case where we say that Besla is the victim, just for a moment, I'm playing the devil's advocate, why didn't he stop to help you then? Isn't that the biggest question at this point?
3: See, lawyer ka kaam jitna hota hai ki aapko justice dilana aur jo aapke saath galat hua hai us pe stand lena. Mujhe samajh nahi aata ki unka lawyer publicly wo kaise wo statement de sakte hain ki unse choti si galti ho gayi. Ye koi choti si galti nahi hai. अगर उन्होंने मुझे हिट करा है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था. मैंने तो अपने राइडिंग गेयर पहन रखे थे इसलिए मैं बच गई. अगर वो दो सेकंड मेरे पीछे होते, एक दो सेकंड का फर्क होता, मेरी हड्डियां टूट सकती थी, मेरे को मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी.
2: I think you've got a second life, Sia. It's nothing short of that.
3: This is my second life and मैं आपको बता नहीं सकती. मैं सबसे पहले घर आके मैं अपने भगवान जी के सामने मैंने हाथ जोड़े हैं कि लिटरली मैं बहुत ज़्यादा बच गई हूँ. मैं हमेशा अपनी राइडिंग बैग में आई ऑलवेज कैरी रुद्राक्ष मेरी सेफ्टी के लिए. एंड मुझे समझ नहीं आता वो कैसे जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि मेरे मेरा क्लाइंट की कोई गलती नहीं है. पूरा देश देख रहा है वो वीडियो की उनकी गलती है. फर्स्ट लेन से थर्ड लेन में आके किसी को हिट करके जाना ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है. एंड आज भी वो एक जो क्रिमिनल है वो आज खुला घूम रहा है, मतलब उन्हें शर्म आनी चाहिए. कल को उनकी बेटी के साथ भी हो सकता है ये इंसिडेंट सड़क पे.
2: See, I want to understand, do you feel unsafe as of now till the man is arrested and what are you expecting in terms of justice?
3: Ma'am, ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है एंड इससे पहले भी कितने ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब मैं बाइक राइड करती हूँ. मतलब मुझे समझ नहीं आता लोगों के दिमाग, लोगों की क्या मेंटालिटी है ये.
2: बिल्कुल, बिल्कुल.
3: कि किसी फीमेल बाइकर को देख के वो उसको चेस करने लगते हैं. मतलब मैंने खुद मल्टीपल टाइम्स कितनी ये चीज़ें फेस करी है एंड ये इंसिडेंट दिन दिहाड़े हुआ है, सुबह हुआ है. और मुझे सुबह मतलब मेरे आसपास मेरे फेलो राइडर्स होने के बावजूद भी मुझे उस दिन इतना अनसेफ फील हुआ. मतलब कल को मैं अगर अपनी बाइक लेके भी निकलूं अकेले तो मैं 10 बार सोचूंगी कि मुझे निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए.
2: एंड दैट वाज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सिया. डू यू थिंक यू विल बी एबल टू राइड एनी टाइम इन द नियर फ्यूचर गिवन व्हाट यू हैव बीन थ्रू?
3: नहीं, बिल्कुल भी नहीं. जिस तरीके से हमारा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है हमारी दिल्ली में, गुड़गांव में, तो मुझे नहीं लगता कि मैं फ्रीली ऐसे अपनी बाइक लेके निकल पाऊंगी. क्योंकि मुझे इतना अनसेफ फील होता है कि कोई भी आपको चेस करेगा, कोई भी आपको मार के चला जाएगा एंड डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता है. डिपार्टमेंट सिर्फ अभी भी बैठा हुआ है. संडे सुबह का इंसिडेंट था, अभी भी वो करण बेसला अभी भी वो घूम रहा है एंड उसका अरेस्ट नहीं हुआ है.
2: I just stay with me for a moment, Sia, because I want to just underscore what you've just said for the viewers who are tuning in. This is a woman who was the victim of road rage of a man and some men with him in a car who hit her and left her on the road. She has come out on social media. She has detailed what happened with her. Extremely traumatic situation, extremely traumatic incident. She has revealed her identity. She has revealed the number of the car. My question, Sia, is what else is expected of you if the law cannot stand up and nab the man 50 hours after you have provided every possible detail. His name is known to the system. His photograph is out there. We've spoken to the lawyer who claims he is the victim. Every possible detail is there. Your dash cam footage speaks to the story being true. Despite that, you have the man on the loose here.
3: तभी तो आज कोई भी एक क्राइम करके इंसान भाग जाता है इंडिया में, क्योंकि डिपार्टमेंट का किसी का डर ही नहीं है किसी में. अगर आज हम कोई एग्जांपल सेट नहीं करेंगे किसी के लिए, तो कल को सेम इंसिडेंट होगा, सेम लोगों को मोटिवेशन मिलेगी कि हम किसी को चेस करें, मार के चले जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट तो कुछ करता नहीं है, लॉ कुछ करेगा नहीं. आज हर एक व्यक्ति के पास सारी डिटेल है उस पर्सन की. मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी सिर्फ पुलिस के पास है, हर एक इंसान के पास डिटेल है, उसका गाड़ी नंबर, उसका नाम, उसका फोटोज, इवन उसका एड्रेस तक हर किसी के पास है. पर आप देखो कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा. तो ऑब्वियसली ये एक एग्जांपल हम ही, हमारा डिपार्टमेंट ही सेट कर रहा है कि भाई आप मार के जाओ, आप क्राइम करो और आप फ्रीली घूमो, आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा.
2: You know, viewer, right now what Sia is talking about is not only the trauma she's been through, but the broken system as well that she is trying to reach out to. Sia, I want to ask you, when was the last time the Gurugram police reached out to you over this incident?
3: See, last kal afternoon mein unka mere paas message aaya. Jab
2: message aaya, no one has come and met you till now?
3: No, message, basically unka message aaya ki we are taking this action. एंड आप मतलब हमें कॉन्टैक्ट करो. सी, जब वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मैं कल इवनिंग में अपने लॉयर के साथ जाने वाली थी, बट जो गुरुग्राम पुलिस का जो एक्शन था इस चीज़ पे, वो बहुत लेट हुआ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो संडे वो इंसिडेंट हो चुका है एंड उनका अभी भी कोई एक्शन नहीं है. आई डोंट नो वो लोग कैसे काम कर रहे हैं एंड वो इंसान फ्रीली घूम रहा है. तो ये लापरवाही है हमारे लॉ एंड ऑर्डर की, लापरवाही है हमारे डिपार्टमेंट की. एंड मैं यही डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक गलत एग्जांपल सेट मत करो दूसरे लोगों के लिए. और भी लोग हैं जो सड़क पे चलते हैं और बाइकर्स हैं, एंड ये सिर्फ बाइकर्स को ही लेके नहीं है, कोई भी ले मैन के साथ ये चीज़ हो सकती है. मेरे पास आज प्रूफ था अपने इंसिडेंट का. अगर किसी के पास प्रूफ नहीं है, उसको तो फिर जस्टिस मिल ही नहीं सकता इस देश में.
2: But I'm failing to understand then, will you be going to the police station today? There has to be some direct communication with the Gurugram police.
3: Already, मेरी फैमिली एंड मेरा लॉयर कल वो गए थे पुलिस स्टेशन, और आज पुलिस मेरे स्टेटमेंट के लिए आएगी.
2: ओके.
3: एंड मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि हम कोई गलत एग्जांपल सेट ना करें, हम अपने लोगों के लिए एंड स्पेशली फॉर द फीमेल राइडर्स जिनको रोज इस हरासमेंट से गुजरना पड़ता है.
2: एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट फॉर अ मोमेंट सिया. लेट्स टॉक अबाउट फीमेल बाइक राइडर्स. यू हैव बीन रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम देम. दिस इज अ स्मॉल कम्युनिटी बट अ स्ट्रॉन्ग वन. टेल अस अबाउट द हरासमेंट दैट वुमेन गो थ्रू ऑन द रोड्स व्हेन दे आर सीन राइडिंग बाइक्स.
3: सी, अगर आप एक फीमेल राइडर हो एंड मुझे ऐसा लगता है हर एक फीमेल राइडर ने हमेशा अपनी लाइफ में ये चीज़ ज़रूर फेस करी होगी, क्योंकि वो जब ये देखते हैं कि वो फीमेल राइडर है, वो उसके पास आएंगे, उसको शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे, उसको हरास करने की कोशिश करेंगे. लोग तो बोलते हैं कि हम प्रेज करते हैं. सॉरी, वो प्रेज नहीं होता, वो अप्रिसिएशन नहीं होता. आप फीमेल राइडर से पूछो उनको कितना डर लगता है जब अगर कोई आसपास आके आपके साइड से गाड़ी लेके जाता है, या कोई बाइक लगा देगा आपके आगे, या मतलब लोग कितना फीमेल राइडर को सड़क पे चेस करने की कोशिश करते हैं. तो ऑब्वियसली फीमेल राइडर्स के लिए बहुत अनसेफ है ये रोड्स. एंड अगर हम अभी भी यही एग्जांपल सेट करेंगे कि हम उनको नहीं पकड़ रहे हैं, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये हमारे डिपार्टमेंट की गलती है कि इन फ्यूचर भी ये सेम इंसिडेंट गुड़गांव दिल्ली के रोड पे होते रहेंगे.
2: सिया, 2-3 मोर क्वेश्चंस एंड थैंक यू अगेन फॉर स्पीकिंग टू अस एंड डिटेलिंग एवरीथिंग आउट. आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू व्हाट योर मैसेज टू मिस्टर बेस्ला विल बी टुडे थ्रू आवर चैनल, गिवन दैट ही इज हाइडिंग. ही इज द मैन हु शुड बी कॉट अरेस्टेड, बट ही इज हाइडिंग समवेयर एज अ कावर्ड. व्हाट इज योर मैसेज टू द मैन?
3: मेरा मैसेज यही है कि आप कितने भी अपने इंटरव्यूज दे ले, आपका लॉयर कितनी भी आपकी गलती छुपाने की कोशिश करे, आप कितना भी विक्टिम और सिंपथी कैरेक्टर प्ले कर लो, पर आज पूरे देश ने देखा है कि आपने किस तरीके से अपनी गाड़ी से मुझे ठोका है और आप मुझे मार के वहां से भागे हो। ये नहीं कि आप वहां से निकल गए हो, आप एक किसी गुंडे की तरह मेरे को ठोक के भागे हो। और आप ये मत सोचना कि आप अपना ये सिंपथी कार्ड प्ले करके आप बच जाओगे। ऑब्वियसली मैं हूँ, मेरे पीछे पूरी बाइकिंग कम्युनिटी है, मेरे पीछे हर एक इंसान का सपोर्ट है और हम आपको सामने लाके खड़ा करेंगे और मैं वो एग्जांपल सेट करूंगी कि कोई भी किसी फीमेल राइडर को देखेगा, चेस करने की कोशिश करेगा तो वो 10 बार सोचेगा।
2: सिया, आई एम सो इंस्पायर्ड सिया बाय लिसनिंग टू यू टुडे, बिकॉज़ व्हाट यू आर सेइंग इज यू हैव सर्वाइव्ड अ क्लोज शेव ऑफ कोर्स, बट यू आर नॉट गिविंग अप, यू डोंट फील डिफीटेड डिस्पाइट द सिस्टम फॉर नाउ लेटिंग यू डाउन। देयर आर सीसीटीवी कैमरास अलोंग ऑल द रोड्स देयर होपफुली इन गुरुग्राम, इट शुडंट टेक सो लॉन्ग टू ट्रैक द मैन, एंड व्हाट यू हैव सेड राइट एट द एंड रियली होल्ड्स ट्रू। It's an inspiration to every woman out there that you will not give up, you will set an example for the system to understand, you know, the lag that we're seeing, for women to understand that they are not alone. Before I let you go, my last question to you is this: do you feel alone in this fight as of now?
3: No, I don't feel alone. Mere paas har ek person ka support hai, and I'm glad ki wo log mujhe support kar rahe hain, apni best wishes bhej rahe hain. All the biking, the members of biking community and everyone, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं एंड उन्हीं से मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मुझे इस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए।
2: यू नो सिया, बिफोर यू गो, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट NDTV, एंड आई डोंट वांट टू से दिस फॉर ब्राउनी पॉइंट्स, बट आई एम सेइंग दिस फॉर अ रीज़न, NDTV वाज द फर्स्ट चैनल टू टेक अप द स्टोरी यस्टरडे अर्ली मॉर्निंग, एंड वी विल सी इट थ्रू विद यू।
3: आई नो NDTV वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज करा था and they want to connect with me and
2: yes no along with that we were the first one to take the story forward. We made sure it was on the website, it was on television, because we want to see justice in this case. I'm from Gurugram, I know what it feels like to be on those roads out there, Sia, through the evenings especially. So more power to you, and thank you so much for speaking with NDTV. Sia, we are very inspired by you. Thank you. Parmeshwar, that was Sia that we were speaking to. It's back to you in the studio.
0: Vedika, thank you so much. The Gurugram hit and run victim Sia has broken her silence over the golf course road incident in her interaction with NDTV, strongly rebutting the accused driver's claims and questioning his sympathy-seeking act following this crash. We've heard directly from Sia. Her dash cam recorded the entire frightening incident. She's questioning why the accused has not been nabbed over 50 hours since this incident took place, why he's openly giving interviews, but the teams deployed by the Gurugram police, 5 teams by the way, have not been able to locate the accused and the other two men who were present in the car at the time of this incident on the 13th of September. Ishika continues to be with us. Ishika, where does this investigation stand at the moment? Where is Kalyan Besla 50 hours on? The 5 teams that have been deployed by the Gurugram police, have they been able to find anything at all?
1: Well, Parmeshwar, that is the question, you know, that is being raised even by Sia herself, that even after, you know, she has given the vehicle registration number and the other details along with the eyewitnesses are already there, then what is taking so much of time to arrest Kalyan Besla? So that is in fact one of the questions that she has in fact asked in her press briefing. But certainly what the Gurugram police has so far said, that their 5 teams that have been made by them, they are conducting raids at all the possible hideouts of Kalyan Besla. Apart from that, their teams are also in fact now reaching to Sia's residence, because today the statement of Sia and her family members are to be recorded. Apart from that, if we talk about the CCTV footages, all of that is being taken into account to establish the sequence of events. The police is saying that all of these efforts are being made and they are expecting that by maybe by tonight they will be able to arrest Kalyan Besla. But certainly here, the big question is that even after 50 hours, why is he still not arrested by the police? Here, Sia has also gone on to claim once again that it was a deliberate attempt of hit and run case that was also captured by her camera. In that particular press briefing, she has explained in details as to what happened on that day, saying that she of course wasn't aware that for how long the vehicle was chasing her bike, but when they came close there was confrontation because obscene gestures were made towards her direction. And after that, windows were pulled down and she was able to see two men sitting in the front seats of that particular car. She has also gone on to say in this press briefing that that particular car, in fact, was driving on the first lane, but deliberately came to the third lane and then rammed into her motorbike. So she has given this entire description. Police will be recording her statement today, but the big question remains that when will Kalyan Besla be arrested, and certainly where does the safety of women bikers lie? Because this is not the first incident. The entire biker community has gone on to say that this moment was captured, but such kind of incidents unfortunately have been happening for a long time. Over to you.
0: Right, so as Ishika is highlighting, there's video footage, there's the vehicle's registration number, there are eyewitnesses who were riding with Sia. There's the allegation that the driver chased her, they later drove away. There were two other men present with Kalyan Besla in that vehicle at the time of this collision. Yet, despite five teams being deployed by the Gurugram police, Kalyan Besla, 50 hours on, has still not been traced. But in these 50 hours, he has spoken to media organizations, yet the police have not been able to nab him. Gurugram police have deployed five teams, not one, not two, not three, five teams. And yet, they haven't been able to nab this man. Ishika, Sia was speaking to NDTV just a few moments ago, and she's mentioned that no one from the establishment, as in the Gurugram police, have come and visited her after this shocking incident also took place on Golf Course Road.
1: Well, Parmeshwar, as you rightly said, we just heard her in conversation with NDTV. She has explained all of this, in our phone-in interview. And she's also gone on to say that so far, of course, certainly the officials have not visited her house. But what we are getting to know, as per the police officials, is that, in fact, today the statements are going to be recorded. So for that, the team of the Gurugram police is going to reach her house shortly to in fact record the statements of her and her family members as well. Because Parmeshwar, we have seen, and as we have spoken to her on NDTV, her family also is wanting to press in fact strict charges against Kalyan Besla. They have gone on to say that in fact the attempt to murder charge also needs to be added to the FIR. So that is one of their primary demands, saying that only after that can they expect that stringent action will be taken on Kalyan Besla. So certainly in a short while from now, we are expecting the Gurugram police team to reach Sia's residence. After that, certainly the statements are going to be recorded. On the other hand, the other team is already conducting raids at all the possible hideouts of Kalyan Besla. Remains to be seen that how many hours more is it going to take for the police to finally arrest Kalyan Besla. Over to you.
0: Well, it's already been 50 hours and Sia's family is seeking more serious charges, including attempt to murder. As far as Kalyan Besla is concerned, Ishika, as you were mentioning, police are raiding possible hideouts. So far, 50 hours on, while he's also spoken to the media, have police recovered anything or found evidence that tells them where he went after the crash?
1: But Parmeshwar, we at NDTV have tried to approach the Gurugram police for more such, information as to what is their detailed strategy, where does, the investigation currently stand. But so far, we are yet to get any response from the Gurugram police over that matter. What the information they have given to us is certainly that, the five teams have been formed. They are already investigating this particular case. CCTV of the entire area where this incident happened, particularly the golf course road, all of that is being scanned so that the, you know, sequence of events can be established. Apart from that, certainly there are all the possible hideouts that they have narrowed down. All of that of Kalyan Bensla is being currently raided. On the other hand, we have already seen how the police is saying that they are going to record the statements of CR in this particular case, and only that then, you know, the investigation can proceed. So these are the list of the investigation so far that they have given to us. We are still awaiting the fresh update from the Gurugram police. Meanwhile, the big question continues to remain, Parmeshwar. As we are seeing here, it has been over 50 hours. The vehicle registration number is already with the police. The eyewitnesses account is already there. And in fact, the teams are already on the ground. Then what is taking the police so much of time to arrest Kalyan Bensla? And exactly, you know, how many hours do the police need more to in fact arrest Kalyan Bensla? And this is not the question that we are asking. This is also the question that Sia is now asking the Gurugram police. Over to you.
0: We will of course continue to track all the finer developments and what the Gurugram police is up to with you, Ishika. Thanks so much for taking us through the latest. All right, there is video footage. There's the vehicle's registration number. The police have identified the accused as Kalyan Bensla. There are eyewitnesses who were riding with Sia. There's the allegation that the driver chased her, later drove away after the collision because he feared being attacked by a mob. 5 teams have been deployed by the Gurugram police. 50 hours have passed since this incident, and Kalyan Bensla, that man, has still not been traced. What really is causing this delay? We'll continue to track all the finer developments, slipping into a quick break. Back in a moment with the latest updates for you.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर, जेके टायर।

0: मेरा प्रश्न ये है आपके लिए, उन्होंने गाड़ी रोका क्यों नहीं? नहीं नहीं, आप सुनिए मेरी बात, उन्होंने सिया को गाड़ी में क्यों नहीं लिया और हॉस्पिटल क्यों नहीं गए उनके साथ?
1: एक्चुअली ये मैम, इसको मॉब लिंचिंग का डर था, इसको ये डर था कि ये 28-30 जने मुझको मारना दे, मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए ये
0: तो आप सिया की कहानी हमें बोल रही है। दिस साउंड्स मोर लाइक योर सिया'स काउंसिल देन द काउंसिल ऑफ कल्याण बैसला सर, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शी वेंट थ्रू नवीन जी।
1: मैम स्टोरी एक्चुअली क्या होता है मैम, संख्या में ये ज्यादा, राइडर ये ज्यादा, स्पीड इनकी ज्यादा, 160 तक 180 तक स्पीड चला रहे हैं इनकी, मैंने और भी वीडियो देखे।
0: एक औरत, चार लोग हैं गाड़ी में, फोर व्हीलर में, और आप बोल रहे हैं कि आपके क्लाइंट विक्टिम है।
1: मेरे क्लाइंट विक्टिम है, रियल में ही विक्टिम है मेरे।
0: मुझे समझाइए कैसे, इज द वीडियो फुटेज लाइंग? नवीन जी, इज द वीडियो फुटेज लाइंग?
1: कौन परमिशन देता है इन राइडरों को, कौन परमिशन देता है कि आप एक रोड को घेर के चलोगे, आप एक रोड को स्टंट के लिए यूज करोगे, एक रोड को स्पीड के लिए यूज करोगे, आप किस किस की जान के खतरे को अपने मोल ले रहे हो? मैंने बात की।
0: सो मिस्टर नवीन, व्हाट यू आर सेइंग इज सीआई इज लाइंग, द पुलिस इज लाइंग, द सुओ मोटो केस फाइल बाय द पुलिस इज अ शैम, इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू टेल अस?
1: पुलिस का नहीं, मैं पुलिस के ऊपर कुछ नहीं कह रहा, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस इसमें फेयर इंक्वायरी करेगी और पुलिस इसमें जो भी करेगी अब उसको सामने उसका फेस करेंगे, कोई इशू नहीं है हमें।
0: Mr. Naveen, it's unfortunate that you say this, but before you go, I want to understand if you could explain the video footage we are seeing on our screens, the dash cam footage. You explain it to us, sir.
1: मैंने वो वीडियो चार बार देखी जो सिया की तरफ से है, मैंने उसमें वीडियो में साफ दिख रहा है ये लड़की बहुत हाई स्पीड में, वो लड़का पीछे से आया, उसको एक यू टर्न दिखा, यू टर्न से वो बचने के लिए उसने लेफ्ट टर्न लिया, उस की वजह से ये नेगलिजेंस पार्ट पे ये एक्सीडेंट हुआ है।
0: तो फिर वो कॉन्वर्सेशन क्या था, जो वार्तालाप हुआ था व्हाइल दे वर इन द कार, जब गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने सिया से क्या बोला था?
1: वो इसे प्रोवोक कर रहे थे, वो इसे बार बार हरास कर रहे थे, बार बार आगे पीछे निकालने के लिए इसको एक कहते मैनिपुलेट कर रहे थे कि ये हमसे कुछ उल्टा बोले। इसने कुछ नहीं बोला, इसने बल्कि ये बोला कि आप अच्छी बाइक चलाते हो, आप सेफ हो, आप आराम से चलाओ।
0: और फिर उन्होंने ठोक दिया सिया को उसके बाद और भाग गए वहाँ से।
1: इन्होंने नहीं ठोका मैम, इन्होंने
0: सर किसने ठोका? वीडियो फुटेज तो है वहाँ पे
1: मैम, देख ली मैम, आप प्रॉपर देखो ना, वो
0: मैं प्रॉपर ही देख रही हूँ नवीन जी,
1: मैं भी देख रहा हूँ मैम, मैंने चार बार देखी मैम वीडियो, वो प्रॉपर उसने अपने आप को बचाने के लिए लेफ्ट लिया फुटपाथ से, एक गाड़ी और थी।
0: अच्छा, तो अपने आप को बचाने के लिए लेफ्ट लिया नवीन जी, तो उन्होंने गाड़ी रोका क्यों नहीं देख के कि सिया गिर गई है?
1: इसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए इसलिए इसने नहीं रोका, उसने बताया भाई ये 28-30 राइडर थे।
0: तो फिर अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज तो लगना चाहिए है ना?
1: नहीं, क्यों लगेगा मैम, क्यों अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज लगेगा?
0: क्योंकि आपने गाड़ी मारी है वहाँ से आप भाग गए हैं।
1: मैं तो ये कहूंगा कि कार्रवाई इन राइडरों पे होनी चाहिए सारी, इनकी गलती।
0: एग्जैक्टली, इन ड्राइवरों पे होनी चाहिए, आपके क्लाइंट पे होनी चाहिए।
1: बाइक राइडरों पे ये कोर्ट की और क्या नाम है, कोई भी पुलिस की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, ये अपनी मनमानी से स्टंट करते हैं, ये अपनी मनमानी से स्पीड चलाते हैं।
0: और फिर आपके क्लाइंट फिर व्हाई इज ही हाइडिंग, वो छुप क्यों गए उसके बाद?
1: वो एक्चुअली डर की वजह से छुपा पड़ा है कि ये एक छोटा सा मुद्दा इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया, बल्कि वो निर्दोष है।
0: Mr. Naveen, it's laughable really that you say this, but thank you for speaking to NDTV. Out here you have the man who has hit Sia and run away from the spot playing the victim card. And the survivor of this hit and run is the one who has come forward, identified herself, made it clear that she is the one who was the survivor of this hit and run and even furnished evidence to the police. The story is quite clear. Thank you for joining us on NDTV. Back to you, Divya.
2: Right, Vedika, very pertinent questions that you have asked and posed in front of the lawyer of the accuser. The lawyer is in fact saying that his client is the one who has been victimized in this case. And the video, of course, clearly shows the distance that she had maintained from him. He's the one who comes right next to her, literally tries to bump her off the road. Why? Because she was riding a bike, she was a woman. And, if they're claiming that there were many people, there were many of them in a group, why was she the one targeted being the woman? There's so many questions that are coming to mind at this particular point in time. Well, we're talking about Kalyan Baisla, the accused of driving that Maruti Sias that allegedly hit the biker, as we can see in that CCTV footage that was captured thanks to the dash cam. Here, describing himself online as an international kabaddi player and a member of the Indian rugby team. He also claimed to have won the Amateur Olympia India bodybuilding tournament. His Instagram is now deactivated, but before it disappeared, it offered a glimpse into the image that he projected online, one dominated by bodybuilding, by fitness.

0: All right, let's revert to the Gurugram crash that we are tracking. A woman riding a motorcycle on Gurugram's golf course road was injured.
1: Please come in. Please. And as we saw in my video, that the car was chasing me. I usually bike ride karti hu Sunday ko, and main golf course road se ja rahi thi. Maine us time pe notice nahi kara ki ye gaadi us road pe chal rahi hai, mere aage piche chal rahi hai. Pehli cheez jo usne kari ki main bike chala rahi hu, and wo bahut fast mere side se nikalta hai. Then I was like ki main aise ho jati hu ki bhai ye gaadi itne paas se kyun nikli hai mere. Fir maine ignore kara ki chalo chhodo. Then उसके बाद वो गाड़ी धीरे होके फिर वो पीछे जाती है. Then उसके बाद जो second incident होता है, जो मेरी वीडियो में शो हो रहा है कि वो मेरे साइड में आके कुछ एक्शन करता है, फिर उसके बाद वो बोलता है कुछ कि मैं ये वो और ऐसे रुकने के लिए, उस तब मैं डर जाती हूँ. सी उनके फेस से साफ झलक रहा था कि उन लोगों ने पी रखी है. उसके साइड में एक और लड़का था, वो भी कुछ एक्शन कर रहा था, और आई थिंक वो पीछे भी दो लड़के थे, पर गाड़ी के काले शीशे थे तो मुझे एग्जैक्टली नहीं दिख रहा था कि पीछे कौन लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं. और वो एक्शन करते हुए मेरे एकदम पास में आ रहे थे. एंड सी मैं टू व्हीलर पे हूँ, एंड गाड़ी कोई भी टक्कर मारेगी तो नुकसान मेरा है, उन लोगों का नहीं है. तो मेरा वही दूसरा एक्शन था कि भाई आप थोड़ा साइड चलाओ, आप पास मत आओ, ठीक है, कि आपकी गाड़ी भी तेज़ चल रही है. और फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि उसकी गाड़ी शायद से मेरी बाइक के पास आ रही है या आगे आ रही है, तो थोड़ा सा मैं तेज़ चली कि मुझे डर लग रहा था कि भाई वो कुछ कर ना दे. एंड जो एक फेलो राइडर था जो पीछे चल रहा था, ही ट्राइड कि वो मेरे पास आए, कवर करे, और उसमें वीडियो में भी दिख रहा है कि वो मेरे पास चल रहा है, उसकी जस्ट साइड में गाड़ी चल रही है. एंड

0: इसी हफड़ा तफड़ी में कि वो लड़का उसको आगे नहीं आने दे रहा, एंड जब एक गाड़ी बीच में आई, मेरी बाइक स्लो हुई एंड वो फर्स्ट लेन से, जो मेरे फ्रंट कैमरा व्यू से आया है कि वो फ्रंट लेन से आके कट मार के सीधा थर्ड लेन में आके मुझे टक्कर मार के जाता है, एंड इट वाज लिटरली वेरी शॉकिंग कि मैं एकदम अपने थर्ड लेन में आराम से चल रही हूँ क्योंकि गाड़ी आ गई है एंड मैं स्लो हुई हूँ, एंड वो टक्कर मार के जाता है, मैं गिरती हूँ, मुझे कोई होश नहीं रहता कि क्या हुआ है मेरे साथ, एंड जैसे मेरे एक फेलो राइडर ने उसको रोकने की कोशिश करी कि भाई रुक जाओ, आप रुक जाओ, आपकी गलती है, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, उस लड़की की गलती है, एंड वो रुकता नहीं है, वो रेड लाइट भी तोड़ के उसको लेफ्ट का रास्ता मिलता है एंड वो भाग जाता है।
1: राइडर थे आप, कितने बजे कहां से निकली थी और कहां तक आपकी,
2: और गाड़ी में कौन कौन मौजूद था, क्या केवल मर्द थे या औरतें भी थी उस गाड़ी में?
0: उसमें सारे लड़के ही थे, कोई औरत नहीं थी जितना मैंने देखा, और मैंने जो राइड थी कि मैं अपने घर से निकल के गुड़गांव में एक बाइकर वन कैफ़े है जो मेजरली बाइकर्स के लिए काफ़ी फेमस है, मैं वहीं जा रही थी। मेरा कोई एज सच ग्रुप नहीं है जिसके साथ मैं चलती हूँ, मैं कभी अपने ब्रदर के साथ भी राइड करती हूँ, सी मेरे पास जो बाइक है वो और भी लोगों के पास है, तो बाइकर कम्युनिटी में सब एक दूसरे को जानते हैं किसके पास क्या बाइक।

0: Of the police is yes present, and as we exclusively spoke to her, she also in fact mentioned that according to her there were other men also present in the car apart from the main accused. Now who all were they, what kind of activities in fact were going on in the car, that is all a matter of investigation as of now. But the Delhi police team is here at the Gurgaon police team, I beg your pardon, is here at the residence to register a statement, to take a statement from the victims. Yeah, so now needs to be seen that what all kind of statements are being taken from her, and not just that, but we'll be definitely reporting on this entire issue. Because we have been seeing that how, he is still unapologetic. And in fact, when you also did speak to the lawyer as well, his lawyer in fact stated that I am his very good friend. He is like my brother. And he was continuously defending Sia rather than his friend, and rather than accepting mistake, rather than accepting the fact that, yes, he was completely wrong. He in fact kept on stating that there is no mistake of his friend Kalyan, and then he was on run. And the bigger question over here is that if they believe that there was no mistake, then why was he on run? Why he did not completely surrender in front of police? And of course, it is also a questionable, Vedika, that on the streets in Gurgaon, which is said to be one of the most elite city in not just in fact Delhi NCR, but also in fact if we talk about entire India as well, it is a tech hub, it is an IT hub as well. And if this can happen in daytime, What about the roads at night as well? So this is a bigger question that everybody needs to ask to the administration and to the police as well, because we have been seeing not for the first time such incident has come to light, but earlier as well, such kind of incidents have been reported. We just saw here as well at the residence of Sia, where she also did speak to media as well. But right now, since she's recording a statement, she is giving a statement to the police. She will be in fact here in some time from now, and that is why we are just relentlessly reporting on this matter. And now what we are given to understand is that the accused was detained, and now officially, since he has been arrested, he is being brought to Gurgaon. Thereafter, he will be taken for the medical, and then he will be produced in the court where the Gurgaon police will be taking him in the custody for further interrogation. And now we are still awaiting for the team of Gurgaon police to take an exit from here. So
1: and it's quite pathetic to see what the counsel of Kalyan Besla had to say. We'll bring that to you in a moment from now, but this is a big NDTV impact. Kalyan Besla has been detained from Rajasthan after more than 52 hours of him being on the run. Besla had allegedly fled the scene immediately after the road rage crash involving biker Sia, triggering a major police hunt across multiple locations. Remember, the police had started a suo motu case in this incident. The Gurugram police has also added an attempted murder charge to the case as fresh evidence, which could have Besla behind bars for 10 years. And Sia's allegations have intensified the investigation as well. Police have formed 5 teams who were trying to track him down and were also scanning CCTV footage from Golf Course Road and beyond. And all of that has now culminated into his detention. Like our reporters are pointing out, there will be a medical examination. He will be presented in court. Meanwhile, Sia has broken her silence. She spoke exclusively to NDTV, alleging that Besla was drunk. He deliberately hit her and fled without stopping. She says she was terrified and shaking after the incident, but is grateful that the entire episode was captured on camera. This interview, exclusively to NDTV, is the first time she has detailed the entire incident out. This was done before Besla was detained. Listen in. I have Sia on the phone line with me. Sia, thank you so much for speaking with us. Please feel free to speak in English or Hindi while I speak to you. Firstly, I want to start by thanking you for standing up for justice in this case. I want to understand from you how you are at this moment. You've been through an extremely traumatic phase. Sia.
2: Obviously, the incident mere saath hua, and I was literally traumatized ki mere saath kya incident hua. And pure din mein, I didn't post anything about that incident because I was in a shock ki ek gaadi mujhe hit karke and wo bhaag jaati hai. एंड जो पूरा इंसिडेंट मैंने अपनी वीडियो में शो करा है कि कैसे वो गाड़ी जिसमें ये सारे लड़के थे वो चेस कर रहे थे एंड दे वर ट्राइंग टू हरास मी एंड कि वो कोशिश कर रहे थे कि लड़की बाइकर है तो उसको कुछ बोलते हैं एंड वो पूरे टाइम मुझे गोल्फ कोर्स रोड पे चेस करते रहे एंड एट द एंड उन लोगों ने मुझे टक्कर मार के गाड़ी से मुझे गिरा दिया एंड ऑब्वियसली वो फिर वो वहाँ से भाग भी गए वो सारे लड़के.
1: सिया, इट्स बीन ओवर 50 आवर्स. You had even put out the number plate of this car. Are you frustrated today that you have been fighting for justice? You were the one who came out on social media with the video, thanks to the dash cam that you had. You are the one who shared the number of the car. You are the one who's provided all the details. And today's day 3 since the incident. And the police, despite having 5 teams on the ground, have not been able to nab the man.
2: Obviously, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है. मेरे पास मेरी बाइक पे मेरा कैमरा था एंड थैंक गॉड वो इंसिडेंट रिकॉर्ड हो गया. अगर वो कैमरा नहीं होता मेरे पास तो मैं अपना इंसिडेंट को कैसे जस्टिफाई करती. एंड सेकंड, जब मैंने वीडियो मैंने पोस्ट करा उसमें मैंने खुद गाड़ी का नंबर और जो भी उनकी डिटेल्स थी किसके पास मतलब नाम पे ये गाड़ी है वो मैंने खुद पोस्ट करा एंड मैंने वीडियो रात में पोस्ट करी एंड गुरुग्राम पुलिस का आई थिंक सो दोपहर में आफ्टरनून में मुझे मैसेज आया जब ये वीडियो हर एक न्यूज़ चैनल पे चल चुकी थी एंड व्हेन एवरीवन वाज आस्किंग कि पुलिस ने क्या एक्शन लिया. तो पुलिस का ध्यान बहुत देर में गया उस इंसिडेंट पे जो संडे सुबह हो चुका था ऑलरेडी एंड उसके बाद सारी डिटेल्स होने के बावजूद भी वो लड़का अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है एंड वो इतना फ्रीली दूसरे चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा है, अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मेरे से छोटी गलती हो गई. उसको इतना सब चीज़ों के लिए कैसे टाइम मिल रहा है? मतलब पुलिस क्यों नहीं उसको पकड़ पा रही है, क्यों नहीं उसको अरेस्ट कर पा रही है? जो क्लियरली हिट एंड रन का केस है, वो क्लियरली अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है एंड वो आज फ्रीली सड़कों पे अपने घरों में मतलब आराम से बैठे हुए हैं, कोई डर नहीं है उनको. तो पुलिस क्या कर रही है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा. एंड ऑब्वियसली वो गुस्सा है, वो फ्रस्ट्रेशन है मुझ में कि आज भी इंडिया में लोग किसी को मार के चले जाते हैं एंड जो विक्टिम होता है दे आर सफरिंग, विक्टिम की फैमिली सफर कर रही होती है एंड वो आराम से घूम रहे हैं.
1: You know, see, I again want to commend you because you've come out, you've revealed your identity at a time when the accused and the other men have not been caught till now. You say you're frustrated. What was your reaction when you heard the lawyer of Kalyan Besla also speak to NDTV, where he says that his client is the victim? Do you think this is very convenient? Because given that they were the ones to hit you, Kalyan Besla was driving the car. He hit your bike and then he ran away from the spot. For a moment, just suspension of disbelief in this case where we say that Besla is the victim, just for a moment, I'm playing the devil's advocate. Why didn't he stop to help you then? Isn't that the biggest question at this point?
2: See, lawyer ka kaam jitna hota hai ki aapko justice dilana aur jo aapke saath galat hua hai us pe stand lena. Mujhe samajh nahi aata ki unka lawyer publicly wo kaise wo statement de sakte hain ki unse choti si galti ho gayi. Ye koi choti si galti nahi hai. अगर उन्होंने मुझे हिट करा है मेरे साथ कुछ भी हो सकता था. मैंने तो अपने राइडिंग गेयर पहन रखे थे इसलिए मैं बच गई. अगर वो 2 सेकंड मेरे पीछे होते, 1-2 सेकंड का फर्क होता, मेरी हड्डियां टूट सकती थी, मेरे को मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी.
1: I think you've got a second life, Sia. It's nothing short of that.
2: This is my second life and मैं आपको बता नहीं सकती. मैं सबसे पहले घर आके मैं अपने भगवान जी के सामने मैंने हाथ जोड़े हैं कि लिटरली मैं बहुत ज़्यादा बच गई हूँ. मैं हमेशा अपनी राइडिंग बैग में आई ऑलवेज कैरी रुद्राक्ष मेरी सेफ्टी के लिए. एंड मुझे समझ नहीं आता वो कैसे जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि मेरा क्लाइंट की कोई गलती नहीं है. पूरा देश देख रहा है वो वीडियो की उनकी गलती है. फर्स्ट लेन से थर्ड लेन में आके किसी को हिट करके जाना ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है. एंड आज भी वो एक जो क्रिमिनल है वो आज खुला घूम रहा है, मतलब उन्हें शर्म आनी चाहिए. कल को उनकी बेटी के साथ भी हो सकता है ये इंसिडेंट सड़क पे.
1: सी, आई वांट टू अंडरस्टैंड, डू यू फील अनसेफ एज ऑफ नाउ टिल द मैन इज अरेस्टेड एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ जस्टिस?
2: मैम, ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है एंड इससे पहले भी कितने ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब मैं बाइक राइड करती हूँ. मतलब मुझे समझ नहीं आता लोगों के दिमाग, लोगों की क्या मेंटालिटी है ये,
3: बिल्कुल, बिल्कुल.
2: कि किसी फीमेल बाइकर को देख के वो उसको चेस करने लगते हैं. मतलब मैंने खुद मल्टीपल टाइम्स कितनी ये चीजें फेस करी है, एंड ये इंसिडेंट दिन दिहाड़े हुआ है, सुबह हुआ है. और मुझे सुबह, मतलब मेरे आसपास मेरे फेलो राइडर्स होने के बावजूद भी मुझे उस दिन इतना अनसेफ फील हुआ. मतलब कल को मैं अगर अपनी बाइक लेके भी निकलूं अकेले तो मैं 10 बार सोचूंगी कि मुझे निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए.
3: एंड दैट वाज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सिया, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू राइड एनी टाइम इन द नियर फ्यूचर गिवन व्हाट यू हैव बीन थ्रू?
2: नहीं, बिल्कुल भी नहीं. जिस तरीके से हमारा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है हमारी दिल्ली में, गुड़गांव में, तो मुझे नहीं लगता कि मैं फ्रीली ऐसे अपनी बाइक लेके निकल पाऊंगी, क्योंकि मुझे इतना अनसेफ फील होता है कि कोई भी आपको चेस करेगा, कोई भी आपको मार के चला जाएगा. एंड डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता है, डिपार्टमेंट सिर्फ अभी भी बैठा हुआ है. संडे सुबह का इंसिडेंट था, अभी भी वो करण बैसला अभी भी वो घूम रहा है, उसका अरेस्ट नहीं हुआ है.
3: I just stay with me for a moment, Sia, because I want to just underscore what you've just said for the viewers who are tuning in. This is a woman who was the victim of road rage of a man and some men with him in a car who hit her and left her on the road. She has come out on social media. She has detailed what happened with her. Extremely traumatic situation, extremely traumatic incident. She has revealed her identity. She has revealed the number of the car. My question, Sia, is what else is expected of you? If the law cannot stand up and nab the man 50 hours after you have provided every possible detail, his name is known to the system, his photograph is out there, we've spoken to the lawyer who claims he is the victim, every possible detail is there. Your dash cam footage speaks to the story being true. Despite that, you have the man on the loose, Sia.
2: तभी तो आज कोई भी एक क्राइम करके इंसान भाग जाता है इंडिया में, क्योंकि डिपार्टमेंट का किसी का डर ही नहीं है किसी में. अगर आज हम कोई एग्जांपल सेट नहीं करेंगे किसी के लिए, तो कल को सेम इंसिडेंट होगा, सेम लोगों को मोटिवेशन मिलेगी कि हम किसी को चेस करें, मार के चले जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट तो कुछ करता नहीं है, लॉ कुछ करेगा नहीं. आज हर एक व्यक्ति के पास सारी डिटेल है उस पर्सन की. मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी सिर्फ पुलिस के पास है, हर एक इंसान के पास डिटेल है, उसका गाड़ी नंबर, उसका नाम, उसका फोटोज, इवन उसका एड्रेस तक हर किसी के पास है. पर आप देखो कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा. तो ऑब्वियसली ये एक एग्जाम्पल हमारा डिपार्टमेंट ही सेट कर रहा है कि भाई आप मार के जाओ, आप क्राइम करो और आप फ्रीली घूमो, आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. जब वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मैं कल इवनिंग में अपने लॉयर के साथ जाने वाली थी, बट जो गुरुग्राम पुलिस का जो एक्शन था इस चीज पे, वो बहुत लेट हुआ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो संडे वो इंसिडेंट हो चुका है. एंड मैं यही डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक गलत एग्जाम्पल सेट मत करो दूसरे लोगों के लिए. और भी लोग हैं जो सड़क पे चलते हैं और बाइकर्स, एंड ये सिर्फ बाइकर्स को ही लेके नहीं है, कोई भी ले मैन के साथ ये चीज हो सकती है. मेरे पास आज प्रूफ था अपने इंसिडेंट का. अगर किसी के पास प्रूफ नहीं है, उसको तो फिर जस्टिस मिल ही नहीं सकता इस देश में. एंड मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि हम कोई गलत एग्जाम्पल सेट ना करें, हम अपने लोगों के लिए, एंड स्पेशली फॉर द फीमेल राइडर्स जिनको रोज इस हरासमेंट से गुजरना पड़ता है.
3: एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट फॉर अ मोमेंट, सिया. लेट्स टॉक अबाउट फीमेल बाइक राइडर्स. यू हैव बीन रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम देम. दिस इज अ स्मॉल कम्युनिटी बट अ स्ट्रॉन्ग वन. टेल अस अबाउट द हरासमेंट दैट वुमेन गो थ्रू ऑन द रोड्स व्हेन दे आर सीन राइडिंग बाइक्स.
2: सी, अगर आप एक फीमेल राइडर हो, एंड मुझे ऐसा लगता है हर एक फीमेल राइडर ने हमेशा अपनी लाइफ में ये चीज़ ज़रूर फेस करी होगी, क्योंकि वो जब ये देखते हैं कि वो फीमेल राइडर है, वो उसके पास आएंगे, उसको शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे, उसको हरास करने की कोशिश करेंगे. लोग तो बोलते हैं कि हम प्रेज करते हैं. सॉरी, वो प्रेज नहीं होता, वो अप्रिसिएशन नहीं होता. आप फीमेल राइडर से पूछो उनको कितना डर लगता है जब अगर कोई आसपास आके आपके साइड से गाड़ी लेके जाता है, या कोई बाइक लगा देगा आपके आगे, या मतलब लोग कितना फीमेल राइडर को सड़क पे चेस करने की कोशिश करते हैं. तो ऑब्वियसली फीमेल राइडर्स के लिए बहुत अनसेफ है ये रोड्स. एंड अगर हम अभी भी यही एग्जांपल सेट करेंगे कि हम उनको नहीं पकड़ रहे हैं, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये हमारे डिपार्टमेंट की गलती है कि

0: इन फ्यूचर भी ये सेम इंसिडेंट गुड़गांव दिल्ली के रोड पे होते रहेंगे।
1: सिया, 2-3 मोर क्वेश्चंस एंड थैंक यू अगेन फॉर स्पीकिंग टू अस एंड डिटेलिंग एवरीथिंग आउट। आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू व्हाट योर मैसेज टू मिस्टर बेस्ला विल बी टुडे थ्रू आवर चैनल, गिवन दैट ही इज हाइडिंग, ही इज द मैन हु शुड बी कॉट अरेस्टेड बट ही इज हाइडिंग समवेयर एज अ कावर्ड। व्हाट इज योर मैसेज टू द मैन?
0: जी, मेरा मैसेज यही है कि आप कितने भी अपने इंटरव्यूज दे ले, आपका लॉयर कितनी भी आपकी गलती छुपाने की कोशिश करे, आप कितना भी विक्टिम और सिंपथी कैरेक्टर प्ले कर लो, पर आज पूरे देश ने देखा है कि आपने किस तरीके से अपनी गाड़ी से मुझे ठोका है और आप मुझे मार के वहाँ से भागे हो। ये नहीं कि आप वहाँ से निकल गए हो, आप एक किसी गुंडे की तरह मेरे को ठोक के भागे हो। और आप ये मत सोचना कि आप अपना ये सिंपथी कार्ड प्ले करके आप बच जाओगे। ऑब्वियसली मैं हूँ, मेरे पीछे पूरी बाइकिंग कम्युनिटी है, मेरे पीछे हर एक इंसान का सपोर्ट है और हम आपको सामने ला के खड़ा करेंगे और मैं वो एग्जांपल सेट करूंगी कि कोई भी किसी फीमेल राइडर को देखेगा, चेस करने की कोशिश करेगा तो वो 10 बार सोचेगा।
1: सिया, आई एम सो इंस्पायर्ड सिया बाय लिसनिंग टू यू टुडे, बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग इज यू हैव सर्वाइव्ड अ क्लोज शेव ऑफ कोर्स, बट यू आर नॉट गिविंग अप, यू डोंट फील डिफीटेड डिस्पाइट द सिस्टम फॉर नाउ लेटिंग यू डाउन। देयर आर सीसीटीवी कैमराज अलोंग ऑल द रोड्स देयर होपफुली इन गुरुग्राम, इट शुडंट टेक सो लॉन्ग टू ट्रैक द मैन, एंड व्हाट यू हैव सेड राइट एट द एंड रियली होल्ड्स ट्रू। It's an inspiration to every woman out there that you will not give up. You will set an example for the system to understand, you know, the lag that we're seeing, for women to understand that they are not alone. Before I let you go, my last question to you is this. Do you feel alone in this fight as of now?
0: No, I don't feel alone. Mere paas har ek person ka support hai and I'm glad कि वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी बेस्ट विशेस भेज रहे हैं। ऑल द बाइकिंग, द मेंबर्स ऑफ बाइकिंग कम्युनिटी एंड एवरीवन, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं एंड उन्हीं से मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मुझे इस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए।
1: यू नो सिया, बिफोर यू गो, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट NDTV, and I don't want to say this for brownie points, but I'm saying this for a reason. NDTV was the first channel to take up the story yesterday early morning, and we will see it through with you.
0: I know NDTV was the first one jinhone mujhe mere Insta pe message kara tha, and they want to connect with me. And
1: yes. No, along with that, we were the first one to take the story forward. We made sure it was on the website, it was on television, because we want to see justice in this case. I'm from Gurugram. I know what it feels like to be on those roads out there, Sia, through the evenings especially. So more power to you, and thank you so much for speaking with NDTV, Sia. We are very inspired by you. Thank you.
0: Thank you.
1: NDTV also spoke to Kalyan Besla's lawyer, who in fact blamed Sia for the hit and run, claiming that Kalyan was the victim. I have the advocate, Mr. Naveen Besla, on the phone line with me. He's representing Kalyan Besla. Naveen ji, aapse puchna hai, your client has been detained. Is this a detention or an arrest? Can you confirm to us?
2: पूरा किसी अपने नॉन से पता लगाया कि उसको दौसा से अरेस्ट कर लिया है, बाकी अभी क्लियर कुछ नहीं है। बाकी मैं गुड़गांव कोर्ट जाके, गुड़गांव थाना जाके अभी क्लियर करता हूँ कि वो अरेस्ट हुआ या डिटेन हुआ, जो भी है वो बताता हूँ आपको।
1: नवीन जी, देयर इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज आल्सो अगेंस्ट योर क्लाइंट, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट?
2: हमारे क्लाइंट की इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। एक्चुअली ये राइडर्स बहुत तेज स्पीड चला रहे थे बाइकों को, उनकी गलती से ये एक्सीडेंट हुआ है, हमारे क्लाइंट की कोई गलती नहीं है।
1: आपके क्लाइंट ने रोका क्यों नहीं गाड़ी फिर उनको हेल्प करने के लिए?
2: मैम, 25 से 30 लड़के थे, आपस में राइडर थे,
1: कोई तो दिख नहीं रहा था वीडियो में। नवीन जी,
2: मैम, वीडियो तो लड़के इनके पास है ना, राइडरों के पास है, प्रॉपर वीडियो क्यों नहीं दे रहे? सारी
1: प्रॉपर वीडियो, चार चार वीडियोस है सर।
2: मैम, ये एडिटिंग वीडियो है, ये प्लांटेड वीडियो है, ये उन्होंने अपने हिसाब से अपने तरह तैयार करके रख दी।
1: नवीन जी, यू नो द लॉ बेटर देन आई डू। होपफुली देयर इज समथिंग कॉल्ड बीइंग अ गुड समैरिटन। इफ योर क्लाइंट इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड व्हिच इज सरप्राइजिंग एट दिस पॉइंट गिवन द एविडेंस माउंटिंग अगेंस्ट हिम, मेरा प्रश्न ये है आपके लिए, उन्होंने गाड़ी रोका क्यों नहीं? नहीं नहीं, आप सुनिए मेरी बात, उन्होंने सिया को गाड़ी में क्यों नहीं लिया और

0: हॉस्पिटल क्यों नहीं गए उनके साथ?
1: एक्चुअली ये मैम, इसको मोबिलाइजिंग का डर था, इसको ये डर था कि ये 28-30 जने मुझको मारना दे, मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए ये
0: वहां तो आप सिया की कहानी हमें बोल रही है। दिस साउंड्स मोर लाइक योर सिया'स काउंसिल देन द काउंसिल ऑफ कल्याण बैसला सर। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शी वेंट थ्रू नवीन जी।
1: मैम स्टोरी एक्चुअली क्या होता है मैम, संख्या में ये ज्यादा, राइडर ये ज्यादा, स्पीड इनकी ज्यादा, 160 तक 180 तक स्पीड चला रहे हैं इनकी, मैंने और भी वीडियो देखे।
0: एक औरत, चार लोग हैं गाड़ी में, फोर व्हीलर में, और आप बोल रहे हैं कि आपके क्लाइंट विक्टिम है।
1: मेरे क्लाइंट विक्टिम है, रियल में विक्टिम है मेरे।
0: मुझे समझाइए कैसे है, इज द वीडियो फुटेज लाइंग? नवीन जी, इज द वीडियो फुटेज लाइंग?
1: कौन परमिशन देता है इन राइडरों को, कौन परमिशन देता है कि आप एक रोड को घेर के चलोगे, आप एक रोड को स्टंट के लिए यूज करोगे, एक रोड को स्पीड के लिए यूज करोगे, आप किस किस की जान के खतरे को अपने मोल ले रहे हो? बनवात की
0: सो मिस्टर नवीन, व्हाट यू आर सेइंग इज सीआई इज लाइंग, द पुलिस इज लाइंग, द सुओ मोटो केस फाइल बाय द पुलिस इज अ शैम, इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल अस?
1: पुलिस का नहीं, मैं पुलिस के ऊपर कुछ नहीं कह रहा, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस इसमें फेयर इंक्वायरी करेगी और पुलिस इसमें जो भी करेगी अब उसको सामने उसका फेस करेंगे, कोई इशू नहीं है हमें।
0: मिस्टर नवीन, इट्स अनफॉर्चुनेट दैट यू से दिस, बट बिफोर यू गो आई वांट टू अंडरस्टैंड इफ यू कुड एक्सप्लेन द वीडियो फुटेज वी आर सीइंग ऑन आवर स्क्रीन्स, द डैश कैम फुटेज, यू एक्सप्लेन इट टू अस सर।
1: मैंने वो वीडियो चार बार देखी जो सिया की तरफ से है, मैंने उसमें वीडियो में साफ दिख रहा है ये लड़की बहुत हाई स्पीड में, वो लड़का पीछे से आया, उसको एक यू टर्न दिखा, यू टर्न से वो बचने के लिए उसने लेफ्ट टर्न लिया, उसकी वजह से ये नेग्लिजेंस पार्ट पे ये एक्सीडेंट हुआ है।
0: तो फिर वो कॉन्वर्सेशन क्या था, जो वार्तालाप हुआ था व्हाइल दे वर इन द कार, वो जब गाड़ी चला रहे थे उन्होंने सिया से क्या बोला था?
1: वो इसे प्रोवोक कर रहे थे, वो इसे बार बार हरास कर रहे थे, बार बार आगे पीछे निकालने के लिए इसको एक कहते मैनिपुलेट कर रहे थे कि ये हमसे कुछ उल्टा बोले। इसने कुछ नहीं बोला, इसने बल्कि ये बोला कि आप अच्छी बाइक चलाते हो, आप सेफ हो, आप आराम से चलाओ।
0: और फिर उन्होंने ठोक दिया सिया को उसके बाद और भाग गए वहाँ से।
1: इन्होंने नहीं ठोका मैम, इन्होंने
0: सर किसने ठोका? वीडियो फुटेज तो है वहाँ पे
1: मैम, देख ली मैम, आप प्रॉपर देखो ना, वो
0: मैं प्रॉपर ही देख रही हूँ नवीन जी,
1: मैं भी देख रहा हूँ मैम, मैंने चार बार देखी मैम वीडियो, वो प्रॉपर उसने अपने आप को बचाने के लिए लेफ्ट लिया फुटपाथ से, एक गाड़ी और थी।
0: अच्छा, तो अपने आप को बचाने के लिए लेफ्ट लिया नवीन जी, तो उन्होंने गाड़ी रोका क्यों नहीं देख के कि सिया गिर गई है?
1: इसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए इसलिए इसने नहीं रोका, उसने बताया भाई ये 28-30 राइडर थे।
0: तो फिर अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज तो लगना चाहिए है ना?
1: नहीं, क्यों लगेगा मैम, क्यों अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज तो लगेगा?
0: क्योंकि आपने गाड़ी मारी है वहाँ से आप भाग गए हैं।
1: मैं तो ये कहूँगा कि कार्रवाई इन राइडरों पे होनी चाहिए सारी, इनकी गलती।
0: एग्जैक्टली इन ड्राइवरों पे होनी चाहिए, आपके क्लाइंट पे होनी चाहिए।
1: बाइक राइडरों पे ये कोर्ट की और क्या नाम है कोई भी पुलिस की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, ये अपनी मनमानी से स्टंट करते हैं, ये अपने मनमानी से स्पीड चलाते हैं।
0: और फिर आपके क्लाइंट फिर व्हाई इज ही हाइडिंग, वो छुप क्यों गए उसके बाद?
1: वो एक्चुअली डर की वजह से छुपा पड़ा है कि ये एक छोटा सा मुद्दा इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया, बल्कि वो निर्दोष है।
0: Mr. Naveen, it's laughable really that you say this, but thank you for speaking to NDTV. Out here you have the man who has hit Sia and run away from the spot playing the victim card. And the survivor of this hit and run is the one who has come forward, identified herself, made it clear that she is the one who was the survivor of this hit and run and even furnished evidence to the police. The story is quite clear. Thank you for joining us on NDTV. I want to bring in Mr. Arvind Kumar Jain, former DG UP and also a former IPS officer. Mr. Jain, you've just heard that entire interview. The fear here has been for Sia that the police did not act in time despite all the evidence being furnished by her personally 2 days back, more than 2 days back.
2: It's a clear case of a hit and run in my opinion, although I have not seen the video. But once police makes an inquiry, they will come to know what are the facts. And as far as I could make out, the fault is of the boys who were traveling in a car at a high speed. And they should have got down. They should have taken her to a hospital, even if they were at fault. And they should not have run away. Very, very deterrent case should be made out against such people. Because if Gurgaon police wants to check such kind of incidents on roads, highways in Gurgaon, in the Gurgaon limits, then drastic action should be taken against such against such boys who are chasing and who are unnecessarily harassing the lady riders.
0: Mr. Jain, before I let you go, very quickly, doesn't this lead to a trust deficit?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: हेलो एंड वेलकम टू एप्पल पार्क। आई एम सो थ्रिल्ड टू बी हियर टुडे। एवरीडे पीपल अराउंड द वर्ल्ड रिलाई ऑन आवर प्रोडक्ट।
2: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
3: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
4: All right, let's revert to the Gurugram crash that we are tracking. A woman riding a motorcycle on Gurugram's golf course road was injured.
5: Please come in. Please.
6: जैसे कल हम मेरी वीडियो में जो मैंने डाला उसमें देखा

0: उसके बाद वो गाड़ी धीरे होके फिर वो पीछे जाती है, देन उसके बाद जो सेकंड इंसिडेंट होता है जो मेरी वीडियो में शो हो रहा है कि वो मेरे साइड में आके कुछ एक्शन करता है, फिर उसके बाद वो बोलता है कुछ कि मैं ये वो और ऐसे रुकने के लिए, उस तब मैं डर जाती हूँ। सी उनके फेस से साफ झलक रहा था कि उन लोगों ने पी रखी है। उसके साइड में एक और लड़का था, वो भी कुछ एक्शन कर रहा था, और आई थिंक वो पीछे भी दो लड़के थे, पर गाड़ी के काले शीशे थे तो मुझे एग्जैक्टली नहीं दिख रहा था कि पीछे कौन लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं। और वो एक्शन करते हुए मेरे एकदम पास में आ रहे थे, एंड सी मैं टू व्हीलर पे हूँ, एंड गाड़ी कोई भी टक्कर मारेगी तो नुकसान मेरा है, उन लोगों का नहीं है। तो मेरा वही दूसरा एक्शन था कि भाई आप थोड़ा साइड चलाओ, आप पास मत आओ, ठीक है, कि आपकी गाड़ी भी तेज चल रही है। और फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि उसकी गाड़ी शायद से मेरी बाइक के पास आ रही है या आगे आ रही है, तो थोड़ा सा मैं तेज़ चली कि मुझे डर लग रहा था कि भाई वो कुछ कर ना दे। एंड जो एक फेलो राइडर था जो पीछे चल रहा था, ही ट्राइड कि वो मेरे पास आए, कवर करे, और उसमें वीडियो में भी दिख रहा है कि वो मेरे पास चल रहा है, उसकी जस्ट साइड में गाड़ी चल रही है। एंड इसी हफड़ा तफड़ी में कि वो लड़का उसको आगे नहीं आने दे रहा, एंड जब एक गाड़ी बीच में आई, मेरी बाइक स्लो हुई, एंड वो फर्स्ट लेन से जो मेरे फ्रंट कैमरा व्यू से आया है कि वो फ्रंट लेन से आके कट मार के सीधा थर्ड लेन में आके मुझे टक्कर मार के जाता है। एंड इट वाज लिटरली वेरी शॉकिंग कि मैं एकदम अपने थर्ड लेन में आराम से चल रही हूँ क्योंकि गाड़ी आ गई है, एंड मैं स्लो हुई हूँ, एंड वो टक्कर मार के जाता है, मैं गिरती हूँ, मुझे
1: Watching Breaking Ground on Vedika Sood. The quick check on the headlines at this hour on a day where there's been an NDTV impact with the man who hit Sia's bike being arrested a short while back. Accused driver Kalyan Besla arrested from Rajasthan more than 50 hours after the hit and run incident. Police add attempt to murder charge against him. Biker Sia speaks exclusively to NDTV, recounts the hit and run horror, calls it an attempt to murder, says she will fight to the end, thanks NDTV for standing by her.
2: NDTV was the first one jinhone mujhe mere insta pe message kara tha, and they want to connect with me.
1: Two DMK leaders booked by Tamil Nadu police. Sekhar Babu booked for remarks against Chief Minister Vijay. MP A. Raja booked for anti-CTR remarks. DMK lashes out at the Vijay government. Actor Vijay Sethupathi's remarks in Big Boss stokes row. Sethupathi spoke about a leader, saying leadership doesn't mean attacking rivals. Vijay fans target Sethupathi. DMK slams Vijay supporters. Meta agrees to report child abuse cases. Meta to alert law enforcement agencies. Center makes child safety non-negotiable. Government tightens online child safety rules. Amid artificial intelligence slowdown call, Google DeepMind AGI researcher resigns, warns the AI could kill us all, says humanity may be running out of time.

0: In a big NDTV impact, Kalyan Besla has been arrested after more than 50 hours of him being on the run and hiding from the law. Besla had allegedly fled the scene immediately after the road rage crash over the weekend involving biker Sia, triggering a major police hunt across multiple locations. The Gurugram police has also added an attempted murder charge to the case as fresh evidence in Sia's allegations have intensified this investigation. This offence carries a provision for imprisonment of up to 10 years. Police had formed 5 teams to track him down and were also scanning CCTV footage on Golf Course Road in Gurugram and beyond. Meanwhile, Sia has spoken exclusively to NDTV. In her first detailed interaction and conversation, she spoke about the incident. She alleged that Besla was drunk and he deliberately hit her and fled without stopping. She says she was terrified and shaking after the incident, but is grateful that the entire episode was captured on her dash cam. And that's what really has helped in tightening the noose around Kalyan Besla at this point, who I believe is being brought by the Gurugram police back to the National Capital Region from Rajasthan. He was arrested from Dausa, is what we've got to know. But a word also commending Sia at this point. While speaking to her in that exclusive interaction, Sia did say that she will not give up on the fight and will set an example. She's standing up for all the women bikers in her community. She also spoke about the lag when it comes to arresting or taking action against Besla. She said that on Sunday itself, she had shared the number plate of the car. She had provided details of the 4 men inside that car. She had also spoken out after to provide those details to the police as well as share them on social media. But it's taken 52 hours, she said, and beyond. And this was, of course, this interview was done before Besla was arrested, where she did talk about the delay and how disappointed she is with the system. She spoke about how there needs to be justice in such cases and there needs to be quick police action. Listen in. I want to start by thanking you for standing up for justice in this case. I want to understand from you how you are at this moment. You've been through an extremely traumatic phase. Sia.
1: Obviously, जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ एंड आई वॉज लिटरली ट्रॉमाटाइज कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ एंड पूरे दिन में आई डिडंट पोस्ट एनीथिंग अबाउट दैट इंसिडेंट बिकॉज आई वॉज इन अ शॉक कि एक गाड़ी मुझे हिट करके एंड वो भाग जाती है एंड जो पूरा इंसिडेंट मैंने अपनी वीडियो में शो करा है कि कैसे वो गाड़ी जिसमें ये सारे लड़के थे वो चेस कर रहे थे एंड दे वर ट्राइंग टू हरास मी एंड वो इतना फ्रीली दूसरे चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा है, अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मेरे से छोटी गलती हो गई, उसको इतना सब चीजों के लिए कैसे टाइम मिल रहा है.
0: You know, see, I again want to commend you because you've come out, you've revealed your identity at a time when the accused and the other men have not been caught till now. You say you're frustrated. What was your reaction when you heard the lawyer of Kalyan Besla also speak to NDTV, where he says that his client is the victim? Do you think this is very convenient? Because given that they were the ones to hit you, Kalyan Besla was driving the car, he hit your bike and then he ran away from the spot. For a moment, just suspension of disbelief in this case where we say that Besla is the victim, just for a moment, I'm playing the devil's advocate. Why didn't he stop to help you then? Isn't that the biggest question at this point?
1: See, lawyer ka kaam jitna hota hai ki aapko justice dilana aur jo aapke saath galat hua hai us pe stand lena. Mujhe samajh nahi aata ki unka lawyer publicly wo kaise wo statement de sakte hain ki unse choti si galti ho gayi.
0: What are you expecting in terms of justice?
1: Ma'am, ye incident mere saath hua hai and isse pehle bhi kitne aise incident hue hain jab main bike ride karti hoon. मतलब मुझे समझ नहीं आता लोगों के दिमाग, लोगों की क्या मेंटालिटी है ये.
0: बिल्कुल, बिल्कुल.
1: कि किसी फीमेल बाइकर को देख के वो उसको चेस करने लगते हैं. मतलब मैंने खुद मल्टीपल टाइम्स कितनी ये चीजें फेस करी है एंड ये इंसिडेंट दिन दिहाड़े हुआ है, सुबह हुआ है और मुझे सुबह मतलब मेरे आसपास मेरे फेलो राइडर्स होने के बावजूद भी मुझे उस दिन इतना अनसेफ फील हुआ, मतलब कल को मैं अगर अपनी बाइक लेके भी निकलूं अकेले तो मैं 10 बार सोचूंगी कि मुझे निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए।
0: फॉर अ मोमेंट सिया, लेट्स टॉक अबाउट फीमेल बाइक राइडर्स। यू हैव बीन रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम देम, दिस इज अ स्मॉल कम्युनिटी बट अ स्ट्रॉन्ग वन। टेल अस अबाउट द हरासमेंट दैट वुमेन गो थ्रू ऑन द रोड्स व्हेन दे सीन राइडिंग बाइक्स।
1: सी, अगर आप एक फीमेल राइडर हो एंड मुझे ऐसा लगता है हर एक फीमेल राइडर ने हमेशा अपनी लाइफ में ये चीज़ ज़रूर फेस करी होगी, क्योंकि वो जब ये देखते हैं कि वो फीमेल राइडर है, वो उसके पास आएंगे, उसको शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे, उसको हरास करने की कोशिश करेंगे। लोग तो बोलते हैं कि हम प्रेज करते हैं, सॉरी वो प्रेज नहीं होता, वो अप्रिसिएशन नहीं होता। आप फीमेल राइडर से पूछो उनको कितना डर लगता है जब अगर कोई आसपास आके आपके साइड से गाड़ी लेके जाता है या कोई बाइक लगा देगा आपके आगे। जी, मेरा मैसेज यही है कि आप कितने भी अपने इंटरव्यूज दे ले, आपका लॉयर कितनी भी आपकी गलती छुपाने की कोशिश करे, आप कितना भी विक्टिम और सिंपथी कैरेक्टर प्ले कर लो, पर आज पूरे देश ने देखा है कि आपने किस तरीके से अपनी गाड़ी से मुझे ठूका है और आप मुझे मार के वहाँ से भागे हो। ये नहीं कि आप वहाँ से निकल गए हो, आप एक किसी गुंडे की तरह मेरे को ठोक के भागे हो। और आप ये मत सोचना कि आप अपना ये सिंपति कार्ड प्ले करके आप बच जाओगे।
0: यू नो सिया, बिफोर यू गो, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट NDTV, एंड आई डोंट वांट टू से दिस फॉर ब्राउनी पॉइंट्स, बट आई एम सेइंग दिस फॉर अ रीजन, NDTV वाज द फर्स्ट चैनल टू टेक अप द स्टोरी यस्टरडे अर्ली मॉर्निंग एंड वी विल सी थ्रू विद यू।
1: आई नो NDTV वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज करा था and they want to connect with me and
0: yes. No, along with that, we were the first one to take the story forward. We made sure it was on the website, it was on television, because we want to see justice in this case. I'm from Gurugram. I know what it feels like to be on those roads out there, Sia, through the evenings especially. So more power to you, and thank you so much for speaking with NDTV, Sia. We are very inspired by you. Thank you. NDTV also spoke to Kalyan Besla's lawyer, who blamed Sia for the hit and run, claiming that Kalyan was provoked by her and that Kalyan was the victim. I have the advocate, Mr. Naveen Besla, on the phone line with me. He's representing Kalyan Besla. Naveen ji, aapse poochna hai, your client has been detained. Is this a detention or an arrest? Can you confirm to us?
2: पूरा किसी अपने नॉन से पता लगाया कि उसको 2 साल से अरेस्ट कर लिया है। बाकी अभी क्लियर कुछ नहीं है, बाकी मैं गुड़गांव कोर्ट जाके और गुड़गांव थाना जाके अभी क्लियर करता हूँ कि वो अरेस्ट हुआ या डिटेन हुआ, जो भी है वो बताता हूँ आपको।
0: नवीन जी, देयर इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज आल्सो अगेंस्ट योर क्लाइंट, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट?
2: हमारे क्लाइंट की इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। एक्चुअली ये राइडर्स बहुत तेज स्पीड चला रहे थे बाइकों को, उनकी गलती से ये एक्सीडेंट हुआ है, हमारे क्लाइंट की कोई गलती नहीं है।
0: आपके क्लाइंट ने रोका क्यों नहीं गाड़ी फिर उनको हेल्प करने के लिए?
2: मैम, 25-30 लड़के थे, आपस में राइडर थे,
0: कोई तो दिख नहीं रहा था वीडियो में। नवीन जी,
2: मैम वीडियो तो इनके पास है ना, राइडरों के पास है, ये प्रॉपर वीडियो क्यों नहीं दे रहे सारी?
0: प्रॉपर वीडियो, चार चार वीडियोस है सर।
2: मैम, ये एडिटिंग वीडियो है, ये प्लांटेड वीडियो है, ये उन्होंने अपने हिसाब से अपने तरह तैयार करके रख दी।
0: नवीन जी, यू नो द लॉ बेटर देन आई डू, होपफुली देयर इज समथिंग कॉल्ड बीइंग अ गुड समैरिटन। इफ योर क्लाइंट इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, व्हिच इज सरप्राइजिंग एट दिस पॉइंट गिवन द एविडेंस माउंटिंग अगेंस्ट हिम, मेरा प्रश्न ये है आपके लिए, उन्होंने गाड़ी रोका क्यों नहीं? नहीं नहीं, आप सुनिए मेरी बात, उन्होंने सिया को गाड़ी में क्यों नहीं लिया और हॉस्पिटल क्यों नहीं गए उनके साथ?
2: एक्चुअली ये मैम, इसको मॉब लिंचिंग का डर था, इसको ये डर था कि ये 28-30 जने मुझको मारना दे, मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए ये
0: वहां। ये तो आप सिया की कहानी हमें बोल रही है, दिस साउंड्स मोर लाइक योर सिया'स काउंसिल देन द काउंसिल ऑफ कल्याण बेसला सर, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शी वेंट थ्रू। नवीन जी,
2: मैम स्टोरी एक्चुअली क्या होता है मैम, संख्या में ये ज्यादा राइडर, ये ज्यादा स्पीड इनकी ज्यादा, 160 तक 180 तक स्पीड चला रहे हैं इनकी, मैंने और भी वीडियो देखे।
0: एक औरत, चार लोग हैं गाड़ी में, फोर व्हीलर में, और आप बोल रहे हैं कि आपके क्लाइंट विक्टिम है?
2: मेरे क्लाइंट विक्टिम है, रियल में ही विक्टिम है मेरे।
3: मुझे समझाइए कैसे, इज द वीडियो फुटेज लाइव? नवीन जी, इज द वीडियो फुटेज लाइव?
2: कौन परमिशन देता है इन राइडरों को, कौन परमिशन देता है कि आप एक रोड को घेर के चलोगे, आप एक रोड को स्टंट के लिए यूज करोगे, एक रोड को स्पीड के लिए यूज करोगे, आप किस किस की जान के खतरे को अपने मोल ले रहे हो? बनवा की
3: सो मिस्टर नवीन, व्हाट यू आर सेइंग इज सीआई इज लाइंग, द पुलिस इज लाइंग, द सुओ मोटो केस फाइल्ड बाय द पुलिस इज अ शैम, इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल अस?
2: पुलिस का नहीं, मैं पुलिस के ऊपर कुछ नहीं कह रहा, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस इसमें फेयर इंक्वायरी करेगी और पुलिस इसमें जो भी करेगी हम उसको सामने उसका फेस करेंगे, कोई इशू नहीं है हमें।
3: मिस्टर नवीन, इट्स अनफॉर्चुनेट।
0: Alright, we're cutting out of that because we have Sia speaking to NDTV once again. Listen in to this exclusive conversation.
4: संडे को गुड़गांव में एक एक्सीडेंट होता है, एक बाइक राइडर लड़की जो है उसका एक्सीडेंट होता है और खुद सिया जो है इस वक्त एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बात कर रही हैं। पुलिस को बयान दर्ज कराने के बाद ये पहला इंटरव्यू जो है वो सिया एनडीटीवी को दे रही हैं। सिया, मुझे पता है कि बहुत बड़ा इंसिडेंट आपके साथ एक्सीडेंट हुआ, आप पूरा एक बार बता सकती है कि क्या आपको लग रहा है कि इंटेंशनली आपको हिट करने की कोशिश की गई?
5: मैं आपको पूरा इंसिडेंट बताती हूँ। सुबह के लगभग, सुबह के टाइम पे संडे को मैं बाइकर्स बन जा रही थी अपने कुछ दोस्तों के साथ और ये जो गाड़ी वाले हैं तो वो साइड में आते हैं, वो इशारे करते हैं, रुकने के लिए बोलते हैं, धीरे धीरे अपनी गाड़ी मेरी बाइक के पास लाते हैं। मैं इशारा करती हूँ आप दूर कर दीजिए अपनी बाइक को, मुझे डर लगता है कि कहीं ठोक ना दे, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, पर वो मतलब मुझे पूरी तरीके से मेरा पीछा कर रहे थे, चेस करने की कोशिश कर रहे थे और जब मैं आगे जाके जब थोड़ा स्लो होती हूँ तो वो इंटेंशनली कि मैंने बाइक नहीं रोकी या उनका ईगो हर्ट हो गया, इंटेंशनली आके मुझे मारने की कोशिश करके, मतलब पूरी कोशिश से मुझे मतलब ठोकर मारते हैं और मैं गिर जाती हूँ और वो वहाँ से भाग जाते हैं, वो रुकते भी नहीं हैं। तो ये क्लियरली मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उन पे होना चाहिए एंड मतलब किसी को मतलब जान से मारने की कोशिश करना वो पूरा वीडियो में आ रहा है।
4: आपको लग रहा है कि आपको जान से मारने की कोशिश जो है वो उस दौरान की गई थी?
5: यस, मुझे मतलब मैंने भी अपना वीडियो देखा कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है कि कोई गलती हो, पर वो इंटेंशनली फर्स्ट लेन से थर्ड लेन पे आके अपनी गाड़ी को कट करके मुझे मारने की कोशिश करता है।
4: लेकिन यह जो आरोपी है वो लगातार एक ही चीज़ बोल रहा है कि मुझे नहीं पता था कि लड़की जो है बाइक पे ट्रैवल कर रही है, मैं तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए इशारे कर रहा था। आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी है क्योंकि हम लगातार उसका बयान जो है वो सुन रहे हैं?
5: नहीं, ये देखिए, ये पूरी तरीके से झूठी बात है, जैसा वीडियो चल रहा है और वीडियो में लोग देख भी रहे हैं कि कैसे वो पूरी तरीके से मेरा पीछा कर रहे थे। देखो, किसी से बीच में किसी को छेड़ के फिर कंटिन्यूसली पीछा करना और पूरी वीडियो में दिख रहा है कि वो कितना करीब, थोड़ी सी दूरी पे वो मेरे ही क्लोज चल रहा था, तो मुझे नहीं लगता ये कोई गलती वाली चीज़ है। देखो, कोई लड़की राइडर जा रही है, सब पहचान लेते हैं, पीछे बाल होते हैं, उनकी चोटी बनी होती है जैसे मेरी थी और आए, मैंने नहीं रोकी, ज़बरदस्ती आके मुझे मारने की कोशिश करी गई।
4: लेकिन अभी फ़िलहाल जानकारी मिली है कि आरोपी जो है वो राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार भी हो गया है, लेकिन 50 घंटे लग गए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए। आपको लगता है कि दिल्ली गुड़गांव पुलिस ने जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए था उस तरह से एक्शन नहीं लिया, कुछ देरी हुई, कुछ कमी हुई?
5: देखिए, मेरे को अभी ऐसे आज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि वो अरेस्ट हो गया है,
4: हमारे पास ही जानकारी है कि वो गिरफ्तार हो गए,
5: पर फिर भी हुआ है कि वो, देखो बहुत लेट है कि हम जब एक्शन लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये ऐसे मतलब सेंसिटिव केस होते हैं जिसपे मतलब स्ट्रिक्टली और तुरंत एक्शन लेना चाहिए, 50 घंटे बहुत देर होते हैं, बट मैंने अपना बयान दे दिया है पुलिस को और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। आई होप कि जो जस्टिस हम लोग मांग रहे हैं फीमेल राइडर्स के लिए, सभी के लिए, वो हमें मिले।
4: एक अंतिम सवाल ये भी पूछूंगी क्योंकि अमूमन जब इस तरह के वाक्य होते हैं तो फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं और बीइंग अ वूमेन मैं इस बात को समझ भी सकती हूँ। आपको लग रहा है परिवार के लिए, आपके लिए थोड़ा ये जो हुआ इंसिडेंट वो कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब है, आपको उसका इम्पैक्ट है मेंटली तौर पे, आप थोड़ा सा घबराई हुई हैं क्या?
5: हाँ, मतलब जब वो इंसिडेंट हुआ वो पूरा दिन, पूरी रात, आज भी वो चीज़ कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में चलती है। मेरे परिवार वालों को बहुत दुख हुआ कि उस इंसिडेंट में मेरी मौत भी हो सकती थी, वो तो मैंने सारे गियर्स पहन रखे थे तो इसलिए मैं बच गई, और मतलब भगवान का शुक्र है कि ज़्यादा मुझे नहीं लगी, नहीं तो ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी। देखिए, हर एक इंसान के लिए मेंटली डिस्टर्बिंग है ये चीज़, और मतलब मुझे अब थोड़ा सा अनसेफ फील रहेगा हमेशा।
4: ऐसे आगे से कई वाक्य जो है हरासमेंट के हमने कई बार देखे हैं। आप क्योंकि महिला बहुत ब्रेव हैं, आप निकल के आई, आपने प्रवक्ता से अपनी बात को उठाया। ऐसी कई महिलाएं हैं जो इस तरह के मामलों को दर्ज भी नहीं करवा पाती, बोल भी नहीं पाती। उन तमाम महिलाओं के लिए, उन तमाम जो ब्रेव वूमेन हैं जो इस चीज़ के पीछे शायद छुप जाती हैं, डर जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश होगा आपका?
5: देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसी घटना होती है या रोड पे होती है या कहीं भी किसी जगह होती है, तो आपको उस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। आपके साथ गलत हुआ है, आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि शायद से आपके जैसा कोई और दूसरा भी हो सकता है, उसको बचाने के लिए आपको आगे खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा।
4: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सिया ने एक्सक्लूसिव जो है NDTV से बात की है अपना बयान दर्ज करवाने के बाद। कनिका कटियार, NDTV दिल्ली।
0: Sia there speaking with NDTV in that exclusive conversation, once again underlining the delay in nabbing Kalyan Besla, the man who should have been caught much earlier. Akhil joins me live from Palwal in Haryana. Akhil, we know that Besla has been arrested. There will be, of course, a medical examination. He will be brought before the court. Just take us through the process. Important to even underscore here that an attempt to murder clause has now been added to that FIR. What could this mean for the man in terms of an offence? Is this bailable, not bailable? Just take us through what you can share with us at this point.
6: Well, Vedika, if you see after a marathon run for the Gurugram police, what we have seen that after more than 52 hours, the Gurugram police was able to apprehend this very individual from Rajasthan's Dausa, and now right now they are bringing that very individual to Gurugram. I would like to request my Vijay to just move and show you the visual of this very road. Right now we are just driving in the overtaking lane, and next to it is the normal driving lane, and next to it is the heavy vehicle lane. Right, so there are three different lanes, and I would like to request my Vijay to just zoom in and show that if you want to move from the overtaking lane towards the side of the heavy vehicle lane, it's very difficult, and within a short span of time, within just fraction of seconds, what we have seen that this very individual, Mr. Besla, what he did, basically he moved from overtaking lane towards the heavy vehicle lane, and after that what we have seen that in that very video, the entire moment was captured. So right now the group Gurugram police is investigating it from all the angles, and there are several unanswered questions that are basically going to be examined by the Gurugram police with that very individual. Because if you see, initially what we have seen that the CI has said that that very individual was following her. So who basically followed whom when that the entire episode basically started, and how long basically the vehicles have been followed by that very individual, and when the argument basically broke out, were there any repeated kind of argument that has taken place, and who basically initiated that threatening messages? Because what we have seen that if you just go by the CCTV footage, what we have seen that there are several unanswered questions that is going to be asked by the Gurugram police during the interrogation of Mr. Besla. So in the next 2 hours we are expecting that Mr. Besla is going to be taken from Dausa, because it's approximately 210 kilometer away from Gurugram. So it will take another 2 to 3 hours to bring Mr. Besla from Dausa to Gurugram.
0: All right, Kalyan Besla is on his way back to Gurugram is the latest. It could take a couple of hours, after which there will be a medical examination, and he will also be presented before the court. NDTV will keep you updated on the latest. There is some news coming in. The Vande Mataram debate has now reached the Karnataka High Court. A public interest litigation, a PIL, has been filed challenging the Karnataka government's recent order that mandates only the first two stanzas of Vande Mataram be sung at state government functions. The petition has been moved by advocate and activist Girish Bharadwaj, who argues that the state cannot alter the prescribed form of a national symbol or a national song here through an executive order. My colleague Deepak joins us live. Deepak, the face-off continues and now intensifies, reaching the Karnataka High Court.
7: Well, yes, we'll really have to see how the High Court really looks into this matter, because first it was the Karnataka Pradesh Congress under the leadership of Mr. B.K. Hari Prasad who said that, you know, as far as the Congress events are concerned, there will be only two stanzas that will be sung. And then came the Karnataka government order, which officially stated that for all state government events, except where the president, vice president or the governor or the prime minister is attending the, you know, Vande Mataram, only two stanzas will be sung in the government events in the state of Karnataka. This has, of course, now been officially challenged through a public interest litigation. Activist and advocate Girish Bharadwaj challenging this, saying that the purview of really making these sort of alterations falls strictly with the center, not with the state. How the High Court really views this and, you know, whether there will be any sort of setback to the state government here, that is something that remains to be seen. For now, it has been moved. The matter, of course, needs to be heard out in court.
0: Deepak, do stay with me. There is more news coming in from Karnataka. The controversy over the screening of a documentary on Umar Khalid in the state of Karnataka has now taken a political turn, with the Congress coming out strongly in his defense. Karnataka Congress Chief B.K. Hari Prasad has described Khalid as a nationalist and hit out at the ABVP over its opposition to the documentary. Hari Prasad said the ABVP had no moral right to comment on Khalid, alleging that the organization admires Nathuram Godse, whom he described as an anti-national and India's first terrorist. Deepak, back with us. Deepak, of course, Hari Prasad's remarks are likely to further intensify the political row surrounding the documentary screening in the state. I'm going to come back to you in a moment from now. Before that, let's just listen in to his statement.
8: ABVP has no right to speak on Umar Khalid because ABVP adores Nathuram Godse is anti-national, first terrorist of the country. They have no moral right or moral ethics to speak on Umar Khalid.
0: Deepak, not the first time that you've heard Hari Prasad back or support Khalid.
7: You know, we've seen in the last couple of days when this controversy break out, multiple Congress leaders come out and say, there is nothing wrong if they have to screen a movie about Umar Khalid, because at the end of the day, you know, he's not convicted. And, you know, until the courts, of course, find him guilty, he's innocent until proven, is something that they have been continuously maintaining. Now you have the KPCC chief here in Karnataka saying that the ABVP who adore Godse shouldn't be the one who should be talking about Umar Khalid. As far as the controversy surrounding the documentary itself is concerned, as of now, you know, the National Law School has deferred the screening of this documentary. So as of now, they've not cited exact reasons. They've said the safety and security, and they've not given a date when it will be aired as well. The ABVP, of course, continues to make its pressure felt, saying that they will not be allowing for the screening to be held. We'll really have to see whether the National Law School will again come back with a plan to air this documentary and how things escalate then.
0: All right, thanks for joining me live there, Deepak, on Breaking Ground. We're going to stay with stories from the South for now. Two DMK leaders have been booked by the Tamil Nadu police as the political war with Chief Minister Vijay's government intensifies. Sekar Babu has been booked over alleged objectionable remarks against the Chief Minister Vijay, including his comment mocking Vijay as CM who ran away. DMK MP A Raja has been booked under 7 sections over alleged defamatory remarks against Minister CTR Nirmal Kumar. Raja had questioned the minister's comments on MK Stalin's arrest and made personal remarks about his parentage. The cases come amid escalating political attacks, with the DMK hitting back at the Vijay government. The party defended its right to criticize the ruling party, accused the government of targeting the opposition, and slammed it over law and order.
9: ஐந்து ஆண்டுகள் ஒன்றிய அரசை எதிர்த்து சண்டை செய்த ஒரு மாவீரன் எங்கள் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் என்றால் அது மிகையாகாது. அன்று ஆளுநரை ஓடவிட்டார், இன்று ஓடு ஓடு என்று மேடையிலே ஓடி ஓடி காட்டிக் கொண்டிருந்த முதலமைச்சர் விஜயை அவரின் அருந்தவ புதல்வன் எங்கள் ஆருயிர் அண்ணன் வருங்கால தமிழகம் உதயநிதி அவர்கள் ஓடவிட்டார்.
10: ராகுல் காந்தி இருக்காரு, பிரியங்கா காந்தி அவையில் இருக்கு, பிஜேபி தலைவர்கள் உட்கார்ந்துருக்காங்க, அடிபட்ட ராஜ்நாத் சிங் உட்கார்ந்துருக்காரு. இவங்களுக்கெல்லாம் எமர்ஜென்சி தெரியாதான், மிசா பத்தி தெரியாதான். இப்ப ஒருத்த இவர் அதற்காக போகவில்லை, இதற்காக போகவில்லை. எனக்கு சந்தேகம் இருக்கு, நீ யாருக்கு பிறந்த when you are doubting the integrity of my leader, who is having lot of records, it is widely accepted by all leaders in India. Am I not entitled to say I am doubting your paternity? Fine again. Nonsense. இந்த தருவலை கூட்டத்துக்கு ஒரு முதலமைச்சர் ஒரு தலைவர் தாரை எப்படிங்கிறது கைகால் ஆடுறதுக்கு நீ வந்த கைகால் ஆடுறது இப்ப இறந்த முதல் கொடுத்தா அப்புறம் எங்க வந்து நீ
11: There are two things. One is people are watching. I really don't have to respond to what he said because you have played the whole thing what he said. Who is unruly? Who is a mob? Who talks like this? People are watching it. And that's the only answer. I think I don't have to be the judge for this. People are clearly saying, seeing what he has said. For those people who are not, who do not understand Tamil, he said, the several national leaders, including BJP and Congress, they have not questioned about Mysore. There's a lot of record. And these people who are unlettered people in TVK are questioning this. Now I'm questioning their birth is what I think, and you need to confirm this to your audience. I think that's what I understand H. Raja has said.
12: This government is to file cases against DMK, not against any criminal. 10 people were killed. 10 people were killed in the prison. Many crimes are happening. They will not take any action against the criminals. They will choose only DMK people and file petitions.
13: But don't you think those are all defamatory remarks targeted?
12: It is not defamatory. Then if somebody is affected, they should go to court, not the government. This government is doing things only not for the people of Tamil Nadu. They are doing only against the DMK. The government is there only to oppose DMK, not for the people of Tamil Nadu.
0: Actor Vijay Sethupathi's remarks on leadership inside the Big Boss Tamil House have triggered a political buzz on social media. While speaking to contestant Shatika Sethupathi said that making promises without thinking, running away when problems arise and blaming the opposition cannot be called true leadership. Though he did not name the Chief Minister of Tamil Nadu or any political party, some viewers linked his remarks to the Chief Minister and the recent political developments in the state. The debate has now spilled onto social media, with fans arguing over whether the comments had any political undertone. Meanwhile, Big Boss Tamil has issued a clarification urging viewers not to interpret the remarks beyond the context of the show. On the other hand, the DMK has hit back at Vijay's fans, calling them quote-unquote barbarians.
14: That is what they do. See, they are all brutals. They are barbarians. Whoever supports Vijay are barbarians. They don't care for law and order. Even because the Chief Minister himself does not care for law and order. Why should we care is their mindset. They will do anything. And the police will support them. Police will kill people who would identify those people who had got who are selling drugs. But they will not take action against the drug peddlers. That is Vijay's police. It is because of Vijay. I think Vijay is getting something out of it.
0: Vijay's UK trip, including his high-profile Silverstone visit with Ajith, has drawn major attention. Vijay has shared glimpses of his visit to the United Kingdom, including his meeting with Ajith. The video has triggered a major social media buzz, while opposition parties have questioned his visit to the UK. Vijay's UK visit has produced major investment commitments, including a 1,000 crore rupee GCC deal, a Sigma technology agreement, and an 11,000 crore mother-son investment plan. Now, the DMK has sharply attacked Vijay over this visit, questioning the planning behind the trip and accusing him of travelling abroad to meet and flatter his co-actor Ajith. TVK has defended Vijay's visit, highlighting the investment push and suggesting that his camaraderie with Ajith could also create greater synergy between their fan bases.
15: We'll see coming days what he will do. Because I don't think so he is going to meet any investors or investment meeting. But he went for the, he inaugurated the car race. So the car race for the sports minister was there and the sports secretaries was there. So we see the Tamil Nadu government has to be clarified to the people of Tamil Nadu. Whether he went to the inaugurate only for the car race, or he is going to meet the investors. That clarify the Tamil Nadu government is not at given. So that's why we are all confused state.
16: MOUs can always be made. Any government will make MOUs, but where is the investment? Whether it will succeed or not depends huge on the government's capacity, government's vision. But this government has got no vision. The project which they are mentioning should have the basic infrastructure. But we have been saying that whether it is electronics or designing, engineering, everything, you need a big...
17: And joining me live now in her first television interview since that terrible incident where Sia was thrown off her bike. She joins me live today on NDTV. Sia, NDTV par aapka swagat hai. Sab kuch rehne dete hain. Pehle hum janna chahte hain, Sia, aap kaise hain? Aapka halat, aapka health kaisa hai abhi? Aapke injuries kaise hain? Wo janna chahte hain hum abhi. Pehle, bataiye.
18: मेरे पास उस टाइम पे मेरे राइडिंग शूज ग्लास थे, तो उससे मुझे बहुत बचाव हुआ है, पर स्टिल काफी जगह चोट आई है, नीज पे, एल्बोस पे, एंड फिजिकली से ज्यादा मैं मेंटली बहुत ज्यादा

0: उस दिन से लेकर अब तक बहुत लोगों ने आपसे पूछा है कि क्या हुआ, लेकिन एनडीटीवी पर लोग जानना चाहते हैं सिया से कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन, कैसे शुरू हुआ था, आप बाइक पर चल रहे थे, ये गाड़ी आ गई थी आपके सामने, क्या बातचीत हुई, डिटेल में बताइए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कैसे हुआ था ये।
1: तो जैसे मेरा वीडियो में था एज इट इज सेम हुआ था, कोई उसमें कोई भी ऐसे कुछ अलग नहीं हुआ। वो गाड़ी मेरे साइड में आई, वो मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसमें गाड़ी में 4 लोग थे और दिख रहा था उन लोगों ने दारू वारू पी रखी है कुछ, तो उस चीज से मैं और ज्यादा डर जाती हूँ। और वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी मेरे बाइक के पास लाते हैं, मैं उनको बोलती हूँ आप दूर हो जाइए। तो इसी रीजन से मैं थोड़ा अपना बाइक आगे बढ़ाती हूँ कि भाई वो मुझे हिट ना करे। पर जहाँ मेरी बाइक स्लो होती है, वो पीछे से इतनी तेज अपनी गाड़ी लेके आते हैं और इंटेंशनली मुझे हिट करते हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश करते हैं, और फिर वो वहां से मार के भी भाग जाते हैं।
0: जब जब वो कोलिजन हुआ था सिया, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोग ये कर सकते हैं? आपके पीछे था ये गाड़ी, आपने कुछ शब्द बोले थे, उन्होंने भी धमकी दिया आपको, उसके बाद क्या आपने एक्सपेक्ट किया कि ऐसे हो सकता है कि आपको आके डैश करेंगे ऐसे?
1: नहीं नहीं देखिए, जब हेलमेट होता है, हेलमेट में हम कुछ बोलते हैं तो आवाज वो सुनाई नहीं दे पाएगी उनको, पर मैं उनके एक्शन समझ रही थी तब भी मैंने अपने हाथ से एक्शन करा, और जिस तरीके से उनका बिहेवियर लग रहा था तो इसी वजह से मैं डर रही थी। एंड वही चीज हुआ कि जिस चीज का मुझे डर था, उन्होंने पीछे से आके मुझे ठोका और मुझे सड़क पे गिरा के वो भाग गए।
0: वो 1-2 सेकंड में वो आके आपको डैश किया सिया, वो पूरा वीडियो आपके मोटरसाइकिल की कैमरा पे बिल्कुल क्लियरली कैप्चर हुआ है। उस मोमेंट को डिस्क्राइब करिए, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड बाइकर हैं, आप लगातार बाइकिंग जर्नी पर हैं। जब वो कोलिजन हुआ था, जब उन्होंने आपको आके डैश किया, आपके मन में क्या हुआ, कैसे आपने महसूस किया?
1: बस जब उन्होंने मुझे मारा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया एंड मैं एकदम ब्लैंक हो गई। आई वाज शॉक्ड एंड ट्रॉमाटाइज्ड एंड उसके बाद मैं कुछ नहीं सोच पाई। अच्छा,
0: व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर दैट सिया जी, व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर दैट, आफ्टर यू फेल फ्रॉम द बाइक, गिरने के बाद इमीडिएटली क्या हुआ था?
1: बेसिकली उसके बाद कुछ नहीं, कुछ लोग आए, उन्होंने वो मुझे उठा के लेके गए एंड मेडिकल केयर मैंने थोड़ा करा, उसके बाद फिर मैं अपने घर वापस
0: आई। और ये कल्याण बैसला जो है सिया, 2 दिन के बाद डिटेन हुआ है, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? तो 2 दिन के बाद, 2 दिन
1: काफी लेट एक्शन हुआ है, एक्शन काफी जल्दी होना चाहिए था, डिटेल सबके पास थी, तो हाँ ये एक्शन काफी लेट हुआ है, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था।
0: सिया, आपने बताया कि आप मेंटली भी बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं, क्या इसके बारे में बताएंगे कि आप किस लिए ट्रॉमेटाइज्ड हैं, क्यों ट्रॉमेटाइज्ड हैं, ये जानना चाहेंगे हम।
1: देखो ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो सिर्फ मैं नहीं, कोई भी लेडी बाइकर, कोई भी महिला ट्रॉमेटाइज हो सकती है, या कोई भी मेल बाइकर, कोई भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये चीज बैक ऑफ द माइंड हमेशा मेरे चलेगी।
0: और ये क्या एक जेंडर इशू है मैडम, गाड़ी में जब लोग जा रहे हैं, वो अल्कोहल पी रखी है, जब वो देखते हैं कि एक लड़की बाइक चला रही है स्पीड से, ये एक जेंडर इशू भी है, मेल ईगो भी है इसमें?
1: ये मेल ईगो भी है एंड ये जेंडर इशू भी है, लोग लेडी बाइकर को देख के बहुत चेस करते हैं और उनको छेड़ने की भी कोशिश करते हैं। सो ये एक इंसिडेंट था जो मेरा वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, आई होप आप सबने भी देखा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर।
0: वन फाइनल क्वेश्चन सिया जी, आप लेडी बाइकर्स को क्या बोलेंगे, लास्ट क्वेश्चन, आप लेडी बाइकर्स को क्या बोलेंगे जो दिल्ली एनसीआर में चलाते हैं बाइक्स, आप उनको क्या बोलेंगे आप? ओके, आई थिंक वी हैव लॉस्ट दैट लिंक विद सिया, बट यू हैव हर्ड what she has said. She said it's going to take a while for her to get back on her bike and continue her biking journey. She's a passionate biker. She has injuries, and very important to hear what she said, that she's got physical injuries, she's not so worried about them. It is the trauma of what happened that is going to stay with her, and it may take some time for her to get back on her bike. That is the impact of what has happened.
2: Thank you, Shiv. That was an exclusive interview with Sia, a woman who should be commended for standing up and fighting for justice all by herself. Now

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
5: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
6: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
7: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
8: Launch control, 0 to 100.
9: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
10: This car makes no sense, yet it makes every sense.
11: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
12: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not."
13: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
7: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao. 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
14: All right, let's revert to the Gurugram crash that we are tracking. A woman riding a motorcycle on Gurugram's golf course road was injured.
15: Please come in. Take a minute. Please. और जैसे कल हम मेरी वीडियो में जो मैंने डाला उसमें देखा कि वो एक गाड़ी वाला जो मुझे चेस कर रहा था और मैं यूजुअली बाइक राइड करती हूँ संडे को एंड मैं गोल्फ कोर्स रोड से जा रही थी। मैंने उस टाइम पे नोटिस नहीं करा कि ये गाड़ी उस रोड पे चल रही है, मेरे आगे पीछे चल रही है। पहली चीज़ जो उसने करी कि मैं बाइक चला रही हूँ एंड वो बहुत फास्ट मेरे साइड से निकलता है। देन आई वाज लाइक कि मैं ऐसे हो जाती हूँ कि भाई ये गाड़ी इतने पास से क्यों निकली है मेरे। फिर मैंने इग्नोर करा कि चलो छोड़ो। देन उसके बाद वो गाड़ी धीरे होके फिर वो पीछे जाती है। देन उसके बाद जो सेकेंड इंसिडेंट होता है जो मेरी वीडियो में शो हो रहा है कि वो मेरे साइड में आके कुछ एक्शन करता है, फिर उसके बाद वो बोलता है कुछ कि मैं ये वो और ऐसे रुकने के लिए, उस तब मैं डर जाती हूँ। सी उनके फेस से साफ झलक रहा था कि उन लोगों ने पी रखी है। उसके साइड में एक और लड़का था, वो भी कुछ एक्शन कर रहा था और आई थिंक वो पीछे भी दो लड़के थे, पर गाड़ी के काले शीशे थे तो मुझे एग्जैक्टली नहीं दिख रहा था कि पीछे कौन लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं। और वो एक्शन करते हुए मेरे एकदम पास में आ रहे थे। एंड सी मैं टू व्हीलर पे हूँ एंड गाड़ी कोई भी टक्कर मारेगी तो नुकसान मेरा है, उन लोगों का नहीं है। तो मेरा वही दूसरा एक्शन था कि भाई आप थोड़ा साइड चलाओ, आप पास मत आओ, ठीक है, कि आपकी गाड़ी भी तेज़ चल रही है। और फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि उसकी गाड़ी शायद से मेरी बाइक के पास आ रही है या आगे आ रही है, तो थोड़ा सा मैं तेज़ चली कि मुझे डर लग रहा था कि भाई वो कुछ कर ना दे। एंड जो एक फेलो राइडर था जो पीछे चल रहा था, ही ट्राइड कि वो मेरे पास आए कवर करे, और उसमें वीडियो में भी दिख रहा है कि वो मेरे पास चल रहा है, उसकी जस्ट साइड में गाड़ी चल रही है। एंड इसी हफ

0: अफरातफरी में कि वो लड़का उसको आगे नहीं आने दे रहा। एंड जब एक गाड़ी बीच में आई, मेरी बाइक स्लो हुई एंड वो फर्स्ट लेन से जो मेरे फ्रंट कैमरा व्यू से आया है कि वो फ्रंट लेन से आके कट मार के सीधा थर्ड लेन में आके मुझे टक्कर मार के जाता है। एंड इट वाज लिटरली वेरी शॉकिंग कि मैं एकदम अपने थर्ड लेन में आराम से चल रही हूँ क्योंकि गाड़ी आ गई है एंड मैं स्लो हुई हूँ एंड वो टक्कर मार के जाता है। मैं गिरती हूँ, मुझे कोई होश नहीं रहता कि क्या हुआ है मेरे साथ। एंड जैसे मेरे एक फेलो राइडर ने उसको रोकने की कोशिश करी कि भाई रुक जाओ, आप रुक जाओ, आपकी गलती है। वो बोलता है नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, उस लड़की की गलती है। एंड वो रुकता नहीं है, वो रेड लाइट भी तोड़ के उसको लेफ्ट का रास्ता मिलता है एंड वो भाग जाता है।
1: राइडर थे आप, कितने बजे कहां से निकली थी और कहां तक आपकी,
2: और गाड़ी में कौन कौन मौजूद था? क्या केवल मर्द थे या औरतें भी थी उस गाड़ी में?
0: उसमें सारे लड़के ही थे, कोई औरत नहीं थी जितना मैंने देखा। और मैंने जो राइड थी कि मैं अपने घर से निकल के गुड़गांव में एक बाइकर वन कैफे है जो मेजरली बाइकर्स के लिए काफ़ी फेमस है, मैं वहीं जा रही थी। मेरा कोई आज सच ग्रुप नहीं है जिसके साथ मैं चलती हूँ, मैं कभी अपने ब्रदर के साथ भी राइड करती हूँ। सी, मेरे पास जो बाइक है वो और भी लोगों के पास है, तो बाइकर कम्युनिटी में सब एक दूसरे को जानते हैं किसके पास क्या बाइक है, तो वो लोग मुझे जानते हैं। हाँ, मेरी हेलो हाय होती है और उन्होंने देखा कि मैं आगे चल रही हूँ तभी मेरे।
3: Welcome back. In the remote reaches of Ladakh, there is a village where darkness is not something to escape. It is the biggest attraction. Hanle, India's first dark sky reserve, offers some of the clearest views of the cosmos. And now, stargazing is doing more than attracting tourists. It is creating livelihoods, especially for local women, who are becoming astro ambassadors and helping visitors explore the universe. My colleague Nasir Masoodi brings you the story from Ladakh.
4: An ocean of stars. A sky so clear it feels almost within reach. As dusk falls over Hanle, artificial lights fade and the cosmos take center stage. Hundreds of stargazers gather in the pitch darkness, looking through telescopes, searching for planets, distant galaxies, and celestial wonders. This is Hanle, India's first dark sky reserve. At an altitude of nearly 4,500 meters, this remote Ladakh village offers one of the clearest windows to the universe. But the people bringing the universe closer to visitors are not just astronomers, they are local women. Twenty-four astro ambassadors have been trained to guide visitors through the night sky. 18 of them are women. They operate telescopes, explain what visitors are seeing, and help turn a night under the stars into an experience of astronomy. For many, it is a completely new livelihood.
5: Well, this is most unusual and a unique story. We're at India's first dark sky reserve at 4,500 meters above sea level. We're here at Hanle and sky appears to be very, very close. And this is the place where large number of people are coming for stargazing. So stargazers are coming here in large numbers and they are actually watching the sky, Milky Way, so closely, which is not possible any part of the country. And importantly, stargazing has also become a source of livelihood for the people here, particularly the women who have been trained as astro ambassadors.
6: हम पहले अनएम्प्लॉय थी

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
4: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
5: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
7: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
8: Meetha. या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
9: All right, let's revert to the Gurugram crash that we are tracking. A woman riding a motorcycle on Gurugram's golf course road was injured.
10: Please come in.
11: जैसे कल हम मेरी वीडियो में जो मैंने डाला उसमें देखा कि वो एक गाड़ी वाला जो मुझे चेस कर रहा था, और मैं यूजुअली बाइक राइड करती हूँ संडे को, एंड मैं गोल्फ कोर्स रोड से जा रही थी। मैंने उस टाइम पे नोटिस नहीं करा कि ये गाड़ी उस रोड पे चल रही है, मेरे आगे पीछे चल रही है। पहली चीज़ जो उसने करी कि मैं बाइक चला रही हूँ एंड वो बहुत फास्ट मेरे साइड से निकलता है। देन आई वाज लाइक कि मैं ऐसे हो जाती हूँ कि भाई ये गाड़ी इतने पास से क्यों निकली है मेरे। फिर मैंने इग्नोर करा कि चलो छोड़ो। देन उसके बाद वो गाड़ी धीरे होके फिर वो पीछे जाती है। देन उसके बाद जो सेकेंड इंसिडेंट होता है, जो मेरी वीडियो में शो हो रहा है कि वो मेरे साइड में आके कुछ एक्शन करता है, फिर उसके बाद वो बोलता है कुछ कि मैं ये वो, और ऐसे रुकने के लिए तब मैं डर जाती हूँ। सी, उनके फेस से साफ झलक रहा था कि उन लोगों ने पी रखी है। उसके साइड में एक और लड़का था, वो भी कुछ एक्शन कर रहा था, और आई थिंक वो पीछे भी दो लड़के थे, पर गाड़ी के काले शीशे थे तो मुझे एग्जैक्टली नहीं दिख रहा था कि पीछे कौन लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं। और वो एक्शन करते हुए मेरे एकदम पास में आ रहे थे। एंड सी, मैं टू व्हीलर पे हूँ एंड गाड़ी कोई भी टक्कर मारेगी तो नुकसान मेरा है, उन लोगों का नहीं है। तो मेरा वही दूसरा एक्शन था कि भाई आप थोड़ा साइड चलाओ, आप पास मत आओ, ठीक है, कि आपकी गाड़ी भी तेज़ चल रही है। और फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि उसकी गाड़ी शायद से मेरी बाइक के पास आ रही है या आगे आ रही है, तो थोड़ा सा मैं तेज़ चली कि मुझे डर लग रहा था कि भाई वो कुछ कर ना दे। एंड जो एक फेलो राइडर था जो पीछे चल रहा था, ही ट्राइड कि वो मेरे पास आए, कवर करे, और उसमें वीडियो में भी दिख रहा है कि वो मेरे पास चल रहा है, उसकी जस्ट साइड में गाड़ी चल रही है। एंड इसी हफड़ा तफड़ी में कि वो लड़का उसको आगे नहीं आने दे रहा, एंड जब एक गाड़ी बीच में आई, मेरी बाइक स्लो हुई, एंड वो फर्स्ट लेन से जो मेरे फ्रंट कैमरा व्यू से आया है कि वो फ्रंट लेन से आके कट मार के सीधा थर्ड लेन में आके मुझे टक्कर मार के जाता है। एंड इट वाज लिटरली वेरी शॉकिंग कि मैं एकदम अपने थर्ड लेन में आराम से चल रही हूँ क्योंकि गाड़ी आ गई है, एंड मैं
12: If a boy from Ahmedabad could build what stands here today, then there must be 1,000 more Gautam Adanis simply waiting और संबंध टू नोटिस देम।
13: इसी सोच के साथ संघर्ष की खदानों में छिपे देश के हीरों को तराशने के लिए श्री गौतम अदानी ने शुरू किया देश का सबसे बड़ा ग्रास रूट्स इनोवेशन मूवमेंट।

वंदे भारतम। एक ही महीने से कम समय में देश भर से जुड़े लाखों लोग, हजारों सपने, टॉप मेंटर्स, कई शीर्ष नेतृत्व, बदलने देश के स्टार्टअप का सीन, करने करोड़ों का निवेश, आइडियाज को साल भर वेलकम करने के लक्ष्य के साथ। तो मंच है शानदार, करोड़ों की प्राइज मनी का हो रहा है ऐलान, स्पेशल कैटेगरी पर भी है खास ध्यान। और बात सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेंटर्स को किसी इनोवेशन या बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल नजर आता है तो वे शुभारंभ के लिफाफे के साथ कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट। या ये भी हो सकता है कि किसी इनोवेटर की कहानी और उनका स्ट्रगल किसी मेंटर को इंस्पायर कर दे तो वे उन्हें दे सकते हैं वंदे विंग्स, जिसमें उन्हें मिलेगी अदानी ग्रुप के साथ 10 दिनों की मेंटरशिप। और अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार तो निराश न होना, बस रजिस्ट्रेशन करो, पाओ निवेश में मदद, मेंटरशिप या अदानी ग्रुप का सहकार। और हाँ, ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती है, और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइज। तो अब क्यूरियोसिटी कम करते हैं और इनोवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं।

0: Welcome to India's biggest grassroots innovation movement, Vande Bharat. हमारे इनोवेटर्स को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें गाइडेंस देने के लिए अब मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे आज के मेंटर्स को. प्लीज वेलकम आशुतोष बलानी, मिस्टर राजीव फालंबी, आरती गिल, मिस्टर कल्याण कृष्णमूर्ति, द सेकेंड जनरेशन विजनरी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मिस्टर करण अदानी. तो वेलकम टू वंदे भारतम. शुरू करते हैं. घर बनाना हम सबका सपना होता है. कुछ लोग ये सपना बहुत जल्दी पूरा कर लेते हैं, कुछ लोग काफी देर के बाद, काफी समय बीतने के बाद पूरा करते हैं. टेक्नोलॉजी हर जगह पे, हर क्षेत्र में आजकल, घर के कंस्ट्रक्शन की दुनिया में क्यों नहीं है, ये सवाल हमारे इनोवेटर के दिमाग में आया. तो जोरदार तालियां माइकॉप की इनोवेटर अंकिता सिन्हा, शशांक शेखर और ऋषभ माथुर के लिए. वेलकम वंदे भारतम के मंच पर. पिच का टाइम आपके पास में जो है वो 3 मिनट का है और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब.
1: हेलो एवरीवन, हमारे और आपके लिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है घर, ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड व्हाट नॉट. 20,000 फीट की हाइट पर सीमा पर तैनात एक सैनिक के लिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है देश की प्रोटेक्शन एंड नेशनल सिक्योरिटी. इमेजिन दिस, हाई ऑल्टीट्यूड, सब जीरो टेम्परेचर, वेरी लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, और यहाँ पर आपको करना है कंस्ट्रक्शन. ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्शन सिर्फ स्लो नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है. हमने इस प्रॉब्लम को काफ़ी बारीकी से समझा, सॉल्व किया और देश को दिया उसका पहला 3D प्रिंटेड इम्पैक्ट एंड ब्लास्ट रेजिस्टेंट बंकर. यह बंकर सुपीरियर क्वालिटी के हैं, प्लस कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस को 45 डेज से कम करके 7 डेज पर लेकर आ गए हैं. आज हमारी सीमा पर 500 से ज़्यादा की संख्या में ऐसे बंकर्स डिप्लॉयड हैं जो देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं. हमारे लिए टेक्नोलॉजी का ट्रू पर्पस यही है. नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता सिन्हा.
2: मेरा नाम है शशांक शेखर. मेरा नाम है ऋषभ माथुर एंड वी आर द टीम माइकॉप. माइकॉप इज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ 3D कॉन्क्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. 3D प्रिंटिंग कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी इज बेसिकली रोबोटिक सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर के थ्रू हम किसी भी डिजिटल डिजाइन को लेयर बाय लेयर स्पेशल मिक्स, जो कि हमारे केस के अंदर कॉन्क्रीट है, उसको डिपॉजिट करके कोई भी कॉम्प्लेक्स शेक बना सकते हैं. दिस इज बेसिकली 3D कॉन्क्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. हमने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है हियर इन अहमदाबाद, विच हैज 3 की कॉम्पोनेंट्स. 1 इज अ रोबोटिक सिस्टम, 2nd इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड 3rd इज 3D प्रिंटेबल मिक्स. सो दीज 3 ऑल टूगेदर अचीव ऑलमोस्ट 100% ऑटोमेशन. एंड विद दिस टेक्नोलॉजी वी हैव डिलीवर्ड क्वाइट

0: और अस वो डिस्टेंस कवर करना बहुत बड़ी बात है। वो दूरी हम इस तरीके से पूरी कर पाएंगे और यहाँ पे खड़े होके कुछ लेके जाएंगे इतना बड़ा कंपनी के लिए। आई थिंक व्हेन आई अप्लाइड आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट। शायद सपने ऐसे ही सच होते हैं।
1: बिल्कुल ऐसे ही सच होते हैं और इस मंच पर तो बहुत ही खूबसूरती सच होते हैं। अगर आइडिया में है दम तो कहो
2: वंदे भारतम।
1: वंदे भारतम। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। This is one of those moments that I wait for. Please, aap log scores de dijiye. This is really nice. Now, North East हमारे देश का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है. I don't know how many of you got the opportunity to visit North East. You've been there?
2: Yes.
1: Yeah, it's such a beautiful part. And हमारे जो अगले innovators आ रहे हैं, वो North Eastern खूबसूरत North Eastern belt से आ रहे हैं. Please welcome Imphal East से Kumshunk Private Limited के innovators. Dr. Wankhe Rakpam Sujata and Wankhe Rakpam Krishna Nanda.

0: Hi, Krishna.
1: Hi. Nice to meet you.
0: Yeah, pleasure to have you here on Vande Bharatam and Dr. Sujata. Right? Welcome on Vande Bharatam. Aap dono ka rishta kya?
2: He's my son, Krishna Ananda.
0: Oh, son and mom.
1: Yeah.
2: He's the mechanical engineer behind all the devices and apparatus I develop.
0: Aap log apne pitch ke saath taiyar hain?
2: Haan.
0: Ready hain?
1: Yes.
0: Dr. Sujata, aapke paas mein 3 minute hain. And this is your moment to shine.
2: Namaste, mentors. मैं मणिपुर से आई हूँ और मैंने PhD नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में किया है एंड पोस्ट डॉक भी किया है उस पर. उसी दौरान मैंने एंटी कैंसर कंपाउंड्स के बारे में रिसर्च किया है. भारत सबसे हल्दी और चिली के प्रोड्यूसर्स है, पर हम लोग हाई प्योरिटी बायो एक्टिव्स एंटी कैंसर जैसे कि कुकुरमिन, इंडिरुबिन, कैप्साइसिन और एस्ट्राजेंसिन जो हल्दी और चिली और सम प्लांट से निकलते हैं वो बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ के फैक्ट्री 98% वाला बायो एक्टिव वाला प्रोड्यूस नहीं कर सकते. और इससे ये प्रॉब्लम होता है कि बायो रिसोर्सेज अनटैप हो जाते हैं और इम्पोर्ट बढ़ते हैं. और हमारे जैसे मणिपुर के स्टेट में जो लोग हैं और बायो रिसोर्स के साथ है वो भी अनएम्प्लॉयड रहते हैं. तो हमने इसके लिए सॉल्यूशन निकाले हैं एंड हमने सुजाता एप्रेटस एंड ASU26 डिवाइस निकाले हैं, जिससे भारत की जो हाई वैल्यू बायो रिसोर्सेज है वो भारत में ही अनलॉक करेंगे. हम लोग को दो फायदे मिलते हैं कि प्रोसेसिंग एंड डिवाइस कॉस्ट को 100-fold कम कर देते हैं, पर हमें यील्ड में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलते, यील्ड भी बढ़ गया है. और दूसरी बात है कि वो पेटेंटेड है तो वो हम लोगों का USP है. आई एम एक्सपेक्टिंग फंडिंग एज वेल एज मेंटोरशिप, बिकॉज आई नो दैट वो मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है बिजनेस में.
1: यहाँ आपने क्या क्या बनाया है कुंगशुंग के अंदर? आई कैन सी सम प्रोडक्ट्स, कैन यू प्लीज शो अस सम?
2: सर, व्हेन आई स्टार्टेड माय कंपनी देयर वाज अ क्राइसिस, सो आई हैड टू अर्न रेवेन्यू, सो वी मेड सम बेसिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स. दिस आर फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम हिदाक्लोन, व्हिच इज स्पेसिफिक इन माय स्टेट, सो वी हैव द USP.
3: तो आप मतलब टेक्नोलॉजी उस डिवाइस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं या एक्सट्रैक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं?
2: एक्सट्रैक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं.
3: ग्रेट. उसके ऊपर आई थिंक द ओनली थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू क्लिनिकल्स. अभी आपने कुछ क्लिनिकल्स किया है इन विट्रो या इन सिलिको या इन वीवो कुछ अभी किया है?
2: दिस इज लाइक फसाई अप्रूव्ड एंड सो आई एम स्टार्टिंग विद द वंस व्हिच हैज टू बी यूज्ड इन द क्लिनिक ओनली, सो देयर डजंट रिक्वायर एनी हार्ड सर्टिफिकेशन.
3: आपने मेंटरशिप के बारे में बोला था, सो That's something that I can offer you.
2: Yeah, please, thank you so much.
3: But I do have a request for Karan. Like, I think this is a great, great thing that they are doing, right? And so if we can present them the Bande Wings, I think that would be very kind.
4: Yeah, I agree with you.
3: Okay.
4: It's a great, great opportunity.
0: Congratulations. Aap yahan se Bande Wings dekar ja rahi hai, which means at least 10 din ki mentorship with Adani Group.

0: drive in the Kia Sorento.
1: Kia, movement that inspires.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
6: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
7: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
6: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
8: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
9: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न, इंडिया इज चेजिंग गियर्स, फास्टर, बोल्डर, मोर रेस्टलेस, इट डजंट स्टॉप। Neither do we. NDTV, when it really matters.
8: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
10: All right, let's revert to the Gurugram crash that we are tracking. A woman riding a motorcycle on Gurugram's golf course road was injured. Yeah,
11: please come take a minute. Please. और जैसे कल हम मेरी वीडियो में जो मैंने डाला उसमें देखा कि वो एक गाड़ी वाला जो मुझे चेस कर रहा था, और मैं यूजुअली बाइक राइड करती हूँ संडे को, एंड मैं गोल्फ कोर्स रोड से जा रही थी। मैंने उस टाइम पे नोटिस नहीं करा कि ये गाड़ी उस रोड पे चल रही है, मेरे आगे पीछे चल रही है। पहली चीज़ जो उसने करी कि मैं बाइक चला रही हूँ एंड वो बहुत फास्ट मेरे साइड से निकलता है। देन आई वाज लाइक कि मैं ऐसे हो जाती हूँ कि भाई ये गाड़ी इतने पास से क्यों निकली है मेरे। फिर मैंने इग्नोर करा कि चलो छोड़ो। देन उसके बाद वो गाड़ी धीरे होके फिर वो पीछे जाती है। देन उसके बाद जो सेकेंड इंसिडेंट होता है, जो मेरी वीडियो में शो हो रहा है कि वो मेरे साइड में आके कुछ एक्शन करता है, फिर उसके बाद वो बोलता है कुछ कि मैं ये वो, और ऐसे रुकने के लिए तब मैं डर जाती हूँ। सी, उनके फेस से साफ झलक रहा था कि
10: watching NDTV, I'm Gargi Rawat. The man accused of the hit and run in Gurugram, Kalyan Besla, who knocked down a woman motorcycle driver, has finally been arrested. He was arrested from Rajasthan. And now the Haryana State Commission for Women has also intervened in this matter. We'll bring you all those details. First, a look at the headlines we're tracking. 2 days after he rammed a vehicle into a woman biker, Thug Kalyan Besla, arrested from Rajasthan, faces attempt to murder charge. Biker Sia speaks to NDTV, recounts the hit and run horror, calls it an attempt to murder, says she was hit deliberately, thanks NDTV for standing by her. Two DMK leaders booked by Tamil Nadu cops, Sekar Babu booked for remarks against Chief Minister Vijay. A Raja booked for anti-CTR remarks, the DMK lashes out. Actor Vijay Sethupathi's remarks in Big Boss stokes a row. Sethupathi spoke about a leader, saying leadership doesn't mean attacking rivals. Vijay fans target Sethupathi, DMK slams Vijay supporters. And amid the AI slowdown call, Google DeepMind AGI researcher resigns. He warns that artificial intelligence could kill us all, says humanity may be running out of time.

0: बिफोर यू गेट बैक ऑन योर बाइक? आपका बाइकिंग बाइकिंग जर्नी कब कंटिन्यू होगा?
1: मुझे ऐसा लगता है काफी टाइम लगता है वापस उस स्टेट पे आने के लिए, क्योंकि कोई इंसिडेंट जब सड़क पे होता है, कोई हिट करके जाता है, तो वो बैक टू बैक आपके माइंड में चलता है. तो मुझे लगता है मुझे बहुत टाइम लगेगा अभी.
0: सिया, मुझे पता है कि उस दिन से लेकर अब तक बहुत लोगों ने आपसे पूछा है कि क्या हुआ, लेकिन NDTV पर लोग जानना चाहते हैं सिया से कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन, कैसे शुरू हुआ था. आप बाइक पर चल रहे थे, ये गाड़ी आ गई थी आपके सामने, क्या बातचीत हुई, डिटेल में बताइए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कैसे हुआ था ये?
1: तो जैसे मेरा वीडियो में था, एज इट इज सेम हुआ था. कोई उसमें कोई भी ऐसे कुछ अलग नहीं हुआ. वो गाड़ी मेरे साइड में आई, वो मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे. उसमें गाड़ी में 4 लोग थे और दिख रहा था उन लोगों ने दारू वारू पी रखी है कुछ. तो उस चीज से मैं और ज्यादा डर जाती हूँ और वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी मेरे बाइक के पास लाते हैं. मैं उनको बोलती हूँ आप दूर हो जाइए. तो इसी रीजन से मैं थोड़ा अपना बाइक आगे बढ़ाती हूँ कि भाई वो मुझे हिट ना करे. पर जहाँ मेरी बाइक स्लो होती है, वो पीछे से इतनी तेज अपनी गाड़ी लेके आते हैं और इंटेंशनली मुझे हिट करते हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश करते हैं और फिर वो वहां से मार के भी भाग जाते हैं.
0: जब जब वो कोलिजन हुआ था सिया, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोग ये कर सकते हैं? आपके पीछे था ये गाड़ी, आपने कुछ शब्द बोले थे, उन्होंने भी धमकी दिया आपको, उसके बाद क्या आपने एक्सपेक्ट किया कि ऐसे हो सकता है कि आपको आके डैश करेंगे ऐसे?
1: नहीं नहीं देखिए, जब हेलमेट होता है, हेलमेट में हम कुछ बोलते हैं तो आवाज वो सुनाई नहीं दे पाएगी उनको. पर मैं उनके एक्शन समझ रही थी, तब भी मैंने अपने हाथ से एक्शन करा और जिस तरीके से उनका बिहेवियर लग रहा था, तो इसी वजह से मैं डर रही थी. एंड वही चीज हुआ कि जिस चीज का मुझे डर था, उन्होंने पीछे से आके मुझे ठोका और मुझे सड़क पे गिरा के वो भाग गए.
0: वो 1-2 सेकंड में वो आके आपको डैश किया सिया, वो पूरा वीडियो आपके मोटरसाइकिल के कैमरा पे बिल्कुल क्लियरली कैप्चर हुआ है. उस मोमेंट को डिस्क्राइब करिए, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड बाइकर हैं, आप लगातार बाइकिंग जर्नी पर हैं. जब वो कोलिजन हुआ था, जब उन्होंने आपको आके डैश किया, आपके मन में क्या हुआ, कैसे आपने महसूस किया?
1: बस जब उन्होंने मुझे मारा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया एंड मैं एकदम ब्लैंक हो गई. आई वाज शॉक्ड एंड ट्रॉमाटाइज्ड एंड उसके बाद मैं कुछ नहीं सोच पाई. अच्छा,
0: व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर दैट सिया जी? व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर दैट, आफ्टर यू फेल फ्रॉम द बाइक? गिरने के बाद इमीडिएटली क्या हुआ था?
1: बेसिकली उसके बाद कुछ नहीं, कुछ लोग आए, उन्होंने वो मुझे उठा के लेके गए एंड मेडिकल केयर में थोड़ा था. उसके बाद फिर मैं अपने घर वापस आई.
0: और ये कल्याण बैसला जो है सिया, 2 दिन के बाद डिटेन हुआ है, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? तो 2 दिन के बाद, 2 दिन
1: काफी लेट एक्शन हुआ है. एक्शन काफी जल्दी होना चाहिए था, डिटेल सबके पास थी. तो हाँ, ये एक्शन काफी लेट हुआ है, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था.
0: सिया, आपने बताया कि आप मेंटली भी बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं, क्या इसके बारे में बताएंगे कि आप किस लिए ट्रॉमेटाइज्ड हैं, क्यों ट्रॉमेटाइज्ड हैं, ये जानना चाहेंगे हम?
1: देखो, ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो सिर्फ मैं नहीं, कोई भी लेडी बाइकर, कोई भी महिला ट्रॉमेटाइज हो सकती है, या कोई भी मेल बाइकर, कोई भी हो सकता है. तो ऑब्वियसली ये चीज बैक ऑफ द माइंड हमेशा मेरे चलेगी.
0: और ये क्या एक जेंडर इशू है मैडम? गाड़ी में जब लोग जा रहे हैं, वो अल्कोहल पी रखी है, जब वो देखते हैं कि एक लड़की बाइक चला रही है स्पीड से, ये एक जेंडर इशू भी है, मेल ईगो भी है इसमें?
1: ये मेल ईगो भी है एंड ये जेंडर इशू भी है. लोग लेडी बाइकर को देख के बहुत चेस करते हैं और उनको छेड़ने की भी कोशिश करते हैं. So, ये एक इंसिडेंट था जो मेरा वीडियो में रिकॉर्ड हुआ. आई होप आप सबने भी देखा.
0: यू हर्ड what she has said. She said it's going to take a while for her to get back on her bike and continue her biking journey. She's a passionate biker. She has injuries, and very important to hear what she said, that she's got physical injuries, she's not so worried about them. It is the trauma of what happened that is going to stay with her, and it may take some time for her to get back on her bike. That is the impact of what has happened.
2: 90TV also spoke with Kalyan Baisla's lawyer, and he outrageously outright blamed Sia for the hit and run, claiming that Kalyan was provoked by her. Listen into what he said.
3: I have the advocate, Mr. Naveen Baisla, on the phone line with me. He's representing Kalyan Baisla. Naveen ji, aap se puchna hai, your client has been detained. Is this a detention or an arrest? Can you confirm to us?
4: पूरा किसी अपने नॉन से पता लगाया कि उसको दौसा से अरेस्ट कर लिया है. बाकी अभी क्लियर कुछ नहीं है. बाकी मैं गुड़गावा कोर्ट जाके या गुड़गावा थाना जाके अभी क्लियर करता हूं कि वो अरेस्ट हुआ या डिटेन हुआ, जो भी है वो बताता हूं आपको.
3: नवीन जी, देयर इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज आल्सो अगेंस्ट योर क्लाइंट. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट?
4: हमारे क्लाइंट की इसमें कोई फॉल्ट नहीं है. एक्चुअली ये राइडर्स बहुत तेज स्पीड चला रहे थे बाइकों को, उनकी गलती से ये एक्सीडेंट हुआ है. हमारे क्लाइंट की कोई गलती नहीं है.
3: आपके क्लाइंट ने रोका क्यों नहीं गाड़ी फिर उनको हेल्प करने के लिए?
4: मैम, 25 से 30 लड़के थे, आपस में राइडर थे.
3: कोई तो दिख नहीं रहा था वीडियो में नवीन जी?
4: मैम, वीडियो तो लड़के इनके पास है ना, राइडरों के पास है. ये प्रॉपर वीडियो क्यों नहीं दे रहे सारी?
3: प्रॉपर वीडियो, चार चार वीडियोस है सर.
4: मैम, ये एडिटिंग वीडियो है, ये प्लांटेड वीडियो है, ये उन्होंने अपने हिसाब से अपने तरह तैयार करके रख दी.
3: नवीन जी, यू नो द लॉ बेटर देन आई डू. होपफुली देयर इज समथिंग कॉल्ड बीइंग अ गुड समैरिटन. इफ योर क्लाइंट इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, व्हिच इज सरप्राइजिंग एट दिस पॉइंट गिवन द एविडेंस माउंटिंग अगेंस्ट हिम. मेरा प्रश्न ये है आपके लिए, उन्होंने गाड़ी रोका क्यों नहीं? नहीं नहीं, आप सुनिए मेरी बात. उन्होंने सिया को गाड़ी में क्यों नहीं लिया और हॉस्पिटल क्यों नहीं गए उनके साथ?
4: एक्चुअली ये मैम, इसको मॉब लिंचिंग का डर था. इसको ये डर था कि ये 28-30 जने मुझको मारना दे, मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए ये
3: तो आप सिया की कहानी हमें बोल रही है. दिस साउंड्स मोर लाइक योर सिया'स काउंसिल देन द काउंसिल ऑफ कल्याण बैसला सर. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शी वेंट थ्रू. नवीन जी,
4: मैम स्टोरी एक्चुअली क्या होता है मैम, संख्या में ये ज्यादा, राइडर ये ज्यादा, स्पीड इनकी ज्यादा, 160 तक 180 तक स्पीड चला रहे हैं इनकी. मैंने और भी वीडियो देखे.
3: एक औरत, चार लोग हैं गाड़ी में, फोर व्हीलर में, और आप बोल रहे हैं कि आपके क्लाइंट विक्टिम है.
4: मेरे क्लाइंट विक्टिम है, रियल में विक्टिम है मेरे.
3: मुझे समझाइए कैसे. इज द वीडियो फुटेज लाइंग? नवीन जी, इज द वीडियो फुटेज लाइंग?
4: परमिशन देता है इन राइडरों को, कौन परमिशन देता है कि आप एक रोड को घेर के चलोगे, आप एक रोड को स्टंट के लिए यूज करोगे, एक रोड को स्पीड के लिए यूज करोगे, आप किस किस की जान के खतरे को अपने मोल ले रहे हो मैडम आपकी?
3: सो मिस्टर नवीन, व्हाट यू आर सेइंग इज सीआई इज लाइंग, द पुलिस इज लाइंग, द सुओ मोटो केस फाइल्ड बाय द पुलिस इज अ शैम. इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल अस?
4: पुलिस का नहीं, मैं पुलिस के ऊपर कुछ नहीं कह रहा. पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. पुलिस इसमें फेयर इंक्वायरी करेगी और पुलिस इसमें जो भी करेगी अब उसको सामने उसका फेस करेंगे. कोई इशू नहीं है हमें.
3: मिस्टर नवीन, इट्स अनफॉर्चुनेट दैट यू से दिस, बट बिफोर यू गो आई वांट टू अंडरस्टैंड इफ यू कुड एक्सप्लेन द वीडियो फुटेज वी आर सीइंग ऑन आवर स्क्रीन्स, द डैश कैम फुटेज. यू एक्सप्लेन इट टू अस सर.
4: मैंने वो वीडियो चार बार देखी जो सिया की तरफ से है. मैंने उसे वीडियो में साफ दिख रहा है, ये लड़की बहुत हाई स्पीड में, वो लड़का पीछे से आया, उसको एक यू टर्न दिखा, यू टर्न से वो बचने के लिए उसने लेफ्ट टर्न लिया, उसकी वजह से ये नेग्लिजेंस पार्ट पे ये एक्सीडेंट हुआ है.
3: तो फिर वो कॉन्वर्सेशन क्या था, जो वार्तालाप हुआ था व्हाइल दे वर इन द कार, वो जब गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने सिया से क्या बोला था?
4: वो इसे प्रोवोक कर रहे थे, वो इसे बार बार हरास कर रहे थे, बार बार आगे पीछे निकालने के लिए इसको एक कहते हैं मैनिपुलेट कर रहे थे कि ये हमसे कुछ उल्टा बोले. इसने कुछ नहीं बोला, इसने बल्कि ये बोला कि आप अच्छी बाइक चलाते हो, आप सेफ हो, आप आराम से चलाओ.
3: और फिर उन्होंने ठोक दिया सिया को उसके बाद और भाग गए वहाँ से.
4: इन्होंने नहीं ठोका मैम, इन्होंने
3: सर किसने ठोका? वीडियो फुटेज तो है वहाँ पे
4: मैम. देख ली मैम, आप प्रॉपर देखो ना. वो
3: मैं प्रॉपर ही देख रही हूँ नवीन जी.
4: मैं भी देख रहा हूँ मैम, मैंने चार बार देखी मैम वीडियो. वो प्रॉपर उसने अपने आप को बचाने के लिए लेफ्ट लिया फुटपाथ से, एक गाड़ी और थी.
3: अच्छा, तो अपने आप को बचाने के लिए लेफ्ट लिया नवीन जी, तो उन्होंने गाड़ी रोका क्यों नहीं देख के कि सिया गिर गई है?
4: इसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए इसलिए इसने नहीं रोका. उसने बताया भाई ये 28-30 राइडर थे.
3: तो फिर अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज तो लगना चाहिए है ना?
4: नहीं, क्यों लगेगा मैम? क्यों अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज लगेगा?
3: क्योंकि आपने गाड़ी मारी है, वहाँ से आप भाग गए हैं.
4: मैं तो ये कहूँगा कि कार्रवाई इन राइडरों पे होनी चाहिए सारी, इनकी गलती.
3: एग्जैक्टली इन ड्राइवरों पे होनी चाहिए, आपके क्लाइंट पे होनी चाहिए.
4: बाइक राइडरों पे ये कोर्ट की और क्या नाम है, कोई भी पुलिस की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते. ये अपनी मनमानी से स्टंट करते हैं, ये अपने मनमानी से स्पीड चलाते हैं.
3: और फिर आपके क्लाइंट फिर व्हाई इज ही हाइडिंग? वो छुप क्यों गए उसके बाद?
4: वो एक्चुअली डर की वजह से छुपा पड़ा है कि ये छोटा सा मुद्दा इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया, बल्कि वो निर्दोष है.
3: Mr. Naveen, it's laughable really that you say this, but thank you for speaking.

0: you all the latest on these stories as we continue to track the Gurugram hit and run case as well. Stay tuned.
1: With SBI Celebrations Unlimited, make this Ganeshotsav extra special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
6: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
7: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
8: Pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
9: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
10: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
11: Gold rush on the field.
12: India's champions are ready.
11: The battles and the breakthroughs, from the arena to the podium.
12: Asian Games 2026.
11: Go for glory, only on NDTV.
13: Launch control, 0 to 100.
14: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
15: This car makes no sense, yet it makes every sense.
16: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
14: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
17: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
18: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
19: High rate, check the audio.
17: Let's do it.
20: Breaking stories, we're jumping straight into it.
17: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
21: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
17: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
22: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
21: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
17: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
23: We are crossing a heavy ridge line now. We are going to be descending into the valley where the damage has taken place. So this is the Bhotekoshi River now. It used to be Trishuli downstream. It's now the Bhotekoshi. This is the first look that we saw by helicopter of the exact spot where the floods broke through. To my left over here, they were all homes. Ashwini, you see the bank of the river over here. They were all homes. None of them exist. They've been completely washed away. There is 100% destruction over here. 100%. There are no homes, no structures at all. As we go back towards Kathmandu, there's a helicopter right there. It's got dead bodies slung underneath it, is what we're told. Well, we're now in Trishuli, and it's in fact just on the banks of the Trishuli over here that a lot of the damage has taken place. Well, we are at one of the sites where there are rescue operations which are now taking place. The Nepalese army is over here. How is every minute absolutely critical in an operation like this? Time is not in your side.
16: We are more than 90 people here. So we are trying best.
23: With our reports, we hope to get and provide our viewers a bigger, better idea of the extent of the devastation and what the people of Nepal are going through. Vishnu Shom for NDTV.
0: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
1: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
2: I want you to reach out to the Maharashtra Chief Minister today through our channel and tell them what you've been through as a father.
3: Marne ke bada kya hoga?
2: As a journalist, I can say you're not alone.
1: So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood. Weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV, when it really matters.
24: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
25: So many attacks.
24: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
25: It's incredible.
24: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
25: Welcome to Left, Right, and Center.
24: Hard facts.
25: War struck country.
24: Hard
25: country.
24: Questions.
25: In the Ukraine.
24: 30 years of trust.
26: Welcome back. Well, let's go across to where the Haryana police are addressing a press conference. Police officer Sandeep Kumar is speaking. Let's listen in. This is on the hit and run case that took place in Gurugram.
27: Photo aayi hui thi uske aadhar pe uski search ki gayi aur search karke pata laga ki wo Palwal ka ek vyakti hai jisko ki fir पुलिस की अलग अलग टीमें तीन टीमें गठित की गई इसमें और तीनों टीमों ने इस पे रात भर कार्य किया और उसको आज दोसा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था जो घटना के दौरान उसके साथ ही मौजूद था
28: उसकी क्या कुछ भूमिका निकल के आई है लविश के नाम की
27: अभी उसकी भूमिका की जाँच चल रही है लेकिन ये है कि वो उसके साथ था घटना के दौरान और आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो आपको इसके बारे में फिर से बताया जाएगा
29: सर अभी तक की पूछताछ में आरोपी ने क्या बताया है कि किस तरीके से उसके आर्गुमेंट्स हुई थी क्या पूरा इंसिडेंट हुआ था
27: अभी इतनी डिटेल पूछताछ नहीं हुई है अभी तो क्योंकि वीडियो में वो दिख ही रहा है उसका कृत्य जो है वो सबके सामने है तो उसके आधार पे ही उसको पकड़ा गया है और उसके अभी आगे की कार्रवाई की जाएगी और उसको अदालत में पेश करके उसका रिमांड लिया जाएगा और उसके दौरान उससे पूरी पूछताछ की जाएगी
28: कल शाम तक
27: हाँ ये डिस्टेंट कजन्स हैं
30: ने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला है इनिशिएशन किनके तरफ से हुआ था क्या जो अक्यूज्ड है उनके तरफ से कुछ कन्वर्सेशन स्ट्राइक करने की कोशिश की गई थी या फिर कोई इनडिसेंट जेस्चर हुआ था इनके तरफ से
27: जी हाँ विक्टिम ने ये बोला है कि उसने कुछ कमेंट पास किया है जब वो साइड में गाड़ी चला रहे थे तो उसके आधार पर जो हमने इसमें 78 और 79 BNS भी ईजाद किए इसमें और अभी विक्टिम के बयान जो है वो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं और जो 164 की स्टेटमेंट के लिए माननीय अदालत के सामने उनको पेश किया जा रहा है
28: सर अटैक मर्डर लगाया गया विक्टिम को मर्डर लगाया गया
30: अब्यूज भी किया था विक्टिम को
27: देखिए उसने कुछ कमेंट पास किया है तो वो अभद्र कमेंट है उसमें आप अब अब्यूजिव कह सकते हैं उसे
30: ऑब्सीन कमेंट लिख सकते हैं
27: जी
29: सर एक गाड़ी का भी रिमांड ले रहे हैं सर एक गाड़ी किसकी थी आरोपी उस दिन कहां जा रहा था और उसके बाद कहां फरार हुआ था
27: ये गाड़ी उसके एक मित्र की है जो कि उसने यूज करने के लिए ली थी और उसके बाद ये अलग अलग जगह होता हुआ राजस्थान के दोसा के पास से इसको गिरफ्तार किया गया
28: कल शाम को ये पलवल में था गुड़गांव पुलिस की लग टीम लगातार रेड कर रही है कैसे ये राजस्थान पहुंचा किसके साथ ये पहुंचा और राजस्थान में किसके पास है
29: और क्या उसी गाड़ी की इंटरव्यूज भी चल रही थी सर
27: जैसे ही ये मीडिया में वायरल हुआ तो इसने तुरंत अपने बचाव में मीडिया में एक इंटरव्यू दिया इसने उसको नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की और उसके बाद ये अपने फ़ोन वोन बंद करके वहाँ से खिसक गया था
28: प्रोफाइल क्या है सर इसका आरोपी का प्रोफाइल क्या कुछ है
27: ये एक जिम संचालक भी है और साथ में कुछ प्रॉपर्टी के वगैरह का काम भी करता है।
30: लविश क्या करते हैं जो इसके कजन हैं?
3: कहाँ से हैं सर?
27: उसके बारे में अभी तफ्तीश की जाएगी।
30: ये जो एक्यूज अभी अरेस्ट हुए हैं, स्पेशली मिस्टर कल्याण बैंसला, 48 आवर्स इंसिडेंट का उससे ज्यादा हो चुका है, इनका

0: संज्ञान है इस अपराध में, जो ये धाराएं हैं वो ज़्यादा संगीन हैं, जो 307 हैं वो।
1: सर मैंने बंद लाइन लगाई थी, इसके बारे में बताइए सर, ये प्रथम दृष्टि आपको देखने में लग रहा है अटेम्प्ट टू मर्डर है, या एक मीडिया का प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है?
0: नहीं, ये क्योंकि जो है ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने जो टक्कर मारी है वो साइड से जानबूझ के मारी है, क्योंकि ऑलरेडी उनका आर्ग्यूमेंट हो चुका था और जो पीड़ित महिला है उन्होंने भी अपने कथन में यही अंकित करवाया है कि उन्होंने जान से मारने की नीयत की।
1: क्योंकि सर उनकी कंप्लेंट जो है वो तो फ्लैट थी, उसमें इस तरीके की बात नहीं लिखी गई थी।
0: नहीं, पुलिस ने ये जो वीडियो का विश्लेषण किया है उसके आधार पर ये धारा लगाई गई।
2: पुलिस इसको कोर्ट में एस्टैब्लिश कर पाएगी कि अटेम्प्ट टू मर्डर है, कॉज विक्टिम को कोई ऐसी फैटल इंजरी अभी तक उस तरह की?
0: देखिए, हम सिर्फ इंजरी, उसने सेफ्टी गियर वगैरह पहना हुआ था, वो उनकी किस्मत है, बाकी जो उन्होंने अटेम्प्ट किया है अपनी तरफ से, मतलब उनकी नियत जो थी, इंटेंट जो उसके पीछे था वो उनसे उनको मारने का ही था।
1: इंटेंशन थी मतलब?
0: जी।
1: अभी
0: 2 दिन का हम मांग रहे हैं, बाकी जैसे अदालत के आदेश होंगे तो उसको पालन।
3: क्या एज क्या है इन दोनों
0: की? अप्रोक्सीमेटली 35 के अराउंड है। देखिए, वो आपको डिटेल दे दी जाएगी, पूरा एक प्रेस नोट अलग से जारी कर देंगे हम, उसमें पूरी डिटेल है।
1: सर आज ही पेश करेंगे?
0: हाँ, आज ही पेश करेंगे।
3: सर ये जॉइंट ऑपरेशन था राजस्थान पुलिस का था या हम लोग
0: नहीं? नहीं, ये हरियाणा पुलिस का था, लेकिन क्योंकि जो मानक हैं और जो अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोसीजर हमने राजस्थान से गिरफ्तार किया, तो राजस्थान पुलिस को हमने इंटीमेट किया है इस बारे में और वहाँ पे जो कंसर्न थाना है वहाँ पे सूचित किया गया।
2: संदीप जी, लास्ट टू क्वेश्चंस, जिस वक्त इंसिडेंट हुआ उस वक्त गाड़ी में टोटल कितने लोग थे एंड ये गुड़गांव क्या पार्टी करने के लिए आए हुए थे या क्या?
0: देखिए, ये अभी तफ्तीश का विषय है तो इसके बारे में अभी कोई कमेंट करना उचित नहीं रहेगा, तो एक बार तफ्तीश थोड़ी आगे बढ़ेगी तो आपको
1: कोई महिला बता रहे गाड़ी में
0: थी? अभी आपको अवगत करवा दिया जाएगा, अभी पूछताछ क्योंकि बिल्कुल
3: क्लेम किया कि कजन सिस्टर भी थी, कजन भी थे,
0: जो अभी देखिएगा ये तफ्तीश का विषय है, तो जैसे भी आगे बढ़ेगी तफ्तीश आपको अवगत करा दिया।
4: All right, so that was the police briefing on the arrest of Kalyan Besla. A second person has also been arrested. The police also, revealing that indeed it was an attempt to murder a case. They say that Besla deliberately swerved his car, that this is something they found after looking at the video, and it was an attempt to deliberately hit the bike. A second arrest has been made. We don't know the identity of the second person arrested. However, the police also revealing that Besla had made an obscene remark against Sia, who was riding the motorcycle. So that was a briefing by the police after the arrest of Kalyan Besla. Well, with that, we'll slip into a short break. More news on the other side. Stay with us.

0: And our top focus on the show today, in a big NDTV impact, Kalyan Besla has now been arrested. That's after more than 50 hours on the run. Besla had allegedly fled the scene immediately after the road rage crash involving biker Sia, which triggered a major police hunt across multiple locations. Kalyan Besla, accused in an attempt to murder case, was brought to Gurugram. Visuals show Besla with a car, his hand bandaged as he kneels before the vehicle. Gurugram police has added an attempted murder charge as well, with the offence carrying up to 10 years in prison. Five teams were formed to track Besla while police scan CCTV footage from Golf Course Road. Meanwhile, speaking exclusively to NDTV, he alleged that Besla's arrest was delayed and accused him of being drunk, deliberately hitting her and fleeing the spot without stopping. Well, she says that she was terrified and shaking after the incident, but is grateful that the entire episode was captured on camera.
1: क्योंकि जो है ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने जो टक्कर मारी है वो साइड से जानबूझ के मारी है क्योंकि ऑलरेडी उनका आर्ग्यूमेंट हो चुका था और जो पीड़ित महिला है उन्होंने भी अपने कथन में यही अंकित करवाया है कि उन्होंने जान से मारने की नियत की है।
2: उनकी कंप्लेंट जो है वो तो बुकार फ्लैट थी, उसमें इस तरीके की बात नहीं लिखी गई
1: थी। नहीं, पुलिस ने ये जो वीडियो का विश्लेषण किया है उसके आधार पर ये धारा लगाई। विक्टिम ने ये बोला है कि उसने कुछ कमेंट पास किया है जब वो साइड में गाड़ी चला रहे थे, तो उसके आधार पर जो हमने इसमें 78 और 79 BNSB इजाद की है इसमें, और अभी विक्टिम के बयान जो है वो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं और जो 164 की स्टेटमेंट के लिए माननीय अदालत के सामने उनको पेश किया जा रहा है। दिनांक 14/9/26 को कल एक महिला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो वायरल किया था, साइड से टक्कर मारता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें उस महिला के को गिरता हुआ दिखाया जा रहा है और वो जो बाइक पे लगा हुआ कैमरा है उससे रिकॉर्डिंग हुई है। तो उस संबंध में जैसे ही वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया और उसके बाद उसकी आरोपी की जो थोड़ी सी एक फ़ोटो आई हुई थी उसके आधार पे उसकी सर्च की गई और सर्च करके पता लगा कि वो पलवल का एक व्यक्ति है, जिसको कि फिर पुलिस की अलग अलग टीमें, तीन टीमें गठित की गई इसमें और तीनों टीमों ने इस पर रात भर कार्य किया और उसको आज दोसा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था जो घटना के दौरान उसके साथ ही मौजूद था।
0: And Sia has spoken exclusively to NDTV for the first time since the incident. Let's listen in to what she had to say about the whole ordeal and the arrest of Kalyan Besla.
3: In her first television interview since that terrible incident where Sia was thrown off her bike, she joins me live today on NDTV. Sia, NDTV par aapka swagat hai. सब कुछ रहने देते हैं, पहले हम जानना चाहते हैं सिया, आप कैसे हैं, आपका हालत, आपका हेल्थ कैसा है, अभी आपके इंजरीज कैसे हैं, वो जानना चाहते हैं हम। अभी पहले बताइए।
4: मेरे पास उस टाइम पे मेरे राइडिंग शूज ग्लास थे, तो उससे मुझे बहुत बचाव हुआ है, पर स्टिल काफी जगह चोट आई है, नीज पे, एल्बोज पे, एंड फिजिकली से ज्यादा मैं मेंटली बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हूँ उस इंसिडेंट के बाद।
3: मेंटली आपके मेंटल इंजरीज के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितना समय लगेगा बिफोर यू गेट बैक ऑन योर बाइक, आपका बाइकिंग जर्नी कब कंटिन्यू होगा?
4: मुझे ऐसा लगता है काफ़ी टाइम लगता है वापस उस स्टेट पे आने के लिए, क्योंकि कोई इंसिडेंट जब सड़क पे होता है, कोई हिट करके जाता है, तो वो बैक टू बैक आपके माइंड में चलता है, तो मुझे लगता है मुझे बहुत टाइम लगेगा अभी।
3: सिया, मुझे पता है कि उस दिन से लेकर अब तक बहुत लोगों ने आपसे पूछा है कि क्या हुआ, लेकिन NDTV पर लोग जानना चाहते हैं सिया से कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन, कैसे शुरू हुआ था, आप बाइक पर चल रहे थे, ये गाड़ी आ गई थी आपके सामने, क्या बातचीत हुई, डिटेल में बताइए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे हुआ था ये।
4: तो जैसे मेरा वीडियो में था एज इट इज सेम हुआ था, कोई उसमें कोई भी ऐसे कुछ अलग नहीं हुआ, वो गाड़ी मेरे साइड में आई, वो मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे. उसमें गाड़ी में 4 लोग थे और दिख रहा था उन लोगों ने दारू वारू पी रखी है कुछ. तो उस चीज से मैं और ज्यादा डर जाती हूँ और वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी मेरे बाइक के पास लाते हैं. मैं उनको बोलती हूँ आप दूर हो जाइए. तो इसी रीजन से मैं थोड़ा अपना बाइक आगे बढ़ाती हूँ कि भाई वो मुझे हिट ना करे. पर जहां मेरी बाइक स्लो होती है वो पीछे से इतनी तेज अपनी गाड़ी लेके आते हैं और इंटेंशनली मुझे हिट करते हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश करते हैं और फिर वो वहां से मार के भी भाग जाते हैं.
3: जब वो कोलिजन हुआ था सिया, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोग ये कर सकते हैं? आपके पीछे था ये गाड़ी, आपने कुछ शब्द बोले थे, उन्होंने भी धमकी दिया आपको, उसके बाद क्या आपने एक्सपेक्ट किया कि ऐसे हो सकता है कि आपको आके डैश करेंगे ऐसे?
4: नहीं नहीं, देखिए जब हेलमेट होता है, हेलमेट में हम कुछ बोलते हैं तो आवाज वो सुनाई नहीं दे पाएगी उनको. पर मैं उनके एक्शन समझ रही थी तब भी मैंने अपने हाथ से एक्शन करा और जिस तरीके से उनका बिहेवियर लग रहा था तो इसी वजह से मैं डर रही थी. एंड वही चीज हुआ कि जिस चीज का मुझे डर था उन्होंने पीछे से आके मुझे ठोका और मुझे सड़क पे गिरा के वो भाग गए.
3: वो 1-2 सेकंड में वो आके आपको डैश किया सिया, वो पूरा वीडियो आपके मोटरसाइकिल के कैमरा पे बिल्कुल क्लियरली कैप्चर हुआ है. उस मोमेंट को डिस्क्राइब करिए, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड बाइकर हैं, आप लगातार बाइकिंग जर्नी पर हैं. जब वो कोलिजन हुआ था, जब उन्होंने आपको आके डैश किया, आपके मन में क्या हुआ, कैसे आपने महसूस किया?
4: बस जब उन्होंने मुझे मारा मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया एंड मैं एकदम ब्लैंक हो गई. आई वाज शॉक्ड एंड ट्रॉमाटाइज्ड एंड उसके बाद मैं कुछ नहीं सोच पाई.
3: व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर दैट सिया जी, व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर दैट, आफ्टर यू फेल फ्रॉम द बाइक, गिरने के बाद इमीडिएटली क्या हुआ था?
4: बेसिकली उसके बाद कुछ नहीं, कुछ लोग आए, उन्होंने वो मुझे उठा के लेके गए एंड मेडिकल केयर मैंने थोड़ा करा. उसके बाद फिर मैं अपने घर वापस आई.
3: और ये कल्याण बैसला जो है सिया, 2 दिन के बाद डिटेन हुआ है, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? 2 दिन के बाद, 2 दिन
4: काफी लेट एक्शन हुआ है, एक्शन काफी जल्दी होना चाहिए था, डिटेल सबके पास थी. तो हाँ, ये एक्शन काफी लेट हुआ है, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था.
3: सिया, आपने बताया कि आपकी आप मेंटली भी बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं, क्या इसके बारे में बताएंगे कि आप किस लिए ट्रॉमेटाइज्ड हैं, क्यों ट्रॉमेटाइज्ड हैं, ये जानना चाहेंगे हम?
4: देखो, ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो सिर्फ मैं नहीं, कोई भी लेडी बाइकर, कोई भी महिला ट्रॉमेटाइज हो सकती है या कोई भी मेल बाइकर, कोई भी हो सकता है. तो ऑब्वियसली ये चीज बैक ऑफ द माइंड हमेशा मेरे चलेगी.
3: और ये क्या एक जेंडर इशू है मैडम? गाड़ी में जब लोग जा रहे हैं, वो अल्कोहल पी रखी है, जब वो देखते हैं कि एक लड़की बाइक चला रही है स्पीड से, ये एक जेंडर इशू भी है, मेल ईगो भी है इसमें?
4: ये मेल ईगो भी है एंड ये जेंडर इशू भी है. लोग लेडी बाइकर को देख के बहुत चेज करते हैं और उनको छेड़ने की भी कोशिश करते हैं. So, ये एक इंसिडेंट था जो मेरा वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, आई होप आप सबने भी देखा.
3: You've heard what she has said. She said it's going to take a while for her to get back on her bike and continue her biking journey. She's a passionate biker. She has injuries and very important to hear what she said, that she's got physical injuries, she's not so worried about them. It is the trauma of what happened that is going to stay with her and it may take some time for her to get back on her bike. That is the impact of what has happened.
0: Meanwhile, NDTV also spoke to Kalyan Besla's lawyer, who outright blamed Sia for the hit and run, claiming that Kalyan was provoked by her. Take a look.
5: I have the advocate, Mr. Naveen Besla, on the phone line with me. He's representing Kalyan Besla. Naveen ji, aapse puchna hai, your client has been detained. Is this a detention or an arrest? Can you confirm to us?
6: पूरा किसी अपने नॉन से पता लगाया कि उसको 200 से अरेस्ट कर लिया है. बाकी अभी क्लियर कुछ नहीं है. बाकी मैं गुड़गावा कोर्ट जाके, गुड़गावा थाना जाके अभी क्लियर करता हूँ कि वो अरेस्ट हुआ या डिटेन हुआ, जो भी है वो बताता हूँ आपको.
5: नवीन जी, there is an attempt to murder charge also against your client. What do you have to say about that?
6: हमारे क्लाइंट की इसमें कोई फॉल्ट नहीं है. एक्चुअली ये राइडर बहुत तेज स्पीड चला रहे थे बाइकों को, उनकी गलती से ये एक्सीडेंट हुआ है. हमारे क्लाइंट की कोई गलती नहीं है.
5: आपके क्लाइंट ने रोका क्यों नहीं? गाड़ी फिर उनको हेल्प करने के लिए?
6: मैम 25 से 30 लड़के थे आपस में, राइडर थे,
5: कोई तो दिख नहीं रहा था वीडियो में नवीन जी?
6: मैम वीडियो तो इनके पास है ना, राइडरों के पास है, प्रॉपर वीडियो क्यों नहीं दे रहे सारी?
5: प्रॉपर वीडियो चार चार वीडियोज है सर।
6: मैम ये ना एडिटिंग वीडियो है, ये प्लांटेड वीडियो है, ये उन्होंने अपने हिसाब से अपने तरह तैयार करके रख दी।
5: नवीन जी यू नो द लॉ बेटर देन आई डू, होपफुली देयर इज समथिंग कॉल्ड बीइंग अ गुड समैरिटन। इफ योर क्लाइंट इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड व्हिच इज सरप्राइजिंग एट दिस पॉइंट गिवन द एविडेंस माउंटिंग अगेंस्ट हिम, मेरा प्रश्न ये है आपके लिए, उन्होंने गाड़ी रोका क्यों नहीं? नहीं नहीं आप सुनिए मेरी बात, उन्होंने सिया को गाड़ी में क्यों नहीं लिया और हॉस्पिटल क्यों नहीं गए उनके साथ?
6: एक्चुअली ये मैम इसको मॉब लिंचिंग का डर था, इसको ये डर था कि ये 28-30 जने मुझको मारना दे, मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए ये
5: वहां। तो आप सिया की कहानी हमें बोल रही है, दिस साउंड्स मोर लाइक योर सिया'स काउंसिल देन द काउंसिल ऑफ कल्याण बेसला सर, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शी वेंट थ्रू नवीन जी।
6: मैम स्टोरी एक्चुअली क्या होता है मैम, संख्या में ये ज्यादा, राइडर ये ज्यादा, स्पीड इनकी ज्यादा, 160 तक 180 तक स्पीड चला रहे हैं इनकी, मैंने और भी वीडियो देखे।
5: एक औरत चार लोग हैं गाड़ी में, फोर व्हीलर में, और आप बोल रहे हैं कि आपके क्लाइंट विक्टिम है?
6: मेरे क्लाइंट विक्टिम है, रियल में विक्टिम है मेरे।
5: मुझे समझाइए कैसे, इज द वीडियो फुटेज लाइंग? नवीन जी इज द वीडियो फुटेज लाइंग?
6: कौन परमिशन देता है इन राइडरों को, कौन परमिशन देता है कि आप एक रोड को घेर के चलोगे, आप एक रोड को स्टंट के लिए यूज करोगे, एक रोड को स्पीड के लिए यूज करोगे, आप किस किस की जान के खतरे को अपने मोल ले रहे हो बनवात की?
5: सो मिस्टर नवीन व्हाट यू आर सेइंग इज सीआई इज लाइंग, द पुलिस इज लाइंग, द सुओ मोटो केस फाइल्ड बाय द पुलिस इज अ शैम, इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल अस?
6: पुलिस का नहीं, मैं पुलिस के ऊपर कुछ नहीं कह रहा, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस इसमें फेयर इंक्वायरी करेगी और पुलिस इसमें जो भी करेगी हम उसको सामने उसका फेस करेंगे, कोई इशू नहीं हमें।
5: मिस्टर नवीन इट्स अनफॉर्चुनेट दैट यू से दिस बट बिफोर यू गो आई वांट टू अंडरस्टैंड इफ यू कुड एक्सप्लेन द वीडियो फुटेज वी आर सीइंग ऑन आवर स्क्रीन्स, द डैश कैम फुटेज, यू एक्सप्लेन इट टू अस सर।
6: मैंने वो वीडियो चार बार देखी जो सिया की तरफ से है, मैंने उसमें वीडियो में साफ दिख रहा है ये लड़की बहुत हाई स्पीड में, वो लड़का पीछे से आया, उसको एक यू टर्न दिखा, यू टर्न से वो बचने के लिए उसने लेफ्ट टर्न लिया, उसकी वजह से ये नेग्लिजेंस पार्ट पे ये एक्सीडेंट हुआ है।
5: तो फिर वो कॉन्वर्सेशन क्या था, जो वार्तालाप हुआ था व्हाइल दे वर इन द कार, जब गाड़ी चला रहे थे उन्होंने सिया से क्या बोला था?
6: वो इसे प्रोवोक कर रहे थे, वो इसे बार बार हरास कर रहे थे, बार बार आगे पीछे निकालने के लिए इसको एक कहते मैनिपुलेट कर रहे थे कि ये हमसे कुछ उल्टा बोले, इसने कुछ नहीं बोला, इसने बल्कि ये बोला कि आप अच्छी बाइक चलाते हो, आप सेफ हो, आप आराम से चलाओ,
5: और फिर उन्होंने ठोक दिया सिया को उसके बाद और भाग गए वहाँ से।
6: इन्होंने नहीं ठोका मैम, इन्होंने
5: सर किसने ठोका? वीडियो फुटेज तो है वहाँ पे
6: मैम, देख ली मैम, आप प्रॉपर देखो ना, वो
5: मैं प्रॉपर ही देख रही हूँ नवीन जी,
6: मैं भी देख रहा हूँ मैम, मैंने चार बार देखी मैम वीडियो, वो प्रॉपर उसने अपने आप को बचाने के लिए लेफ्ट लिया फुटपाथ से, एक गाड़ी और थी।
5: अच्छा तो अपने आप को बचाने के लिए लेफ्ट लिया नवीन जी, तो उन्होंने गाड़ी रोका क्यों नहीं देख के कि सिया गिर गई है?
6: इसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए इसलिए इसने नहीं रोका, उसने बताया भाई ये 28-30 राइडर थे।
5: तो फिर अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज तो लगना चाहिए है ना?
6: नहीं क्यों लगेगा मैम, क्यों अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज लगेगा?
5: क्योंकि आपने गाड़ी मारी है वहाँ से आप भाग गए हैं।
6: मैं तो ये कहूँगा कि कार्रवाई इन राइडरों पे होनी चाहिए सारी, इनकी गलती
5: एग्जैक्टली इन ड्राइवरों पे होनी चाहिए, आपके क्लाइंट पे होनी चाहिए,
6: बाइक राइडरों पे ये कोर्ट की और क्या नाम है कोई भी पुलिस की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, ये अपनी मनमानी से स्टंट करते हैं, ये अपनी मनमानी से स्पीड चलाते हैं।
5: और फिर आपके क्लाइंट फिर व्हाई इज ही हाइडिंग, वो छुप क्यों गए उसके बाद?
6: वो एक्चुअली डर की वजह से छुपा पड़ा है कि ये छोटा सा मुद्दा इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया, बल्कि वो निर्दोष है।
5: Mr. Naveen, it's laughable really that you say this, but thank you for speaking to NDTV. Out here you have the man who has hit Sia and run away from the spot playing the victim card. And the survivor of this hit and run is the one who has come forward, identified herself, made it clear that she is the one who was the survivor of this hit and run and even furnished evidence to the police. The story is quite clear. Thank you for joining us on NDTV.
0: All right, and joining us live now is Ishika Verma. She joined me live from Gurugram outside the court. Ishika, Kalyan Besla has of course been arrested. It's the big NDTV impact right now. And there's also been an attempt to murder section in the FIR. Tell us more about the investigation, where it is headed to.
7: Well, Raisha, as you rightly mentioned, it is certainly a big NDTV impact. We have seen that today itself, it was the Gurugram police that in fact added the attempt to murder charges in the FIR, and that was certainly a primary demand of CR's family. So that was done, and after that certainly we saw how the Gurugram police arrested Kalyan Baisla from Rajasthan, and not just him, but there is a second arrest that was made in this particular case, and that was of Lavneesh Baisla, who the police have now gone on to say that he is a distant cousin of Kalyan Baisla, and he was present at that moment when this entire incident took place. What was his role in this particular case? All of that is currently under investigation. Now, we are currently, in fact, reporting outside the Gurugram court, where inside, certainly, the police is going to, produce him and then demand his custody. What we are getting to know from the police sources is that they are seeking a two-day custody, first of all, of Kalyan Baisla. Remains to be seen how many days they will be given. But apart from that, what is very, very important here, Raisha, is that police themselves have gone on to say that obscene comments were made. And that is something important, because we have since morning been telling our viewers that how Sia also in her statement had said that, indecent remarks were made at her. So police now have confirmed that, and apart from that, they have also gone on to say that there was an intent to potentially kill. So certainly a deliberate attempt of hit and run is what the police have also gone on to say in their press briefing. So these were certainly big statements that have now come in the case. Certainly big impact. Kalyan Baisla and Lavneesh Baisla both in fact have been arrested. We are waiting for them to be produced. Over to you.
0: Right. Thanks, Ishika, for sharing those crucial insights here with us. Kalyan Baisla, along with his friend, have now been taken into custody. Let's now stay on with the story and telling you more about all that has happened. Now, Kalyan Baisla, who is accused of driving the Maruti CRS that allegedly hit the biker, describes himself online as an international kabaddi player. Not just that, also a member of the Indian rugby team. He also claimed to have won the Amateur Olympia India Bodybuilding Tournament. His Instagram is now deactivated, but before it disappeared, it offered a glimpse into the image of Baisla, which he has perhaps given it online, one dominated by bodybuilding fitness and muscle flexing photographs. And next report telling you more about the Haryana goon Kalyan Baisla.
8: Kalyan Baisla, a fitness enthusiast, bodybuilder, and according to his now deactivated Instagram profile, an international kabaddi player and member of the Indian rugby team. His profile also claimed he was a winner of the Amateur Olympia India Bodybuilding Tournament. His social media presence was clear. Post after post showed Baisla working out, posing and flexing his muscles. He also had a substantial following on Instagram. And then there's the other side, devotional, local music videos. One of them titled Uttarakhand Ka Maharaja. And now, his name is at the center of a road rage case in Gurugram. A woman biker is riding with a group when a confrontation allegedly begins with the occupants of a Maruti CS. Her action camera records what happens next. She appears to be trying to get away, but the car follows. Then suddenly, the car veers right and it hits her motorcycle from the side and speeds away. The impact throws the biker onto the road. Cops identified Kalyan Baisla as a man allegedly involved in the incident. But what makes the case particularly striking is the contrast between the image Baisla projected online and the allegations now being investigated. Bureau Report, NDTV.
0: Shifting our focus to other news, two DMK leaders have now been booked by Tamil Nadu police as the political war with Chief Minister Vijay's government intensifies. Sekhar Babu has been booked over alleged objectionable remarks against Chief Minister Vijay. including his comment mocking Vijay as a chief minister who ran away. Meanwhile, DMK MP A. Raja, meanwhile, has been booked under 7 sections over alleged defamatory remarks against Minister CTR Nirmal Kumar. Raja had questioned the minister's comments on MK Stalin's MISA arrest and also made personal remarks about his parentage. The cases, they come amid escalating political attacks, with the DMK hitting back at the Vijay government. The party has defended its right to criticize the ruling party, accused the government of targeting the opposition, and slammed it over law and order as well. Take a listen to all the reactions coming in on this story.
9: ஐந்தாண்டுகள் ஒன்றிய அரசை எதிர்த்து சண்டை செய்த ஒரு மாவீரன் எங்கள் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் என்றால் அது மிகையாகாது. அன்று ஆளுநரை ஓடவிட்டார், இன்று ஓடு ஓடு என்று மேடையிலே ஓடி ஓடி காட்டிக் கொண்டிருந்த முதலமைச்சர் விஜயை அவரின் அருந்தவ புதல்வன் எங்கள் ஆருயிர் அண்ணன் வருங்கால தமிழகம் உதயநிதி அவர்கள் ஓடவிட்டார்.
10: ராகுல் காந்தி இருக்காரு, பிரியங்கா காந்தி அவையில் இருக்கு, பிஜேபி தலைவர்கள் உட்கார்ந்துருக்காங்க, அடிமட்ட ராஜ்நாத் சிங் உட்கார்ந்துருக்காரு. இவங்களுக்கெல்லாம் எமர்ஜென்சி தெரியாதான், மிசா பத்தி தெரியாதா? இப்ப ஒருத்த இவர் அதற்காக போகவில்லை, இதற்காக போகவில்லை, எனக்கு சந்தேகம் இருக்கு. நீ யாருக்கு பிறந்த When you are doubting the integrity of my leader, who is having lot of records, it is widely accepted by all leaders in India. Am I not entitled to say I am doubting your paternity? Fight against! Nonsense. இந்த தருவல கூட்டத்துக்கு ஒரு முதலமைச்சர் ஒரு தலைவர் தாரை எப்படிங்கிறது கைகால் ஆடுறதுக்கு நீ வந்த கைகால் இறந்த முதல் கொடுத்தேன் அப்புறம்
11: There are two things. One is, people are watching. I really don't have to respond to what he said because you have played the whole thing, what he said. Who is unruly? Who is a mob? Who talks like this? People are watching it. And that's the only answer. I think I don't have to be the judge for this. People are clearly saying, seeing what he has said. For those people who are not, who do not understand Tamil, he said, The several national leaders, including BJP and Congress, they have not questioned about MISA. There's a lot of record. And these people who are unlettered people in TVK are questioning this. Now I'm questioning their birth is what I think, and you need to confirm this to your audience. I think that's what I understand H. Raja has said.
12: This government is to file cases against DMK, not against any criminal. 10 people were killed. 10 people were killed in the prison. Many crimes are happening. They will not take any action against the criminals. They will choose only DMK people and file petitions.
13: But don't you think those are all defamatory remarks targeted?
12: It is not defamatory. Then if somebody is affected, they should go to court, not the government. This government is doing things only not for the people of Tamil Nadu. They are doing only for the against the DMK. The government is there only to oppose DMK, not for the people of Tamil Nadu.
0: And we have some breaking news coming in. Congress has attacked the government over the new UPI framework, arguing that allowing charges on transactions above rupees 2000 could weaken India's homegrown digital payment ecosystem and also burden ordinary people. Pawan Khera has also alleged, the Congress leader, that the move is being pursued under US pressure. BJP, meanwhile, has rejected the Congress charges as misleading, stressing that UPI payments up to rupees 2000 remain completely free, while P2P transactions continue to be free. The government has also said that consumers will not be directly charged with discussions around possible MDR focused on higher value merchant transactions. So the controversy stems after Congress says that that the Modi government, he's accused the Modi government of accusing it of quietly laying the groundwork of introducing transaction fees on UPI. But the BJP says that the Congress is now spreading fake news and that there is no transaction fee of rupees 2000 up to UPI. Take a listen to what BJP's Pradeep Bhandari has to say on this.
14: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है. कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो ये कह रही थी कि इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता. आज वही कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात उठाने का ढोंग कर रही है. सच्चाई की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की मिर्ची लगी है कि हर व्यक्ति आज यूपीआई का इस्तेमाल ग्लोबली और देश के अंदर हर भारतीय कर रहा है. कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है. किसी भी व्यक्ति को, कॉमन मैन को, कोई भी 2000 रुपए तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, किसी कस्टमर को नहीं देना होगा. 90% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई के लेस देन 2000 रुपीज में होते हैं. कांग्रेस पार्टी का विरोध ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस के पेट में दर्द ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन, इस देश के देशवासियों के विजन ने यूपीआई को ग्लोबली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नंबर वन डेस्टिनेशन और मींस बनाया है. कांग्रेस हमेशा विकास का विरोध करती है.
15: ये एक साजिश है जो होम ग्रोन हमारे डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है उसको तबाह करने की. नारा इन्होंने दिया डिजिटल इंडिया का और खुद ही इंडिया का जो डिजिटल नेटवर्क है उसको तबाह कर रहे हैं अमेरिका के दबाव में आकर. मिडिल क्लास को, ना केवल मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. 2000 से ऊपर की पेमेंट्स पे टैक्स लगेगा, चार्ज लगेगा. तो ये क्या हासिल करना चाह रहे हैं, क्यों अमेरिका के दबाव में इस तरह की ये साजिशें रचते हैं?
0: And we'll begin to a very short break, but come right back. Coming up next is NDTV World exclusive interview. Bill Gates speaks to Vishnu Som, and this is of course on the AI and how aware can people be on this. Come right back. We will be playing that interview in just 37 minutes from now.
16: रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: plot in which what we have seen, he has recorded the video as well, and post that he switched off his phone. So it's very likely that Gurugram police is going to seek 2 days of police custody, and then we will have to wait that how many police custody being granted by the judge in this, in connection with this matter.
1: All right, Akhil, thank you so much. Akhil tracking, in fact, the developments there from outside the court where Kalyan Besla and his cousin brother, because there were, it is said there were four people inside that vehicle, and the police has apprehended two of them. But remember, ladies and gentlemen, since yesterday, NDTV has been relentless in its coverage as far as this shocker from Gurugram is concerned. And a big impact now, Kalyan Besla has been arrested after more than 50 hours of being on the run and being brazen, blaming the victim in this case, the one who he tried to run over. Besla had allegedly fled the scene immediately after the road rage crash involving the biker Sia, triggering a major police hunt across multiple locations. Besla, accused in an attempt to murder case now, was brought to Gurugram. Remember, he has been apprehended from Dausa in Rajasthan. The Gurugram police went there and in fact took him in their custody. Now, visuals show that Besla with a car, with his hand bandaged, as he kneeled before the vehicle. This is the same vehicle that he used at that point of time. His entire, you know, if I may use the word hero-giri at this moment, has vanished. At that point of time, he thought that whatever he does, there will be no consequences. At this moment, he's kneeling with that bandage, around his hand. This is what the police says, that he fell and got injured when he was trying to make a run from the custody of the police, and now he's sitting there looking absolutely in remorse. But like I said, ladies and gentlemen, there is strictest punishment that needs to be meted out. The Gurugram police has added an attempt to murder charge, with the offense carrying up to 10 years in prison. Five teams were formed to track Besla while the police scanned the CCTV footage from the golf course road in Gurugram. Meanwhile, speaking exclusively to NDTV, Sia alleged her name, of course, Sia, a.k.a. Sakshi Chauhan, that Besla's arrest was delayed and accused him of being drunk, deliberately hitting her and fleeing the spot without stopping to help.
0: हमारे साथ सिया के जो वकील हैं वो मौजूद हैं. आप जो है कोर्ट के अंदर मौजूद थे, क्या कुछ जो है वो बयान दर्ज किया गया?
2: सर, मैंने बता दिया जी. 164 की स्टेटमेंट होती है, उसमें सब बता दिया गया है. और जो वीडियो में दिख रहा है, जिस तरीके से मारा है, वो अटेम्प्ट टू मर्डर के पूरे चार्जेस हैं, और चार्जेस लगा दिए हैं. 307 IPC लगाए गए, और 354, 509 और 34, और हिट एंड रन का जो बता रहे हैं वो भी उसके रैशन नेग्लिजेंस के चार्जेस हैं.
0: और इसमें सिया की तरफ से जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, उसमें सिया ने क्या कुछ कहा कोर्ट के सामने?
2: सिया ने यही बताया कि जैसे जिस तरीके से मुझे मारा, हिट किया गया है, वो कोई एक एक्सीडेंट कहीं से नहीं लग रहा, जैसे कि सब लोग पूरे हिंदुस्तान वीडियो में देख रहे हैं. कोई ऐसा हिट एंड रन वाला नहीं है, वो इंटेंशनली मारा गया, और उसमें उसको कुछ भी हो सकता था. तो शुक्र है भगवान की वो बच गई, बट कुछ भी हो सकता था.
3: क्योंकि जो है ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने जो टक्कर मारी है वो साइड से जानबूझ के मारी है, क्योंकि ऑलरेडी उनका आर्ग्यूमेंट हो चुका था. और जो पीड़ित महिला है उन्होंने भी अपने कथन में यही अंकित करवाया है कि उन्होंने जान से मारने की नीयत की.
4: उनकी कंप्लेंट जो है वो तो फ्लैट थी, उसमें इस तरीके की बात नहीं लिखी गई थी.
3: नहीं, पुलिस ने ये जो वीडियो का विश्लेषण किया है उसके आधार पर ये धारा लगाई. विक्टिम ने ये बोला है कि उसने कुछ कमेंट पास किया है जब वो साइड में गाड़ी चला रहे थे, तो उसके आधार पर जो हमने इसमें 78 और 79 BNS भी इजाद की है इसमें. और अभी विक्टिम के बयान जो है वो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं, और जो 164 की स्टेटमेंट के लिए माननीय अदालत के सामने उनको पेश किया जा रहा है. दिनांक 14/9/26 को कल एक महिला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो वायरल किया था, साइड से टक्कर मारता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें उस महिला को गिरता हुआ दिखाया जा रहा है, और वो जो बाइक पे लगा हुआ कैमरा है उससे रिकॉर्डिंग हुई है. तो उस संबंध में जैसे ही वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया, तो पुलिस ने उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया, और उसके बाद उसकी.
1: Now, Kalyan Besla, ladies and gentlemen, everybody now knows his face, knows his name. He's accused of driving that Maruti CIS car, which he had borrowed from a friend who is in the Indian Army posted in Assam. He then goes on to hit this biker, a group of bikers, and he, in fact, zeroes down on a woman That is

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: हेलो एंड वेलकम टू एप्पल पार्क। आई एम सो थ्रिल्ड टू बी हियर टुडे। एवरीडे पीपल अराउंड द वर्ल्ड रिलाई ऑन आवर प्रोडक्ट।
2: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly.

0: Of course, is how these creams are coming into the Indian market, and of course, the question also which comes is that did Pakistan-made creams have import registration certificates? All these questions at this moment, but an important story being broken here. And please welcome NDTV's new health editor Sneha Murdani is joining us at this moment with this exclusive breaking story on Nationwide. Sneha, alarming situation. Anyway, we have seen the fascination for white skin, for skin brightening, whitening creams, and with the entry of these creams which could be spurious, we don't know what the contents are. This is a very dangerous trend.
1: Well, absolutely, Ankit. You know, this has got mercury, as simple as that. You know, it's got mercury, this mercury contamination, something that the Maharashtra FDA found in the month of July when 18 women in Nagpur went to the doctors and said, we have these ailments. It was found that they have got kidney ailments. Immediately, the Maharashtra FDA banned this cream. So the Drugs Controller General of India has clearly said that this is made in Pakistan. The two creams we put out for our viewers, one's called Chani, the other one's called Gori. It's been red flagged. The big question the government is asking, how at the end of the day have they entered the Indian market, is what the drugs controller is asking. Basically saying that they don't have the required licenses, plus they have mercury, they're threatening the lives of so many people. It causes irreparable damage of the concerns that have been raised. We have several problems relating to many other cosmetics, but the shocking fact about this
0: is
1: it's straight from Pakistan, found its way in the Indian market and harmed 18 people. Now, mind you, these are 18 people who've come on the record to say that they've got kidney ailments.
0: Yes.
1: There could be many more at the end of the day.
0: And there could be, in fact, other side effects as well. And this is something that is very alarming. The government red flagging these creams. And now, of course, a bigger inquiry on how they have entered Indian market. Thank you so much, Sneha, for joining us with all those very important details. Sneha making her debut here on Nationwide at 6 with this exclusive story. All right, let's get you some big political breaking from Chandigarh, where the Congress party has upped the ante against the Aam Aadmi Party government in Punjab, led by the new Congress General Secretary in charge of Punjab. It is important to note that Sachin Pilot got both the warring factions of the Congress party together in this protest, which took place in Chandigarh, right outside the residence of Harpal Singh Cheema, the finance minister of Punjab. Remember, there was a suicide case which was in the news in the last few days. Gulzar Singh, a resident who had blamed Harpal Singh Cheema and few others, which the harassment drove him to suicide. And now, Congress party fighting for justice, that is the slogan that they gave, justice for Gulzar Singh Cheema. There was water cannon use. It is said that some of the Congress leaders were injured. Sachin Pilot was detained by the police as the Congress party takes the battle right at the doorstep of Punjab Minister Harpal Singh Cheema. Let's listen in to what Sachin Pilot said on that.
2: अगर किसी सरकार को या किसी मुख्यमंत्री को ये गलत फहमी है कि पानी की बौछारों से या पुलिस की लाठी से ये पंजाब के लोगों को या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबा सकते हैं तो मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूँ इस गलत फहमी को दूर कर दें. बात बड़ी स्पष्ट है. कुछ दिन पहले गुलजार सिंह जी ने अपनी आत्महत्या करी. बड़ा दुख हम सबको लगा. एक गरीब दलित मजदूर किन कारणों से करी वो कारण जांच के बाद सामने आते. लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक डाइंग डिक्लेरेशन में यहाँ के वित्त मंत्री का नाम लिया.
3: बुरछागर्दी, धक्काशाही, गैंगस्टरवाद, लूट खो, कत्लोगार्त का माहौल है. इसको खत्म करने के लिए कांग्रेस सड़कों पे है. हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और इनको भगाकर हटेंगे.
4: इस्तीफा हम करवाएंगे सड़क पर उतर के. इस्तीफा होगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कचहरियों से. इसका इस्तीफा भी होगा, गिरफ्तारी भी होगी, अंदर भी जाएगा. संगरूर से तो कल ही आए हैं पंजाब. यहाँ चंडीगढ़ भी आने दो ना. ये हमारा कैपिटल है और वो जो भगवंत मान है शराबी कुवाबी वो तो चंडीगढ़ में है. उसके कान कौन खोलेगा? उसकी आंखों में गिद्ध आ चुकी है. वो साफ कौन करेगा? आप मुझे बताओ. तो इसलिए हम इधर आए.
0: All right, let me bring in a reaction now, in fact, to what the Congress charges have been. We are being joined by Baltej Singh Pannu from the Aam Aadmi Party. Thank you so much, Mr. Pannu, for speaking to us. You know, the Congress party, so far the Aam Aadmi Party was quite relaxed in Punjab that there is war going on as far as the Congress party is concerned. Sachin Pilot has got all the factions of the Congress party together and they have taken the fight right outside the doorsteps of Mr. Cheema.
5: देखिए ऐसे है आम आदमी पार्टी को कोई फर्क इसके साथ नहीं पड़ेगा सचिन पायलट के आने से कांग्रेस पंजाब में जो इसके 12 के करीब सीएम के मांझी हैं उन्होंने नाव डुबो दी है अब डूबती ही नाव को बचाने के लिए पायलट लाया गया है डूब नाव रही है लेकिन लाया पायलट गया है हमारा क्वेश्चन ये है कि पहले कांग्रेस ये बताए कि हजारों सिखों के खून के साथ उसके हाथ रंगे हुए हैं आज भी कांग्रेस के लिए सज्जन कुमार और कमलनाथ आइडियल क्यों है
0: सर सर लेकिन इस वक्त सवाल कमलनाथ और सज्जन कुमार पर नहीं है सवाल है चीमा साहब के ऊपर सीधा सा एक सवाल है कि भाई अगर किसी ने डाइंग डिक्लेरेशन में उनका नाम लिया है तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट जांच तो होनी चाहिए बिना जांच के आप लोगों ने अपने अपने वित्त मंत्री को क्लीन चिट भी दे दिया है
5: देखिए उसके लिए दो वीडियोस हैं पहली जो वीडियो है उसमें चीमा साहब का नाम नहीं है 1984 में जो दिल्ली में हुआ जो सिख कत्लेआम हुआ वो कभी भी पुराना नहीं हो सकता ये नहीं कह सकते आप कि वो पुरानी
0: सर,
5: बात है
0: सर आप जरूर पीछे लेके जाना चाहेंगे हम अभी इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो इस अभी का मुद्दा है हम उस पर बात करते हैं आपको सूट नहीं करता इसलिए आप 1984 पे लेके जाना चाहते हैं अगर डाइंग डिक्लेरेशन से पहले जो दूसरा वीडियो है दो वीडियो हैं, तीन हैं, कोई भी वीडियो है लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है कि क्या एक इंडिपेंडेंट जांच नहीं होनी चाहिए लोगों को कैसे भरोसा होगा उन वीडियोस के ऊपर कि वो सही है या गलत है अगर जांच नहीं होगी
5: सर एसआईटी बना दी गई है एडीजीपी की अध्यक्षता में तो उनके पास ये सभी कुछ जाएगा ये वीडियो कहां से बनी है कौन से फोन से बनी है उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए ना कि किसने बनाई है क्या फोर्स करके तो नहीं बनवाई गई ये एसआईटी जांच करेगी जांच हो जाने दीजिए फिर जो भी इसमें
0: तो एसआईटी अगर तो एसआईटी सिर्फ यही जांच करेगी कि वीडियो में चीमा साहब का नाम क्यों आ गया या एसआईटी ये भी जांच करेगी कि अगर उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन में नाम लिया है तो चीमा साहब को बुला के कम से कम उनसे सवाल तो किए जाए एसआईटी ने स्टेटमेंट ले लिया है चीमा साहब का
5: सर ऐसा है अगर कोई वीडियो ऑडियो सामने आती है तो उसके लिए सबसे पहले तो वो गैजेट होता है ना कि वो कहां से बनी है तो एसआईटी इसकी जांच करेगी इतनी ज्यादा तेज क्यों चल रही है कांग्रेस जांच हो जाने दीजिए
0: okay.
5: कांग्रेस भी
0: okay.
5: अपना बयान दे दीजिए
0: अर्शदीप अर्शप्रीत खरियाल इज ऑल्सो ज्वाइनिंग मी फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी अर्शप्रीत आम आदमी पार्टी सेइंग कि आप लोगों के इतने खुद के फैक्शंस हैं कि पायलट साहब आके आपको बचा नहीं पाएंगे और बिना इन्वेस्टिगेशन एसआईटी बना दी है जांच हो रही है तो इतनी जल्दी में क्यों है कांग्रेस पार्टी
6: जी यू प्रेफर मैं हिंदी में जवाब दूं अंग्रेजी में दूं जी
0: आई मीन आई विल प्रेफर इफ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज़ यू नो आवर व्यूअर्स आर ऑफ इंग्लिश ऑन एनडीटीवी
6: जी सो आई विल स्पीक इन इंग्लिश फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द आम आदमी पार्टी इज बेविल्डर्ड दे आर नर्वस दे आर एंग्शियस It was Sachin Pilot ji's first visit as the AICC in charge of the Punjab Congress unit. And you see how bewildered the Aam Aadmi Party has gotten. I would just say one thing in Hindi, ye dabav, ye dabdaba aapke dilo dimag pe bana rehna chahiye. Number two, my request to the Aam Aadmi Party is that instead of answering, you try to dodge, divert and deflect. The protest was about Gulzar ji. Gulzar ji was a Dalit and he had raised a question
0: okay.
6: to the finance minister about his son who was affected due to the drug menace. Now what was done? He was humiliated, he was thrown out of the program and after that he was harassed, he was tortured and there was an abetment done because of which he committed suicide. And after that there was a dying declaration
0: okay.
6: in which he categorically said that the person responsible for my death is Mr. Harpal Cheema. Who's the finance minister of Punjab? Now, my request to the Aam Aadmi Party is after that, his son has also said it that Harpal Cheema ought to be acted against.
0: Okay.
6: He should be taken to task. The reason being, the cremation was done.
0: Okay. Gentlemen, I will have to leave it there. That's all the time that I have on this breaking story. But this is, remember, now the politics and every issue that you would see in Punjab is going to heat up. Elections are around the corner. The Aam Aadmi Party government there facing the challenge from the Congress Party, which is trying to get its act together with the warring factions and picking up issues.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
6: देश का टायर जेके टायर।
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: थैंक यू।
1: मेरा बस एक ही क्वेश्चन रहता है कि ये इस इनोवेशन पे कितने सालों से काम कर रहे हैं?
0: चार साल से।
1: चार साल से सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या थी? लेट्स पुट दिस।
0: हां, सो स्ट्रगल ये थी कि मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो मेरा बच्चा 4 महीने का था। कोविड के टाइम पे मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। डॉक्टर ने बोला जेनेटिक टेस्ट करना है। आई वॉज इन उत्तराखंड तो मुझे दिल्ली आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे तो जेनेटिक टेस्ट नहीं होता। मैं PhD भी कर रही थी और फॉर्चुनेटली मैं PhD ही जीनोमिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कर रही थी। ठीक है, तो जब मैं आई फिर मैंने डिसाइड किया, जब मेरा टेस्ट हुआ तो 30-40 दिन वो रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी। एक तो कोविड था, सेकेंड वेव थी, डेथ्स हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे डर लग रहा था कि अगर मेरी रिपोर्ट्स अगर पॉजिटिव आ गई तो क्या होगा। तो उस टाइम PhD का काम तो हो ही गया था क्योंकि मैंने 3.5 साल में अपना PhD का काम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद उस 40 दिन के अंदर मैंने इतना जेनेटिक्स रेयर डिजीजेस के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि अब मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। लेकिन उस जब होता है ना कि आप जब बताओ फैमिली को, उनको होता है कि इतना छोटा बच्चा है, 4 महीने का है, ब्रेस्ट फीड पे है, तुम क्या राहिला, यू आर ओवर एम्बिशियस। सो ये सारी चीज़ें रही, बट मेरे हस्बैंड सपोर्टिंग थे। उन्होंने कहा देखो आप एक बच्चे के लिए सोल्यूशन नहीं बना रहे हो, करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, आई विल सपोर्ट यू। जबकि PhD के बाद मुझे पोस्ट डॉक स्टैनफोर्ड से आया, एक जॉब भी दी काफ़ी अच्छी US में, बट आई डिसाइडेड आई विल बी देयर। मेरा मानना ये, देखिए ऐसी चीज़ बनाइए कि स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड वाले आपको खुद बनाए, ना कि मुझे जाना पड़े। सो मेरा मिशन है कि मैं इसको सॉल्व करूँ।
1: इतना कुछ सहन किया आपने, उसके लिए आप इस मंच पर खड़ी हैं। ओके, सो फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट एंड विद अ स्माइल, आपकी पिच रेडी है?
0: या
2: बिफोर शी स्टार्ट्स कैन आई गिव हर अ हग?
0: या
2: आई एम सो इंस्पायर्ड बाय योर पैशन।
0: थैंक यू,
2: गुड लक,
0: डू वेल।
1: आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।
0: नमस्ते, क्या आप ये बच्ची देख रहे हैं? ये बचपन से स्माइल नहीं करती थी, चलते चलते गिर जाती थी, पैरों में दर्द की कंप्लेन करती थी। आज 4 से 5 साल बाद मल्टीपल मिस डायग्नोसिस होने के बाद इसके पेरेंट्स को पता लगता है कि इसको एक डेडली जेनेटिक डिजीज है। बात यहाँ नहीं रुकती, डॉक्टर से आंसर मिलता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है और इसकी लाइफ सिर्फ 3 से 4 साल और बची है। वर्ल्ड में ऐसे 35 करोड़ लोग हैं जो ऐसी बीमारियों के साथ अफेक्टेड हैं, और इंडिया में आप गेस करिए कितना है? 10 करोड़ लोग हैं जो कि अफेक्टेड है, और ज्यादा दुख की बात तो यह है कि 7 करोड़ सिर्फ बच्चे हैं। मेरी PhD खत्म होने के बाद स्टैनफोर्ड में ना जाके मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे इन पेशेंट्स और फैमिलीज को आंसर्स प्रोवाइड करना है थ्रू अ सॉल्यूशन दैट कैन एक्सेलरेट द डायग्नोसिस एंड ड्रग डिस्कवरी एज वेल। ऐसे स्टार्ट हुई वी जीनोमिक्स की। अप्रैल 2022 में मैंने वी जीनोमिक्स स्टार्ट किया। इसमें मेरे साथ पार्टनर किया डॉक्टर प्रीति गुप्ता लाल, जो कि US से हैं, एंड शी वर्क्ड इन फार्मा इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 35 years एंड को ओन 150 US पेटेंट। सो वी बोथ जॉइन टुगेदर एंड स्टार्टेड दिस कंपनी वी जीनोमिक्स। हमारा मिशन है इस बच्चों और फैमिलीज को आंसर्स प्रोवाइड करना ताकि इनको फास्टर डायग्नोसिस और इवेंचुअली फास्टर ड्रग्स डेवलप हो सके।
3: मेरा नाम है समीर, को-फाउंडर ऑफ वी जीनोमिक्स। मैं आता हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कॉमर्स बैकग्राउंड। तो जब मैं डॉक्टर राहिला और डॉक्टर प्रीति से मिला तब आई रियलाइज दैट दिस इज द टीम वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट एंड वी कैन मेक इट अ ग्लोबल स्टेज कंपनी। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जेनेटिक टेस्टिंग बढ़ रही है, राइट? हम उसको कैंसर में देखते हैं, रेयर जेनेटिक डिजीजेज में देखते हैं, IVF में देखते हैं। आज लैब्स और हॉस्पिटल बहुत सारी करोड़ों स्पेंड करके मशीन्स खरीद रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक जेनेटिक टेस्ट में 8 से 80 GB डेटा जनरेट होता है, और उससे अगर आपको एक रिपोर्ट बनानी है उसका मतलब है कि जैसे ये यहाँ भूसा रखा है उससे आपको ये निडल ढूंढ के निकालनी, राइट? इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये सारा प्रोसेस स्लो है, मैनुअल है और फॉरेन सॉफ्टवेयर्स पर डिपेंडेंट है। और इसी के सॉल्यूशन के लिए हमने बनाया देश का अपना Vision 23। Vision 23 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी मशीन से DNA डेटा एक्सेप्ट करता है, उसको कोरिलेट करता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बिल्ड करके ये सारा काम केवल आधे घंटे में कर देता है। हमने 3 साल पहले 3.15 करोड़ रेस किए, 13 लोगों की टीम बिल्ड की और पूरी R&D करके ये सॉल्यूशन इसी साल लॉन्च किया। केवल 4 महीनों में आज हमारे पास 80 से ज़्यादा B2B यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे हैं।

0: आप जानते हैं कि अगर आप टॉप 5 विनर्स में आए तो हम आपसे फिनाले एपिसोड में वापस मिलेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग एंड यू कैन गो एंड सेलिब्रेट.
1: थैंक यू.
0: कोर्स प्लीज. तो हमारे जो अगले इनोवेटर आ रहे हैं ना, उनका जो इनोवेशन है वो काफी भारी भरकम है. तो प्लीज वेलकम केरला से ऑटोजेन बॉट के इनोवेटर विपिन केवी.

0: Costi.
1: आज वंदे भारतम के मंच पर आए कुछ यंग माइंड्स और बोल्ड आइडियाज जो रखते हैं भारत के फ्यूचर को बदलने का जज्बा। जयपुर से मैफकिन रोबोटिक्स,
2: आज भी इंडिया में चिप इंस्पेक्शन और क्लीनिंग का काम डाइवर असिस्टेड टूल्स द्वारा किया जाता है। हम इस पूरे प्रोसेस को चेंज करना है। हम बना रहे हैं नोहा और अंगद, हमारी ऑटोनोमस रोबोटिक फ्लीट।
1: संभाजी नगर से माई पेरो,
3: आपके सबसे प्यारा दोस्त, आपका वफादार डॉग अगर बीमार हो तो चुपचाप कोने में बैठ जाता है। माई पेरो एक स्मार्ट कॉलर जो टेम्परेचर, हार्ट रेट कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है और सिम्टम्स अपीयर होने से पहले ही ओनर को अलर्ट करता है।
1: जयपुर से रीग्रिप इंडिया,
4: टायर एक कचरा नहीं है, इट्स अ वैल्यूएबल रिसोर्स। कलेक्शन से लेके एक टायर का रिसाइकलिंग तक पूरी जर्नी हमने एक 360 डिग्री प्लेटफॉर्म के अंदर इंटीग्रेट करी है।
1: इरोड से हाथों रॉकेट्स,
5: टुडे कंपनी स्पेंड मोर देन 7 प्लस इयर्स बर्निंग हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स टू अटेम्प्ट देयर फर्स्ट ऑर्बिटल लॉन्च अटेम्प्ट। वी आर सॉल्विंग दिस एट हाथों रॉकेट्स। वी आर बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड रॉकेट इंजन फॉर लॉन्च व्हीकल्स, in-space mobility applications and strategic defense applications.
1: जिनके हाई परफॉर्मेंस लिक्विड रॉकेट इंजन ने किया मेंटोस को इंप्रेस और उन्हें मिले सृष्टि अदानी से वंदे विंग्स।
6: अब आप हमारे इनोवेटर्स के फुल पिचेस हमारे अनप्लग्ड एपिसोड्स में देख सकते हैं।
7: आज ये सिर्फ स्टार्टअप इनोवेटर है, लेकिन कल इनमें से कुछ बिजनेस टाइकून्स होंगे, कुछ इंडस्ट्री लीडर्स और कुछ ऐसे चेंज मेकर्स जो लाखों जिंदगियों की दिशा बदल देंगे। आज वंदे भारतम के इस कारवां से आप भी जुड़ गए हैं। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट @vandebharatam.org।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
6: देश का टायर जेके टायर।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी।

0: ऑफ सीट्स दैट इट एंटिसिपेट्स, इट डज नॉट से दैट ज्ञानेश कुमार चोर है, वोट चोरी हुई है। हम रोना धोना नहीं करते नाराज फूफा की तरह, हम कहते हैं हमसे शायद गलती हुई है, हम उस गलती को दोहराएंगे नहीं। कांग्रेस क्या कहती है, अरे हमारी तो गलती नहीं हुई, सारा का सारा खेल तो ज्ञानेश कुमार ने बिगाड़ दिया। सो इफ देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू
1: वर्क, बताइए आशुतोष जी, बिकॉज़ दिस नो रोना धोना, योर एडवाइस विल बी टेकन ड्यूरिंग द इंट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट योर लाउंज एक्सेस आल्सो। बट इन द एंड बीजेपी मैनेज्ड टू कम आउट ऑन टॉप इन द एंड, तो अंत भला तो हो भला। बाकीपुर इनकी सीट थी, बाकीपुर वॉज अ बीजेपी सीट, दतिया वॉज अ कांग्रेस सीट।
2: एज अ सेफोलॉजिस्ट इफ आई लुक एट द नंबर्स, 5-4-1 means 5 independents, 4 BJP, 1 Congress. Now, this 5 add with 1 is 6. Now, the BJP has a Herculean task to turn this 6-4 to 4-6. Can they do it? And this happened in the 2.5 years of the BJP being in the government. Normally, the incumbent has an added advantage in the local bodies election. This is the unset rule across India. Now, if you are losing there, that means you have to seriously think about your leadership in Rajasthan. Otherwise, the 2028 December will have a different numbers altogether. Very simple.
0: Can I come in, Parbhaja?
1: Sanju Verma.
0: Very quickly.
1: Yes.
0: Parbhaja, we are all aware that the big election in 2027 is Uttar Pradesh. Aur aaphi ke show pe maine kuch hafte pehle kaha tha. Do you remember, Ashutosh, the Kundar ki bipole of Uttar Pradesh held in 2024? Muslim majority area of 62%. बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर हैड अ विक्ट्री मार्जिन ऑफ 1 लाख वोट्स प्लस एंड ही डिफीटेड समाजवादी पार्टी मोहम्मद रिजवान। कुंडर की ऐसी सीट है जहां या तो समाजवादी पार्टी जीतती थी या बीएसपी, एंड बीजेपी हैज बीन एबल टू स्टॉर्म इनटू अ समाजवादी पार्टी बैस्टियन। एंड आई रिमेम्बर यू वर देयर ऑन द डिबेट विथ मी एंड यू सेड एक कुंडर की जीत ली, इससे क्या होगा, मुसलमानों का थिंकिंग प्रोसेस बदलेगा थोड़ी। 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही अपीज।
1: क्विक रिबटल आशुतोष, क्विक रिबटल।
2: आई जस्ट वांट टू रिमाइंड संजू दैट
1: संजू वर्मा यू स्टॉर्म्ड इनटू यस यस
2: आई थिंक संजू आई वांट टू रिमाइंड संजू वर्मा दैट इन 2024 द पार्लियामेंट इलेक्शन डिड हैपन इन यूपी, द रिजल्ट्स डिड कम इन यूपी एंड द बीजेपी वाज 36 एंड द इंडिया गठबंधन वाज 44। इफ दे वांट टू लिव इन डिल्यूजनल वर्ल्ड प्लीज गो अहेड, लिव देयर, एंजॉय।
0: You said BJP will never win Maharashtra Vidhan Sabha elections, Ashutosh. BJP won Maharashtra with a strike rate of 91%. Do you remember I was there on a debate with you? And you
1: okay.
0: said Maharashtra to Fadnavis kabhi jeet hi nahi payenge.
2: I just want to remind you about the UP election in 2024 parliamentary elections.
0: Aap Maharashtra ki baat kariye.
1: Okay, now Ashutosh is just having fun. But like Sanju Verma said, every election is a learning. They are going to go back to the drawing board. They are going to, of course, also contemplate what happened with the advice and the well wishes of people like Ashutosh ji. You are going to take all their suggestions and dwell upon that. For the time being, though, thank you very much, Sanju Verma, Ashutosh, for having joined us. And remember, when it's about a big story, when you really want to understand the nuances, the buck stops here. Thanks for watching.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: no matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
2: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
3: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
4: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
5: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
6: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
7: Gold rush on the field.
8: India's champions are ready.
7: The battles and the breakthroughs from the arena to the podium.
8: Asian Games 2026.
7: Go for glory only on NDTV.
9: Towards Kathmandu, there's a helicopter right there.
10: Trishuli Nadi ka ye wo ilaka hai.
11: In Nepal's darkest hour, being there mattered.
12: बाकी जो लोग इस वक्त मिसिंग हैं उनके बारे में आपके क्या जानते हैं?
11: At any cost, across

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: तो जैसे मेरा वीडियो में था एज इट इज सेम हुआ था, कोई उसमें कोई भी ऐसे कुछ अलग नहीं हुआ। वो गाड़ी मेरे साइड में आई, वो मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसमें गाड़ी में 4 लोग थे और दिख रहा था उन लोगों ने दारू वारू पी रखी है कुछ। तो उस चीज से मैं और ज्यादा डर जाती हूँ और वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी मेरे बाइक के पास लाते हैं। मैं उनको बोलती हूँ आप दूर हो जाइए। तो इसी रीजन से मैं थोड़ा अपना बाइक आगे बढ़ाती हूँ कि भाई वो मुझे हिट ना करे। पर जहां मेरी बाइक स्लो होती है वो पीछे से इतनी तेज अपनी गाड़ी लेके आते हैं और इंटेंशनली मुझे हिट करते हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश करते हैं और फिर वो वहां से मार के भी भाग जाते हैं।
1: जब जब वो कोलिजन हुआ था आसिया, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोग ये कर सकते हैं? आपके पीछे था ये गाड़ी, आपने आपने कुछ शब्द बोले थे, उन्होंने भी धमकी दिया आपको, उसके बाद क्या आपने एक्सपेक्ट किया कि ऐसे हो सकता है कि आपको आके डैश करेंगे ऐसे?
0: नहीं, देखिए जब हेलमेट होता है, हेलमेट में हम कुछ बोलते हैं तो आवाज वो सुनाई नहीं दे पाएगी उनको। पर मैं उनके एक्शन समझ रही थी, तब भी मैंने अपने हाथ से एक्शन करा और जिस तरीके से उनका बिहेवियर लग रहा था तो इसी वजह से मैं डर रही थी। एंड वही चीज हुआ कि जिस चीज का मुझे डर था उन्होंने पीछे से आके मुझे ठोका और मुझे सड़क पे गिरा के वो भाग गए।
1: वो 1-2 सेकंड में वो आके आपको डैश किया सिया, वो पूरा वीडियो आपके मोटरसाइकिल के कैमरा पे बिल्कुल क्लियरली कैप्चर हुआ है। उस मोमेंट को डिस्क्राइब करिए, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड बाइकर हैं, आप लगातार बाइकिंग जर्नी पर हैं। जब वो कोलिजन हुआ था, जब उन्होंने आपको आके डैश किया, आपके मन में क्या हुआ, कैसे आपने महसूस किया?
0: बस जब उन्होंने मुझे मारा मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया एंड मैं एकदम ब्लैंक हो गई। आई वाज शॉक्ड एंड ट्रॉमाटाइज्ड एंड उसके बाद मैं कुछ नहीं सोच पाई।
1: What happened immediately after that, सिया जी? What happened immediately after that? After you fell from the bike? गिरने के बाद इमीडिएटली क्या हुआ था?
0: बेसिकली उसके बाद कुछ नहीं, कुछ लोग आए, उन्होंने वो मुझे उठा के लेके गए एंड मेडिकल केयर मैंने थोड़ा करा, उसके बाद फिर मैं अपने घर वापस आई।
1: और ये कल्याण बैसला जो है सिया, 2 दिन के बाद डिटेन हुआ है, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? तो 2 दिन के बाद,
0: तो
1: 2 दिन
0: काफी लेट एक्शन हुआ है, एक्शन काफी जल्दी होना चाहिए था, डिटेल सबके पास थी तो हाँ ये एक्शन काफी लेट हुआ है, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था।
1: सिया, आपने बताया कि आप मेंटली भी बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं, क्या इसके बारे में बताएंगे कि आप किस लिए ट्रॉमेटाइज्ड हैं, क्यों ट्रॉमेटाइज्ड हैं, ये जानना चाहेंगे हम।
0: देखो ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो सिर्फ मैं नहीं, कोई भी लेडी बाइकर, कोई भी महिला ट्रॉमेटाइज हो सकती है या कोई भी मेल बाइकर, कोई भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये चीज बैक ऑफ द माइंड हमेशा मेरे चलेगी।
1: और ये क्या एक जेंडर इशू है मैडम? गाड़ी में जब लोग जा रहे हैं, वो अल्कोहल पी रखी है, जब वो देखते हैं कि एक लड़की बाइक चला रही है स्पीड से, ये एक जेंडर इशू भी है, मेल ईगो भी है इसमें?
0: ये मेल ईगो भी है एंड ये जेंडर इशू भी है। लोग लेडी बाइकर को देख के बहुत चेज करते हैं और उनको छेड़ने की भी कोशिश करते हैं। सो ये एक इंसिडेंट था जो मेरा वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, आई होप आप सबने भी देखा।
1: यू हर्ड what she has said. She said it's going to take a while for her to get back on her bike and continue her biking journey. She's a passionate biker. She has injuries, and very important to hear what she said, that she's got physical injuries, she's not so worried about them. It is the trauma of what happened that is going to stay with her, and it may take some time for her to get back on her bike. That is the impact of what has happened. And Bill Gates, the man who helped shape the tech revolution, is now warning that AI may be moving simply too fast, even for humanity to control. In an exclusive conversation with NDTV's Vishnu Shom, Bill Gates has sounded the alarm on frontier AI, cyber threats, and a future we may not be ready for. This is by far the biggest and most high-level interview on the AI global alarm that anyone has ever got. We play that full interview coming up at 10 tonight, but here's a quick glimpse of what Bill Gates has said exclusively to NDTV.
2: If we could slow things down, I think we should consider that, because

0: case. This is a case relating to sexual abuse of a child in a daycare center in Bengaluru. The summons have been issued, and we learned that the NCPCR has summoned the vice president of the specific daycare center, and the vice president of this daycare will have to appear in front of the NCPCR tomorrow, that is September of 16th at 4 p.m. It has been 2 days since this video from Gurugram that we are just going to show you in some moments from now had shocked the nation. Remember, on the wide sprawling stretch of the city's golf course road in Gurugram, a white sedan had deliberately, sharply turned to a biker, ramming straight into Sia Chauhan, a young woman on an Aprilia RS457 sports bike for over 50 hours. That man behind the wheel, his name was Kalyan Besla, was on the run. And 50 hours of evading the law and hiding out until police finally tracked him down over 200 kilometers away in Dausa in Rajasthan. His cousin has also been detained alongside, and the entitlement did not just stop the arrest. Even in police custody on Tuesday, Besla reportedly asked permission to step out to urinate, we learn, and then tried to flee again. He showed no remorse, just a desperate, continuous scramble to dodge accountability. And before the man could even be put in handcuffs a day earlier, his lawyer went on record claiming that it was Sia, the victim, the biker, who had provoked the accused. This was all just a stunt for Instagram views and social media followers, is what the accused lawyer had to say. And today, Sia Chauhan spoke to NDTV. Her words were, and I will quote her here, "I'll make sure nobody harasses a woman biker ever again."
1: क्योंकि जो है ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने जो टक्कर मारी है वो साइड से जानबूझ के मारी है, क्योंकि ऑलरेडी उनका आर्ग्यूमेंट हो चुका था और जो पीड़ित महिला है उन्होंने भी अपने कथन में यही अंकित करवाया है कि उन्होंने जान से मारने की नीयत की।
2: उनकी कंप्लेंट जो है वो तो बुकार फ्लैट की, उसमें इस तरीके की बात नहीं लिखी गई थी।
1: नहीं, पुलिस ने ये जो वीडियो का विश्लेषण किया है उसके आधार पर ये धारा लगाई। विक्टिम ने ये बोला है कि उसने कुछ कमेंट पास किया है जब वो साइड में गाड़ी चला रहे थे, तो उसके आधार पर जो हमने इसमें 78 और 79 BNSB इजाद की है इसमें, और अभी विक्टिम के बयान जो है वो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं, और जो 164 की स्टेटमेंट के लिए माननीय अदालत के सामने उनको पेश किया जा रहा है। दिनांक 14/9/26 को कल एक महिला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो वायरल किया था, साइड से टक्कर मारता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें उस महिला के को गिरता हुआ दिखाया जा रहा है, और वो जो बाइक पे लगा हुआ कैमरा है उससे रिकॉर्डिंग हुई है। तो उस संबंध में जैसे ही वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया, और उसके बाद उसकी आरोपी की जो थोड़ी सी एक फ़ोटो आई हुई थी उसके आधार पे उसकी सर्च की गई, और सर्च करके पता लगा कि वो पलवल का एक व्यक्ति है, जिसको कि फिर पुलिस की अलग अलग टीमें, तीन टीमें गठित की गई इसमें, और तीनों टीमों ने इस पर रात भर कार्य किया, और उसको आज दौसा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था जो घटना के दौरान उसके साथ ही मौजूद था।
0: Shifting our focus to stories that are making headlines in the down south, two DMK leaders have been booked by the Tamil Nadu police as the political war with Chief Minister Vijay's government intensifies. Sekhar Babu has been booked over alleged objectionable remarks against Chief Minister Vijay, including his comment mocking Vijay as a chief minister who ran away. DMK MP A. Raja, meanwhile, has been booked under 7 sections over alleged defamatory remarks against Minister CTR Nirmal Kumar. Raja had questioned the minister's comments on MK Stalin's MISA arrest and made personal remarks about his parentage. Now, the cases come amid escalating political attacks with the DMK hitting back at the Vijay government. The party defended its right to criticize the ruling party, accused the government of targeting the opposition, and slammed it over law and order. Here are some political reactions that we're talking on the story.
3: ஐந்து ஆண்டுகள் ஒன்றிய அரசை எதிர்த்து சண்டை செய்த ஒரு மாவீரன் எங்கள் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் என்றால் அது மிகையாகாது. அன்று ஆளுநரை ஓடவிட்டார், இன்று ஓடு ஓடு என்று மேடையிலே ஓடி ஓடி காட்டிக் கொண்டிருந்த முதலமைச்சர் விஜயை

0: बस जब उन्होंने मुझे मारा मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया एंड मैं एकदम ब्लैंक हो गई. आई वॉज शॉक्ड एंड ट्रॉमाटाइज्ड एंड उसके बाद मैं कुछ नहीं सोच पाई. अच्छा
1: What happened immediately after that, Sia ji? What happened immediately after that? After you fell from the bike? गिरने के बाद immediately क्या हुआ था?
0: Basically उसके बाद कुछ नहीं, कुछ लोग आए, उन्होंने वो मुझे उठा के लेके गए एंड मेडिकल केयर मैंने थोड़ा करा, उसके बाद फिर मैं अपने घर वापस
1: आई. और ये कल्याण बैसला जो है सिया, दो दिन के बाद डिटेन हुआ है, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? दो दिन के बाद, दो दिन
0: काफी लेट एक्शन हुआ है, एक्शन काफी जल्दी होना चाहिए था, डिटेल सबके पास थी, तो हाँ ये एक्शन काफी लेट हुआ है, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था.
1: सिया आपने बताया कि आपकी आप मेंटली भी बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं, क्या इसके बारे में बताएंगे कि आप किस लिए ट्रॉमेटाइज्ड हैं, क्यों ट्रॉमेटाइज्ड हैं, ये जानना चाहेंगे हम.
0: कि देखो ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो सिर्फ मैं नहीं, कोई भी लेडी बाइकर, कोई भी महिला ट्रॉमेटाइज हो सकती है या कोई भी मेल बाइकर, कोई भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये चीज बैक ऑफ द माइंड हमेशा मेरे चलेगी.
1: और ये क्या एक जेंडर इशू है मैडम? गाड़ी में जब लोग जा रहे हैं वो अल्कोहल पी रखी है, जब वो देखते हैं कि एक लड़की बाइक चला रही है स्पीड से, ये एक जेंडर इशू भी है, मेल ईगो भी है इसमें?
0: ये मेल ईगो भी है एंड ये जेंडर इशू भी है. लोग लेडी बाइकर को देख के बहुत चेज करते हैं और उनको छेड़ने की भी कोशिश करते हैं. सो ये एक इंसिडेंट था जो मेरा वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, आई होप आप सबने भी देखा.
1: यू हर्ड What she has said, she said it's going to take a while for her to get back on her bike and continue her biking journey. She's a passionate biker. She has injuries and very important to hear what she said, that she's got physical injuries. She's not so worried about them. It is the trauma of what happened that is going to stay with her and it may take some time for her to get back on her bike. That is the impact of what has happened. And Bill Gates, the man who helped shape the tech revolution, is now warning that AI may be moving simply too fast, even for humanity to control. In an exclusive conversation with NDTV's Vishnu Shom, Bill Gates has sounded the alarm on frontier AI, cyber threats, and a future we may not be ready for. This is by far the biggest and most high-level interview on the AI global alarm that anyone has ever got. We play that full interview coming up at 10 tonight, but here's a quick glimpse of what Bill Gates has said exclusively to NDTV.
2: If we could slow things down, I think we should consider that because of this need to get ready for such a rapid change. You know, throughout my life, I've been a champion of innovation. Certainly in the Microsoft context, but also, you know, in the foundation context, you know, better seeds, better vaccines. You know, this is a rare case where innovation may be so broad and so dramatic that we're not ready for it. The idea of the AI, keeping the AIs under control, I've always thought of that as something out fairly far out in the future, but we did see a few incidents, you know, one that's called the Hugging Face incident, where even today, the way that we do this reinforcement learning, it, to our surprise, kind of motivated a form of taking shortcuts and cheating that was unexpected. And so I, you know, now this issue of keeping things under control, you know, that's there with the other challenges.